के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे, समझे।

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपचित भूषण पर प्रधान हो तो काकशेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi.
3: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
4: 1928 कैम्ब्रिज।
5: कोई इंसान उसी काम में एक्सेल कर सकता है जिसमें उसका जुनून हो, जिसमें उसका विश्वास हो। मैं फिजिक्स में काम करने के लिए तड़प रहा हूँ। बीटोविन को कोई कहे साइंटिस्ट बन जाओ क्योंकि ये अच्छा है, ये बेईमानी बात होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे फिजिक्स पढ़ने दें। आपका आज्ञाकारी होमी।
4: उन्होंने अपने पिता को फिजिक्स पढ़ने देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने वाला ये व्यक्ति भारत में वैज्ञानिक सोच की अवधारणा बदलने वाला था। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मैसी और ये कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। जब भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत से निकालने की कोशिश में लगे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत के भविष्य की बुनियाद बनाने को अपना लक्ष्य मान बैठे थे। उनमें से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1939 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी करके वो भारत लौटे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के साथ काम करने लगे। डॉक्टर रमन हमेशा कहते थे,
6: सही सवाल पूछो तो कुदरत खुद अपने राज तुम्हें बताएगी।
4: डॉक्टर भाभा ने सही सवाल पूछे। वो वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में भारत की प्रगति सुनिश्चित करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही समझ गए थे कि भारत के तत्कालीन संस्थानों में न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रे फिजिक्स या किसी अन्य विषय के शोध के लिए दुर्भाग्यवश सही सुविधाएं नहीं थी।
5: यहाँ उचित परिस्थितियों और इंटेलिजेंट बेटे की सहायता की कमी है। इससे देश के वैज्ञानिक विकास की रफ्तार पर असर पड़ता है। तुम्हारा मित्र होमी।
4: डॉक्टर भाभा ने अपने दोस्त जेआरडी टाटा को खत में ये लिखा, तो जेआरडी टाटा ने उनको सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट से नए संस्थान के लिए पैसों की बात करने का सुझाव दिया। डॉक्टर भाभा ने सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट को 1944 में अपना प्रस्ताव भेजा, जिसमें उन्होंने सर सोराब सकलतवाला को लिखा,
5: मैंने फिजिक्स की एडवांस ब्रांच में रिसर्च के लिए बॉम्बे में एक फर्स्ट क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का सपना देखा है। इस समय भारत में कोई बड़ा संस्थान नहीं है जो फिजिक्स की मूलभूत समस्याओं पर रिसर्च करे। जब आज से 2 दशक के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से सक्सेसफुल बिजली बनाई जा सकेगी, तो भारत को एक्सपर्ट्स के लिए दूसरे देशों की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
4: सभी को डॉक्टर भाभा के प्रस्ताव में अपार योग्यता दिखी और 1 जून 1945 को सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शानदार सफर की शुरुआत हुई। इसके पहले निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा,
5: साइंस हमारी पूरी सामाजिक संरचना का आधार है, जिसके बिना जीवन अकल्पनीय होगा।
4: शुरुआत से ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने वैज्ञानिकों के अग्रणी काम द्वारा कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और भारतीय वैज्ञानिक प्रगति का ध्वजवाहक बना। ये भारत का गौरव होने के साथ ही पूरे विश्व में सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है। डॉक्टर भाभा एक स्वतंत्र भारत का उज्जवल सवेरा देख पा रहे थे और अपने वैज्ञानिक कुशाग्रता से उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत की वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र का सूरज हमेशा चमकता रहे।
3: विक्रांत मैसी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. Na vida, la burga. Mirci, burga.
1: Mirci. बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है मेरे रेडियो मिर्ची पे।
2: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

आपको नहीं लगता कि इंडिपेंडेंस डे के मायने उम्र के साथ बदलते गए? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. और आज है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे. स्कूल में जब 15 अगस्त होता था, मतलब व्हाइट यूनिफॉर्म, फ्लैग होइस्टिंग, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड ऑनेस्टली सेरेमनी के बाद मिलने वाले वो लड्डू का भी अपना ही एक इम्पोर्टेंस होता है. फिर बड़े हुए, हिस्ट्री समझे तो रियलाइज हुआ कि जिस फ्रीडम को हम इतना कैजुअली लिव करते हैं, किसी जनरेशन के लिए वो एक सपना था. 79 years later, हम आजाद इंडिया में बॉर्न होने वाली generations के लिए फ्रीडम नॉर्मल है एंड perhaps that itself is the biggest privilege. तो इस 15 अगस्त सेलिब्रेशन जरूर कीजिए, बट एक सेकंड के लिए उन लोगों को भी याद कीजिए जिनके लिए आजादी नॉर्मल नहीं, इम्पॉसिबल सपना था. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. भूला जिसे

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah, live.

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: वो निडर भी थी और घातक भी। नमस्कार, मैं हूँ भूमि सतीश पेडनेकर और भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली शेरनी रानी चिन्नम्मा को मेरा सलाम। साल 1824, कित्तूर, कर्नाटका।
2: ये मेरा कित्तूर है। अंग्रेजों का इस मिट्टी पर कोई हक नहीं है जो सिर्फ मेरी और मेरे लोगों की है, और इसके लिए मैं मरते दम तक लड़ूंगी।
3: Then it will be the end of you, Her Majesty.
1: अंग्रेजों ने रानी को डराने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्हें रानी चिन्नम्मा के फौलादी जज्बे का कोई अंदाजा नहीं था। रानी चिन्नम्मा ने 10 साल से भी कम समय में अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया था। इसके बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा नाम के एक लड़के को गोद लिया और उसे अपना वारिस बताया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नए वारिस को मानने से साफ इनकार कर दिया।
3: We refuse to acknowledge your heir. Your land is ours.
2: अगर तुम अंग्रेजों को युद्ध ही चाहिए तो यही सही। अब फैसला सीधे रणभूमि पर होगा।
1: और फिर एक भयानक जंग शुरू हुई। रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों की बड़ी सेना और उनके आधुनिक हथियारों का सामना पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ किया।
2: उन्हें हमला करने दो, जैसे ही वो थक जाएंगे हम उन पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे।
1: रानी चिन्नम्मा के बेहतरीन वॉर टैक्टिक्स और रणनीतियों ने अंग्रेजों को घुटने पे ला दिया। उनका एक बड़ा अफसर मारा गया और दो को बंदी यानी हॉस्टेज बना लिया गया, पर उनको जान से मारने के बजाय दरियादिल रानी ने उन्हें आजाद कर दिया।
2: मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, दोबारा कभी कित्तूर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना।
1: लेकिन धोखेबाज अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ कित्तूर पर फिर से हमला किया। इस बार भी चिन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आखिर में उन पर कब्जा कर लिया गया।
3: We told you Kittua would be ours.
2: तुम फिरंगियों को सिर्फ धोखे से जीतना आता है। कित्तूर हमेशा मेरा था और मेरा ही रहेगा।
1: रानी चिन्नम्मा ने जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उन्होंने उन जुल्मियों के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया। साल 1857 की क्रांति से भी बहुत पहले उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि जब जुल्म एक नियम बन जाए तो बगावत करना आपका फर्ज बनता है। आज चिन्नम्मा को उनके स्टैचूज और पोस्टेड स्टैम्प्स के जरिए याद किया जाता है, पर आज हमारा अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण उन्हीं की देन है।
0: भूमि पेडनेकर की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
4: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल। लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल। बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल। सेट योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस का टूल। अब टाइम आ गया है, सबको जाना होगा स्कूल। सो ज्वाइन करो ये

क्या आपको भी लगता है कि इंडिया से दूर रहकर इंडिपेंडेंस डे थोड़ा और इमोशनल लगता है? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और कतर में तो हम इंडियंस की कम्युनिटी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, है ना. तकरीबन 8 लाख इंडियंस हमारे कतर को अपना घर मानते हैं. मतलब कतर की कहानी में भी एक बहुत बड़ा इंडियन चैप्टर है. हम यहाँ काम करते हैं, बिजनेसेस बिल्ड करते हैं, बच्चे यहाँ ग्रो अप कर रहे हैं. कतर हमें अपॉर्चुनिटीज और एक घर देता है. लेकिन 15 अगस्त को जब तिरंगा दिखता है, दिल ऑटोमेटिकली इंडिया पहुंच जाता है, है ना. मे बी दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट होम. एक वो जगह जहाँ आप रहते हैं और एक वो जगह जो आपके अंदर रहता है. Happy Independence Day to every Indian living here in Qatar.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah live in

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में। 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: इंडियन माइथोलॉजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ दिखाया जा रहा है। ये विदुर नहीं, गांधी है। महाभारत के नाम पर बागी बनाए जा रहे हैं। This film should be banned right now.
2: कहते हैं एक तस्वीर हजार लफ्जों के बराबर होती है, तो क्या लाखों तस्वीरों से बनी एक फिल्म ब्रिटिश राज की नींव हिला सकती थी? सन 1921 में पर्दे पर उतरी भक्त विदुर के बारे में ये बात कही जा सकती है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी तो महाभारत की विदुर की थी, लेकिन फिल्म में बातें जुल्म और आजादी की थी। यहां तक कि विदुर का किरदार निभाने वाले अभिनेता में गांधी जी की झलक भी थी। उन्हें गांधी टोपी पहने चरखा चलाते हुए दिखाया गया था। डायरेक्टर कांजी भाई राठौर ने मानो बिन कहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत छेड़ दी। इस फिल्म से अंग्रेज इतने काम गए कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये वो पहली फिल्म थी जिसे बैन किया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
1: Indians are rockly. हमें इन्हें स्कूल में ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे ये हमेशा हमारे नौकर बने रहे।
2: एक तरफ उस समय के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाकर अंग्रेज देश के स्कूलों में भविष्य के नौकर तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ फिल्म मेकर्स उस दौर की सच्चाई को सिनेमा के जरिए दिखा रहे थे। इन्हीं में से एक थे भालजी पेंढारकर, जिनकी फिल्म वंदे मातरम आश्रम ब्रिटिश एजुकेशन का खुला विरोध कर रही थी।
3: ये अंग्रेजी शिक्षा हमें सिर्फ गुलाम बना रही है, पढ़ा लिखा गुलाम।
2: क्योंकि अंग्रेजों को भारतीय सिनेमा की ताकत का अंदाजा था, इसलिए वंदे मातरम आश्रम फिल्म रिलीज होते ही सेंसर कर दी गई।
3: अंग्रेज हमारी फिल्म बैन कर सकते हैं, हमारी सोच नहीं। हम हर डायलॉग में देशभक्ति लिखेंगे, हर गाने में अंग्रेजों को ललकारेंगे।
2: क्रांति की ये आग हर फिल्म के साथ और भड़कती गई। फिर आई सन 1942 में फिल्म क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके शोज देश भर में हाउसफुल थे। पर अंग्रेजों की दुखती रग पर हाथ फेरने का काम सन 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत के इस गाने ने किया।
4: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्ताना की आवाज में इस गाने को सुनकर सिनेमा हॉल क्रांतिकारियों के केंद्र में बदल गए।
4: दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
2: कवि प्रदीप के लिखे इस गाने को सुनकर अंग्रेजों के माथे पर बल पड़ गए।
5: Who wrote this? Find that man and arrest him now.
2: लफ्ज, आवाज और जज्बात क्या कभी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? सिनेमा भी यही है। इसीलिए फिल्म किस्मत ना सिर्फ सुपरहिट रही, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ देश में उबाल लाने में भी कामयाब रही। शायद इसीलिए कहा जाता है फिल्म समाज का आईना होता है, एक ऐसा आईना जो गुलामी के धब्बे और आजादी का नूर सब दिखाता है।
0: आमिर खान की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
6: बॉलीवुड बोल डाल,
7: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
8: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
9: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
10: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
9: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: बॉलीवुड बोल डाल,
7: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
8: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
12: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
13: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
14: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
12: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
14: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
12: The mentalist Suhani Shah.

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में। 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: वो निडर भी थी और घातक भी। नमस्कार, मैं हूँ हुमा कुरैशी और भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली उस शेरनी वीरा मंगई कुइली को मेरा सलाम। बात है साल 1780 की। शिवागंगा, जो आज का तमिलनाडु है, युद्ध के मैदान में जंग लड़ चुकी एक यंग सेना कमांडर ने अपनी रानी की तरफ देखा और कहा,
2: मैं जानती हूँ इन गोरों को घुटनों पर कैसे लाना है। मुझे बस थोड़ा शुद्ध देसी घी लाकर दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करती हूँ।
1: ये कहने वाली थी कुइली, रानी वेल्लू नचियार की सेना की सबसे फियरलेस कमांडर। किसी को कानों कान खबर न थी कि कुइली के दिमाग में उस वक्त कितना खतरनाक प्लान चल रहा था।
3: This is our chance to expand. Let's attack and capture the state. It will bolster our incomes.
1: ईस्ट इंडिया कंपनी ने धोखे से हमला करके शिवगंगा के गौरवशाली राज्य पे कब्जा कर लिया था, लेकिन शिवगंगा की रानी रानी वेल्लू नचियार हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो जिंदगी भर ना भूल सकेंगे, और इसका सबसे बड़ा मास्टर प्लान बनाया उनके सेनापति कुइली ने।
2: अंग्रेजों की असली ताकत उनके हथियार है, और मैं उनकी इस ताकत का तिनका तिनका उखाड़ फेंकूंगी।
1: दिन था विजयादशमी का। दूर दूर से लोग किले के मंदिर में पूजा करने और जश्न मनाने आए थे। किले में भीड़ थी और पहरेदारी थोड़ी ढीली। बस इस मौके का फायदा उठाते हुए कुइली ने अपने पूरे शरीर पे घी और तेल उंडेल लिया और खुद को आग लगा दी। उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा,
2: मैं ही हूँ अग्नि, मैं ही हूँ नियति, और मैं ही हूँ तुम्हारा अंत।
1: कुइली के शरीर पे लगे घी ने आग की लपटों को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। वो एक दहकती हुई ज्वाला बनकर किले की आर्मरी की तरफ दौड़ी, जहां अंग्रेजों का सारा बारूद रखा था। और जैसे ही वो अंदर पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी आर्मरी तबाह हो चुकी थी, और इस एक झटके के साथ शिवगंगा से अंग्रेजों का कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया। शिवगंगा का कंट्रोल एक बार फिर हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गया। ऐसा सुसाइड मिशन और ऐसी जांबाजी पूरी दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। रानी वेल्लू नचियार की आंखों में आंसू थे।
2: कुइली, तुमने शिवगंगा की रक्षा अपने खुद के बच्चे की तरह की है।
1: कुइली ने इस बलिदान के बदले कभी किसी से तारीफ की उम्मीद नहीं की। वो तो बस हमारे लिए एक आजाद देश चाहती थी, जहां हम खुली हवा में सांस ले सके। कुइली शायद उस दिन शहीद हो गई, लेकिन लगभग 250 साल बाद भी आज भी उनका बलिदान हमारी आजादी में अमर है।
0: हुमा कुरैशी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सलूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सलूशन है। तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking, mama।

तो चले 15 अगस्त का एक क्विक ट्रिविया चेक करें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और आज है 80th इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ लेकिन हमारा तिरंगा ऑफिशियली 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट हो चुका था, यानी आजादी से रफली 3 हफ्ते पहले आजाद इंडिया का तिरंगा, आजाद इंडिया का फ्लैग रेडी था। और सेंटर में जो अशोका चक्र है उसमें एग्जैक्टली 24 स्पोक्स हैं। एक्चुअली तिरंगा की अपनी जर्नी भी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ इवॉल्व हुई है। सो नेक्स्ट टाइम तिरंगा देखे, रिमेंबर वो सिर्फ 3 कलर्स और 1 चक्र नहीं है, उसके डिजाइन के पीछे भी इंडिया की फ्रीडम की पूरी जर्नी छुपी हुई है। भाई से दिल तक आफरीन है आपके साथ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: 1917, ऊटी, तमिलनाडु।
2: ये अंग्रेज भले ही मुझे घर में कैद कर दे, मैं इनके जुल्मों के खिलाफ लगातार बोलूंगी।
3: पहले तो अंग्रेजों को हैरानी हुई कि एक अंग्रेजी महिला हुकूमत के खिलाफ कैसे बोल सकती है, और दूसरा धक्का इस बात से लगा कि वो किसी अपने को भी खिलाफत से रोक नहीं पाए। नमस्कार, मैं हूँ तापसी पन्नू और ये कहानी है एनी बेसेंट की। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी, जिन्होंने शान से कहा,
2: भारत जल्द ही आजाद और मजबूत बनकर ये देश पूरे विश्व की उम्मीद और उन्नति का वाहक बनेगा।
3: आजादी के लिए प्रेरणा और संकल्प कहीं और से नहीं, बल्कि उनकी अंतरात्मा से जागी, जिसने आजाद सोच, महिलाओं के अधिकार और आजादी का समर्थन किया। सत्य की खोज में उनकी रुचि और साधना ने उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी अध्यक्ष भी बनाया।
2: चेतना के बगैर जीवन और जीवन के बगैर चेतना का अस्तित्व असंभव है।
3: आयरलैंड के राष्ट्रवाद के गहरे प्रभाव के कारण 1893 में भारत आगमन के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का पुरजोर समर्थन किया। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक अपने अखबारों को भी उन्होंने आंदोलन का माध्यम बनाया।
2: संकल्प का हाथ थामे कभी हार नहीं मिलती, उल्टा बाधाओं से सीखने का मौका मिलता है।
3: एनी बेसेंट आयरिश राष्ट्रवाद से न केवल प्रभावित थी, बल्कि उन्होंने वहाँ की अच्छी कार्यशैली को भी अपनाया। उन्होंने अड्यार मद्रास में होम रूल लीग स्थापित की। तब तक बाल गंगाधर तिलक इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कर चुके थे। एनी का उद्देश्य सभी होम रूल लीग्स की एकत्रित ताकत से बड़ा बदलाव लाने का था।
4: हमारा साथ लड़ना ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा।
3: स्वतंत्रता की मूल भावना को समाहित कर होम रूल आंदोलन को भारी जन समर्थन मिला। राजनीतिक चेतना के माध्यम से आंदोलन ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की और लोगों को अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का साहस दिया।
5: हम होम रूल के साथ रहेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे।
3: एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की करीब 200 शाखाएं खोली, जो लीग की प्रसिद्धि की गवाही थी और ग्रामीण क्षेत्रों तक संदेश प्रसारित करने में कारगर साबित हुई। इससे अंग्रेजों की घबराहट बढ़ने लगी थी।
6: एनी बेसेंट
3: चेतना के माध्यम से आंदोलन ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की और लोगों को अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का साहस दिया।
5: हम होम रूल के साथ रहेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे।
3: एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की करीब 200 शाखाएं खोली, जो लीग की प्रसिद्धि की गवाही थी और ग्रामीण क्षेत्रों तक संदेश प्रसारित करने में

0: प्रदर्शन बढ़ते रहा। भारी जन आक्रोश से डर कर अंग्रेजों ने उन्हें आखिर रिहा कर दिया। होम रूल आंदोलन की ताकत ने आखिर अंग्रेजों को उनके घुटने पर ला ही दिया। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को नई शक्ति दी। उनके उद्देश्य के प्रति समर्पण ने आजादी की लड़ाई को ऊर्जा प्रदान करी और इसीलिए उनके लिए समर्थन भी विश्व भर से मिला।
1: तापसी पन्नू की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद
0: मिर्ची।
2: इसका बाना, उसका बाना, सका बाना। बाना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गया ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर बढ़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: है
4: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी।
3: प्यार
5: से बोल दीजिए कोकड़ो को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: संथाल विद्रोह 1855, भोगनाडी गांव, झारखंड।
2: हमारी जमीन जमींदारों द्वारा छीनी जा रही है।
3: ये सेठ लोग सब कुछ छीन लेते हैं और हमें मजबूर करके हमें बंधुआ मजदूरी में झोंक देते हैं।
2: हम इन गोरों और जमींदारों के नाम परवाना जारी करते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर इन्होंने अपने तेवर नहीं बदले तो ये मामला हम खुद हल करेंगे।
1: भाई सीधो और कानों ने भोगनाडी गांव में इकट्ठा हुए 10,000 से ज्यादा संथाल आदिवासियों को संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और ये कहानी है संथाल क्रांति की। अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों के आसपास का इलाका घेराबंद कर लिया। इसका नाम दमन एक कोह रखा गया, जिसका मतलब होता है पहाड़ों का आंचल। संथाल इस इलाके में बसे हुए थे। उन्हें वहां खेती के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए बुलाया गया था। अंग्रेज पैसों और टैक्स के लोभ में ज्यादा से ज्यादा जंगल की जमीन को खेती के अधीन लाना चाहते थे। संथाल समुदाय को इसका विरोध करने का पूरा हक था, क्योंकि वो वहां के मूल निवासी थे, इसलिए जमीन उनकी थी। लेकिन जमीन वहां के जमींदारों को दी गई, जो किराया बढ़ाते गए, साथ ही बाकी लेनदार, व्यापारी और अंग्रेज भी संथालों का शोषण करने लगे।
3: हमें एक दिव्य शक्ति ने क्रांति का आदेश दिया है।
1: संथाल समुदाय कलकत्ता मार्च करके गवर्नर जनरल से मिलना चाहते थे, लेकिन एक प्रमुख संथाल गांव के मुखिया हरमा देश मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। संथालों की अंतिम चेतावनी भी नजरअंदाज कर दी गई और इसने बगावत की चिंगारी को आंच दी।
4: हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमारी सांस चलेगी।
1: सीधो कान्हों की बहनें फूलो और जानो भी विद्रोह में भाग ले रही थी। इससे इस आंदोलन को महिलाओं की ओर से भी बड़ा योगदान मिला। साथ ही उनके भाई चांद और भैरव भी इससे जुड़ गए।
5: आज से तुम किसी का शोषण नहीं करोगे।
1: जमींदार और लेनदार संथाल विद्रोह का क्रोध महसूस करने लगे। कुख्यात लेनदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकुड़ के जमींदारी महल पर कब्जा कर लिया गया। संथाल हूल या विद्रोह की आग ने अंग्रेजों और जमींदारों के अनाज के गोदाम भी झुलसा दिए।
6: ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम इसे जल्द ही कुचल देंगे।
1: एक स्थानीय पुलिस कर्मचारी ने छोटी फौज के साथ आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसे मार दिया गया। भाई सीधो कान्हो पैरेलल प्रशासन चला रहे थे। संथाल क्रांतिकारी केवल तीरों और भालों के साथ ब्रिटिश बंदूकों से लड़ रहे थे। संथाल योद्धा शिकार के वक्त जहर भरे तीरों का उपयोग करते थे, लेकिन अपने दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। ये देखकर सेना के कुछ सिपाहियों को शर्मिंदगी महसूस हुई।
7: उनके पास बंदूकें भी नहीं है और हम उन पे गोलियां चला रहे हैं। इसके बावजूद भी बहादुर संथाल झुकने को तैयार नहीं थे।
1: संथालों के खिलाफ लड़ाकू हाथी उतारे गए। मार्शल लॉ लागू किया गया। बहुत से पकड़े गए, बहुत को फांसी दे दी गई। गांव के गांव बर्बाद कर दिए गए। संथाल क्रांति के जनरल सिद्धो और कान्हो और उनके सारे भाई बहन फूलो, जानो, चांद और भैरव भी मारे गए। सबक सिखाने के लिए कहा जाता है कि सीधो और कान्हो के शव को एक पेड़ से लटका दिया गया।
8: हम सब बाघ हैं बाघ, जब तक हमारी रगों में खून बहेगा तब तक हमारी रूह में हिम्मत बनी रहेगी।
1: शांति प्रिय और मेहनत का संथाल समुदाय की आह ने अंग्रेजों को डरा दिया था। नए कानून लागू किए गए, बिचौलिए को हटाया गया। संथाल क्रांति में आदिवासियों के अलावा भी कई लोग शामिल हुए। हर साल 30 जून को हुल क्रांति दिवस मनाया जाता है। संथाल क्रांति आदिवासियों के प्रदर्शन का प्रतीक बन गया और स्वतंत्रता के योद्धाओं के संकल्प को मजबूती दी।

0: पंकज त्रिपाठी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है।
0: Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The mentalist Suhani Shah live.

आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक ट्रिविया है जो शायद आपको सरप्राइज करे। देखिए, जब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे इंडिया का जहन में आता है तो एक इमेज ऑटोमेटिकली आ जाती है, द प्राइम मिनिस्टर, रेड फोर्ट और तिरंगा। लेकिन एक ट्रिविया जो शायद आपको सरप्राइज करे वो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट पर पहली बार तिरंगा 15 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त 1947 को अनफोल्ड किया था। इंटरेस्टिंग राइट? आज रेड फोर्ट और 15 अगस्त एक दूसरे से ऑलमोस्ट इनसेपरेबल है, लेकिन इस आइकॉनिक ट्रेडिशन की फर्स्ट सेरेमनी एक्चुअली आजादी के अगले दिन हुई थी। हिस्ट्री की यही तो इंटरेस्टिंग बात है, जो हम हर साल देखते हैं उसके पीछे भी एक कहानी होती है। तो आज क्या इंडिपेंडेंस डे ट्रिविया अब आप आगे पास ऑन करिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल आवर इंडियन लिसनर्स आउट देयर। मैं हूं आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: 1929 लाहौर, अविभाजित भारत।
2: स्वराज यानी पूरी आजादी, प्रभु सत्ता नहीं। ये अंग्रेज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। आम आदमी के हक और हित की बातें वहां नहीं होने वाली। अपनी इस मुहिम में हमें हर किसी को शामिल करना होगा।
3: नमस्कार, मैं हूं शेखर सुमन और आप सुन रहे हैं कहानी लाहौर सेशन की। नेताजी के इस जोरदार भाषण ने सबकी आंखें खोल दी। वैसे तो पहले भी कांग्रेस के कई सेशन हुए थे, पर 1929 का लाहौर सेशन आजादी की लड़ाई की दिशा को बदलने वाला था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की।
4: अगर कोई सरकार आवाम के अधिकारों को दरकिनार करे, उन्हें दबाने की कोशिश करे, तो आवाम को उस सरकार को हटाने का, बदलने का, गिराने का पूरा अधिकार है। ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों को उनके अधिकार से वंचित रखा। हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक रचना की धज्जियां उड़ा दी।
3: 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस का आक्रामक स्वभाव बिल्कुल साफ था। इस बार पंडित नेहरू इस कांग्रेस बैठक के प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश शासन ने न सिर्फ हिंदुस्तानियों का शोषण किया, बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए किए गए प्रशासन द्वारा समावेश में भी पारदर्शिता नहीं थी। पूर्ण स्वराज के आगाज ने हिंदुस्तानियों में एक नई उमंग भर दी। आजादी की लड़ाई में ये रणनीति एक बड़ा बदलाव बनकर उभरी। हिंदुस्तानी अब आजादी की भीख नहीं, अपना हक मांग रहे थे। रावी नदी के तट पर खूब हलचल थी। नए साल के साथ नई प्रेरणा भी अपने कदम बढ़ा रही थी। पंडित नेहरू ने 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तिरंगा फहराया। रात भले ही सर्द होने लगी थी, पर लोगों की आवाज जोश और गर्माहट से भरी हुई थी। 26 जनवरी 1930 कांग्रेस ने समूचे आवाम से पूर्ण स्वराज पाने की घोषणा की। इसी ऐतिहासिक दिन का मान रखने के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों ने 26 जनवरी 1950 की तारीख तय की हमारे संविधान को लागू करने की। घोषणा के बाद पूर्ण स्वराज का प्रतिज्ञा पत्र सभी भाषणों में आम जनता के लिए पढ़ा गया और इसी वैभव के साथ हमारा तिरंगा फहराया गया।
5: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
3: अंग्रेजों ने अपने जुल्म तले हमारे मुल्क को रौंद कर सबको शांत कर दिया, पर एक तूफान आना भी बाकी था और वो था पूर्ण स्वराज।
0: शेखर सुमन की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
6: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल। लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल। बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्ची लेके

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप. गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.
0: द मेंटलिस्ट सुहानिशा.

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
1: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
1: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ। पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ?
2: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।
3: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में। 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
4: ४९४२, गोपुर, असम।
5: जो तुम कह रही हो वो करना खुदकुशी होगी।
6: तो फिर मैं मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: नमस्कार, मैं हूँ मोना सिंह और ये कहानी है कनकलता बरुआ की। वो अभी 18 साल की भी नहीं थी, लेकिन उसके इरादे अभी से क्रांतिकारी थे। छोटी उम्र में ही उसकी माँ चल बसी, लेकिन ये दुख भी उसका हौसला तोड़ न सका।
6: ये देश ही मेरी माँ है, मेरे लिए भारत माता की ममता में कभी कमी नहीं आएगी।
4: बलिदान कदम कदम पर उसका साथी बना रहा। अपने पिता की मृत्यु उपरांत कनकलता पर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। वही उन्हें स्कूल छोड़ने जाती। ऐसी विकट परिस्थिति में भी छोटी उम्र की कनकलता ने जीवन का सबसे बड़ा सबक हासिल किया, देशभक्ति। इसी कारण वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसे कहा गया,
7: तुम अभी छोटी हो मगर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तुम्हारा जज्बा अभूतपूर्व है। अपने दिल में देशभक्ति का ये जोश बरकरार रखो, तुम्हारा वक्त आएगा।
5: करो या मरो, हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर मर जाएंगे।
4: भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। पूरे देश में एक ही नारा बुलंद था,
8: करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे।
4: आंदोलन का गला घोटने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने तत्काल कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब छोटे लड़के लड़कियों ने आंदोलन की कमान संभाली, उनमें से एक थी कनकलता बरुआ।
5: तुमने पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फिराना है, वो तुम्हें सीधी गोली मार देंगे, ये खुदकुशी होगी।
6: तो क्या, तिरंगा मेरा अभिमान है और देश के लिए मरने से बेहतर शहादत क्या होगी।
4: खतरनाक मिशंस को अंजाम देने वाले संगठन मृत्यु वाहिनी में कनकलता शामिल हो गई। वो छोटी थी, लेकिन उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखते हुए उसे एक दल में शामिल कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, गोपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने की।
7: रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम गोली मार देंगे।
6: हम सिर्फ भारत माता का आदेश मानते हैं, चलाओ गोली, हम नहीं रुकेंगे।
4: कनकलता 5,000 लोगों का एक मोर्चा लेकर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी। पुलिस द्वारा उन्हें रुकने की चेतावनी दी गई, मगर वो आगे बढ़ते रहे। अहिंसक जनता पर गोलियां बरसाने का शौक रखने वाली ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोली चला दी।

0: भारी गोलीबारी हुई। गोलियां कनकलता को छलनी कर गई, लेकिन उसने तब तक तिरंगा नीचे ना गिरने दिया जब तक एक दूसरी वॉलंटियर मुकुंदा काकोटी ने आकर तिरंगा ना थाम लिया। बाद में मुकुंदा को भी गोली मार दी गई। अपने अंतिम क्षणों में भी कनकलता मातृभूमि की सेवा करती रही। वो मात्र 17 साल की थी, लेकिन अपनी वीरता के कारण वो वीर बाला कहलाई। उसने साबित किया कि डर के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार होता है विश्वास। विश्वास। हुकूमत ने उसे गोली तो मार दी, लेकिन उसके नाम को नहीं मिटा सके। भारतीय तटरक्षक दल के फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया। ये नाम वीरता का प्रतीक बन गया।
1: मोना सिंह की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

जानते हो इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? देखो आप मुंबई से बिलोंग करते होंगे, दिल्ली के होंगे, केरला के हो, कश्मीर के हो, हिंदी बोलते होंगे, मलयालम, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, खाने अलग अलग, लैंग्वेज अलग अलग, फेस्टिवल्स अलग अलग और ओपिनियंस वो तो एक घर में भी चार अलग मिल जाते हैं। और कतर में रहकर शायद ये और ब्यूटिफुली रियलाइज होता है। कोई पूछता है आप कहाँ से हो, और हम इतनी सारी आइडेंटिटीज को सिर्फ एक वर्ड में सम अप कर देते हैं, हम इंडिया से हैं। Maybe that is India's beautiful contradiction. इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी एक वर्ड सबको कनेक्ट कर देता है। Happy Independence Day to all the Indians out here. मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: १९१२ चांदनी चौक, दिल्ली।
2: भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज
3: हजारों दर्शकों के सामने नई राजधानी के बीचों बीच।
4: देखने लायक नजारा होगा।
1: 1911 में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इस अवसर पर एक भव्य जुलूस निकाला जाना था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल नौरंग यादव और ये कहानी है लॉर्ड हार्डिंज की। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज अपनी पत्नी के साथ हाथी की पीठ पर सवारी करते जुलूस देखने वाले थे। रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अन्य क्रांतिकारियों के एक गुट के पास इस जुलूस को झटका देने के लिए अपनी अलग योजना थी। जहां कई क्रांतिकारियों को लॉर्ड हार्डिंज की हत्या का विचार असंभव लग रहा था, रास बिहारी बोस को यही सही तरीका दिख रहा था।
2: हाँ, ये खतरनाक तो है, लेकिन हमारे सामने कुछ भी नहीं।
1: रास बिहारी बोस एक मझे हुए क्रांतिकारी थे और बसंत कुमार विश्वास उनके भरोसेमंद साथी थे। रास बिहारी बोस अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते कलकत्ता पुलिस के रडार पर थे। वो देहरादून चले गए, जहां उन्हें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी मिली। जल्द ही बसंत कुमार विश्वास भी उनके पास आ गए।
5: बंदे मातरम, रास बिहारी दादा, मैं आ गया।
2: ओ, आओ आओ बसंत, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था।
1: और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने योजना की तैयारियां शुरू कर दी।
2: बसंत, मैंने सिगरेट के 3 को पत्थरों से भर दिया है, तुम इसे फेंक कर बम फेंकने में माहिर बन जाना।
5: ठीक है दादा।
6: दोस्तों, समय आ गया है,
7: हम उन्हें क्लॉक टावर के पास धर लेंगे।
8: सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं।
9: लॉर्ड हार्डिंज
10: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: 23 दिसंबर 1912, भारत।
2: आओ आओ बसंत, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था।
1: और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने योजना की तैयारियां शुरू कर दी।
2: बसंत, मैंने सिगरेट के 3 को पत्थरों से भर दिया है, तुम इसे फेंक कर बम फेंकने में माहिर बन जाना।
5: ठीक है दादा।
6: दोस्तों, समय आ गया है,
7: हम उन्हें क्लॉक टावर के पास धर लेंगे।
8: सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं।

0: कुमार विश्वास एक महिला के वेश में छत पर इंतजार करने वाले थे, लेकिन वो योजना रद्द कर एक नया तरीका अपनाया गया।
1: बसंत बम फेंकेगा और अगर बसंत चूक गया तो अवध बिहारी और रास बिहारी भी बम फेंकेंगे।
0: वायसराय और उनकी पत्नी को लेकर हाथी सामने आया और बम फेंक दिया। कुछ लोगों ने कहा कि बम बसंत कुमार विश्वास ने फेंका, कुछ ने कहा रास बिहारी बोस ने फेंका, कुछ लोगों का मानना था कि अवध बिहारी ने ही बम फेंका था। जिसने भी बम फेंका हो उसका असर जोरदार हुआ। लेडी हार्डिंच और महाबत तो बिना नुकसान के बच निकले, लेकिन हार्डिंच घायल हो गए, उसके पीछे खड़ा सेवक मारा गया। बम के छर्रों ने हार्डिंच की पीठ, पैर और सिर को भारी क्षति पहुंचाई।
2: हमारे मालिक पर हमला हुआ है, लानत है हम पर, पकड़ो उन हमलावरों को।
0: गहरी खोजबीन के बाद भाई बालमुकुंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी और आमिर चंद पकड़े गए और इन्हें फांसी दी गई। हालांकि रास बिहारी बोस बचकर निकल गए, शक से बचने और गुप्त रूप से अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बम हमले के खिलाफ मोर्चा भी आयोजित किया। लगभग 3 साल बाद उनका पर्दाफाश हो गया और उन्हें जापान भागना पड़ा। भारतीयों ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत में वायसराय भी सुरक्षित नहीं है। इस हमले ने कई और क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया और भारतीयों से एक गहरा सवाल किया कि हम भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं।
3: राजपाल यादव की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: सन 1931, लोंगकाओ गांव, आज का मणिपुर, भारत।
2: आपको जेल में पामाई से सिर्फ मिलने की परमिशन दी जा रही है, ना कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नई साजिश रचने की। जाइए मिलिए, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के लिए।
3: 16 साल की उम्र की एक कैदी से आखिर अंग्रेजी हुकूमत इतना खौफ क्यों खाती थी कि अंग्रेजों की गिरफ्तार में होने के बावजूद भी वो उस किशोरी की आवाज को दबा नहीं पा रहे थे।
4: हम उन अंग्रेज हुक्मरानों को कोई कर नहीं देंगे। ये मिट्टी हमारी है, इस पर उगा अनाज हमारा है, ये खेत हमारी मेहनत से लहरा रहे हैं, फिर उन्हें किस बात का कर दे।
3: चौराहे पर एकजुट भीड़ ध्यान से इस आवाज को सुन रही थी। इस आवाज ने लोगों में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह भर दिया था। महज 16 साल की एक लड़की की थी, गाइदिन्यू पामे की।
4: हम सब पर अंग्रेज एक साथ जुल्म करते हैं, उनकी गोली हमें कोई फर्क नहीं करती, तो हम आपस में क्यों फर्क करें? महात्मा गांधी भारत को एक कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम एक हैं, एक भारत।
3: इस किशोर क्रांतिकारी के मन में मूल में गांधी जी का सत्याग्रह तो था ही, साथ ही युवा खून स्वराज के लिए उबल रहा था। इसीलिए गाइदिन्यू ने अपने सामर्थ्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश थानों पर गुरीला हमले शुरू कर दिए।
4: ये मिट्टी हमारी है और इस मिट्टी की प्यास हम फिरंगियों के खून से बुझाएंगे।
3: अंग्रेजों को ये यकीन करने में वक्त लगा कि सिर्फ 16 साल की एक हिंदुस्तानी लड़की उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। उनकी तिजोरी खाली थी और बेइज्जती का ताज उनके सर पर था।
5: Shut up, you coward! Don't tell me कि तुम उस 16 साल की बच्ची को पकड़ नहीं पाए। अब खड़े क्या हो? Go and arrest her now!
3: अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद हर तरह के जोर आजमाए, रिश्वत दी, धमकी दी और धोखा दिया, और आखिरकार गाइदिन्यू को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस अंग्रेजी हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबता था, वो आज 16 साल की इस विरंगना से डरी हुई थी। इसी वजह से उन्होंने गाइदिन्यू को उम्र कैद दी।
2: पामई, तुमसे मिलने एक मेहमान आए हैं।
4: मुझसे?
6: हाँ गाइदिन्यू, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। तुम्हारे विरोध की कहानी पूरे देश में सुनाई जा रही है। बेटी, सिर्फ 16 साल की उम्र में तुमने जो शौर्य दिखाया है, तुम कोई साधारण किशोरी नहीं, तुम रानी हो, हमारी रानी, रानी गाइदिन्यू।
3: गाइदिन्यू से जेल में मिलने एक मेहमान आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कोई नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने गाइदिन्यू को रानी की उपाधि दी। शक्तिशाली और क्रूर अंग्रेजी हुकूमत के हौसले पस्त कर देने वाली कोई आम स्त्री नहीं हो सकती, वो तो शौर्य की राजकुमारी, एक रानी ही हो सकती है। अपनी हार से बौखलाए अंग्रेजों ने गाइदिन्यू को अलग अलग जेलों में रखा और यातनाएं बढ़ती रही, लेकिन रानी गाइदिन्यू का हौसला जेल की सलाखों से भी मजबूत था, इसीलिए जेल के अंदर से ही वो अपने संदेश लोगों तक पहुंचाती रही।
4: मेरे विचार ना पत्थर की जेल में बंद हो सकते हैं, ना ही सलाखों में कैद हो सकते हैं।
3: 14 साल तक जेल में काटने के बाद रानी गाइदिन्यू को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निरंतर प्रयासों की वजह से एक दिन रिहा कर दिया। आगे चलकर रानी गाइदिन्यू को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
0: मृणाल ठाकुर की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah live.

ऐसा पहली बार हो रहा है इस इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया में। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट इज 15th of August, इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे। देखिए, हर इंडिपेंडेंस डे पर कुछ इमेजेस हमारे जहन में फिक्स होती है, तिरंगा, रेड फोर्ट, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस, नेशनल एंथम। लेकिन इस बार एक फर्स्ट भी ऐड होने वाला है। इंडिया के 80th इंडिपेंडेंस डे पर पहली बार रेड फोर्ट की रामपथ से वंदे मातरम भी ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी का हिस्सा बनेगा। एंड समहाउ दैट फील स्पेशल। एक सॉन्ग जो जनरेशन से पेट्रियोटिज्म के साथ जुड़ा रहा, इस बार रेड फोर्ट से भी गूंजेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल आवर लवली इंडियन लिसनर्स आउट देयर। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है। रंग

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप. गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu. बुक योर्स नाउ.
0: द मेंटलिस्ट सुहानीशा.

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में। 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: सन 1929, बाग बाजार, कोलकाता।
2: दुर्गा पूजा हमारी विरासत है, पर मैं इसे सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रखना चाहता। ये भारत के स्वाभिमान का अनुष्ठान है। बुराई के नाश के लिए माँ दुर्गा ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया था। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमें प्रेरित कर सकता है? बोलो दुर्गा मैया की वंदे वंदे।
3: कोलकाता, जिसे अंग्रेजों ने अपनी गंदी राजनीति का गढ़ बना लिया था, उस गढ़ में सेंध लगाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दुर्गा पूजा का अवसर चुना था। दुर्गा माँ की पूजा के साथ साथ माँ भारती की आजादी की भी बात हो, इसके लिए क्रांतिकारियों का जमावड़ा लगाना जरूरी था। इसीलिए नेताजी ने बाग बाजार को चुना।
4: नमस्ते सुभाष बाबू।
2: नमस्ते हेम जी, बैठिए। बताइए, अब आप किस तरह गोरो की नाक में दम करना चाहते हैं?
4: मैं तो भारत का किसी भी मसले में उनका नाक नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल इस बार दुर्गा पूजा के जरिए देश को एकजुट करना चाहता हूँ, साथ ही ब्रिटिश हुकूमत को सीधा संदेश देना चाहता हूँ।
2: यही ना कि आपको उनकी नाक पसंद नहीं है?
4: सिर्फ नाक नहीं दादा, पूरा का पूरा अंग्रेज ही नहीं पसंद है।
2: हेम जी फिकर मत कीजिए, इस बार बाग बाजार में दुर्गा पूजा का ऐसा उत्सव होगा जो अंग्रेजों के दिल में क्रांतिकारियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए भय भर देगा।
3: उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ थे, इसीलिए उन्होंने बाग बाजार में एक बड़ा मैदान हेम मुखर्जी, दुर्गा चरण बनर्जी और कई युवा क्रांतिकारियों को पूजा पंडाल के लिए दिया था। क्रांतिकारियों ने पंडाल को स्वदेशी सजावटों से तैयार किया। मैदान में मेला भी लगाया गया, जिसमें स्वदेशी कपड़े, दवाइयां और हर वो सामान था जिससे ब्रिटिश हुकूमत को सीधा संदेश मिले।
5: हमें तुम्हारी फैक्ट्रियां नहीं चाहिए, अपना हक, अपना राज, अपना देश चाहिए।
3: दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली अखबारों में स्वदेशी उत्पादनों के विज्ञापन छपे। खबर ब्रिटिश दफ्तरों तक पहुंची, पर मोटी बुद्धि के अंग्रेजों ने विज्ञापनों का मजाक उड़ाते हुए कहा,
6: अगर ये हिंदुस्तानी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे तो इनकी इकॉनमी गिर जाएगी।
3: सत्ता के नशे में चूर अंग्रेजों को जवाब देने के लिए क्रांतिकारियों ने दुर्गा पूजा में नेताजी को बुलाया, जहां उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, शेर की तरह दहाड़ते हुए ब्रिटिशर्स को उनकी हद याद दिलाई।
2: उन्हें लगता है कि भारत पर राज करके वो हम पर उपकार कर रहे हैं। उन्हें गलतफहमी है कि उनके बिना हमारा देश बिखर जाएगा। उन्हें लगता है हम में वो बात नहीं कि हम एक देश चला सकें। क्या हम अपने देश को खुद संभाल सकते हैं?
3: क्रांतिकारियों ने मेले में तलवारबाजी का प्रदर्शन भी किया, ताकि गोरों को पता चले कि हिंदुस्तानी हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। साथ ही पंडाल के हर खंभे पर तिरंगे लगाए गए। झांकियों, नाटकों और गीतों के जरिए आजादी का संदेश दिया गया। बाग बाजार की दुर्गा पूजा भारतीयों की प्रार्थना में बस एक ही मांग थी, देश की आजादी।
2: बोलो दुर्गा मैया की वंदे वंदे।
3: समय बदला, लोग बदले, लेकिन बाग बाजार में क्रांति की वो आग आज भी दुर्गा पूजा में दिखती है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग,
7: कर गुजरने की आग, गुजरने की आग।
0: अनुपम खेर की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: उन्नीस बॉम्बे।
2: You're under arrest. गाना बंद करो।
3: वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है, ये बंद नहीं होगा। तुम सावधान की स्थिति में खड़े रहो।
1: कहते हैं रेडियो इज द थिएटर ऑफ माइंड। अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच इस थिएटर ने आजाद भारत के सपने को बरकरार रखा और इसका नेतृत्व किया एक 22 साल की लड़की ने। नमस्कार, मैं हूँ चित्रांगदा सिंह और ये कहानी है उषा मेहता की।
4: उषा मेहता की।
5: करो या मरो, हम या तो भारत को आजाद करेंगे या मर मिटेंगे।
1: बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से गूंजे महात्मा गांधी के इस आगाज ने भारत छोड़ो आंदोलन की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। देश में अंग्रेजों के विरोध की ज्वाला धधक उठी। जवाब में कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जैसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी शक्ति का इस्तेमाल विरोध को दबाने और सच्चाई छुपाने के लिए किया गया। इस अत्याचार के जवाब में मात्र 22 वर्षीय उषा मेहता ने एक योजना बनाई।
3: देश के असल हालात और आजादी के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन बनाएंगे।
1: उषा गांधी जी से प्रभावित थी। 8 साल की छोटी उम्र से ही वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी, मगर रेडियो स्टेशन का गठन करने में एक अड़चन थी।
6: रेडियो ऑपरेटर्स को अपने इक्विपमेंट सरेंडर करने होंगे, वरना सजा भुगतनी होगी।
1: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने सभी एमेच्योर रेडियो लाइसेंसों को रद्द कर दिया। रेडियो उपकरण जमा करा लिए गए, लेकिन एक एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर नारिमन प्रिंटर ने कुछ उपकरण बचा लिए और कुछ पैसे लेकर फिर उन्होंने एक रेडियो ट्रांसमीटर बना दिया।
7: उषा, मेरे गहने बेच दो और पैसे को राष्ट्र सेवा में लगा दो।
1: उषा की दादी ने अपने आभूषण बिकवा दिए। इस मुहिम को विट्ठल दास चावेरी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों की मदद भी मिली।
8: 42.34 मीटर पर अब आप सुनेंगे देश से प्रसारित होने वाला कांग्रेस रेडियो।
1: उषा ने चौपाटी के सी व्यू अपार्टमेंट से कांग्रेस रेडियो या आजाद रेडियो का प्रसारण शुरू कर दिया। उनका सपना साकार हो चुका था। अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित होने वाले कांग्रेस रेडियो की मदद से देशवासियों को देश की घटनाओं का सही सही ब्यौरा मिलने लगा। अंग्रेजों से बचने के लिए लगातार रेडियो का प्रसारण केंद्र बदला गया। समय के साथ रेडियो को देशवासियों का भरोसा हासिल हो गया।
9: आजाद रेडियो हमें दुनिया की सही जानकारी देता है, हमें इस पर विश्वास है।
1: मगर अंग्रेज नरिमन प्रिंटर को गिरफ्तार करके कांग्रेस रेडियो के ठिकाने का पता लगाने में सफल हो ही गए। उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय रेडियो पर वंदे मातरम बज रहा था। पुलिस वाले ने उसे रोकने को कहा, लेकिन उषा नहीं मानी।
3: ये हमारा राष्ट्रगान है, यू शुड स्टैंड इन अटेंशन।
1: उषा को कड़ी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वो 1946 तक जेल में ही रही।
10: रेडियो बैंड जिंदाबाद, रेडियो बैंड जिंदाबाद, रेडियो बैंड जिंदाबाद।
1: उनकी रिहाई के समय उन्हें रेडियो बैंड के नाम से उनका स्वागत किया गया। उषा मेहता ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रेडियो के माध्यम से जन जन की आत्मा से जोड़कर भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया।
11: We thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country.
0: चित्रांगदा सिंह की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

15 अगस्त का नाम सुनते ही बचपन की कुछ प्यारी सी यादें ऑटोमेटिकली याद आ जाती हैं। सुबह सुबह प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म डालकर हाथ में छोटा सा तिरंगा लिए असेंबली में जब जाती थी और जोर जोर से जय हिंद बोलते थे, वाह क्या ही यादें हैं यार। फिर वो इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम्स हो, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हो, चॉकलेट्स या लड्डू की डिस्ट्रीब्यूशन हो, बस उस दिन स्कूल जाना ना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं लगता था। तो शायद हमें आजादी की असली वैल्यू इतनी समझ नहीं आती थी कि क्या वैल्यू है उस आजादी की, लेकिन जब आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना तो लगता है कि वो छोटी छोटी खुशियां ही ना बचपन की सबसे खूबसूरत मेमोरीज थी। इसी के साथ मिर्ची विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे ट्यून्ड विद

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: सन 1928, लाहौर।
2: भाग, जल्दी भाग, जल्दी।
3: लाहौर में दिन दहाड़े भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स के सीने में गोलियां उतार दी। हर गोली जैसे एक संदेश था कि भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं है। पर गोरे मोटी चमड़ी के थे, वो कहां मानने वाले थे।
4: भगत, तुम्हें संभल कर रहना होगा। इन गोरों से बचकर निकलने के लिए मेरे पास एक योजना है।
3: सॉन्डर्स की हत्या के बाद हर तरफ गिरफ्तारियां हो रही थी। ऐसे में दुर्गावती देवी ने भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकालने की योजना बनाई।
4: ये लोग किसी परिवार पर शक नहीं करेंगे। हम पति पत्नी बनकर लाहौर से निकल जाएंगे। हमारे साथ में छोटा बच्चा भी होगा।
5: और राजगुरु?
4: वो नौकर के भेस में हमारे साथ होंगे।
3: योजना के अनुसार भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और सर के बाल काटकर अंग्रेजों की तरह सूट बूट पहन लिया। दुर्गावती देवी उनकी पत्नी बनी और एक छोटे बच्चे को गोद में ले लिया।
6: हर आदमी की तलाशी लो, किसी को भी बिना तलाशी के जाने मत देना।
4: दरोगा जी, बच्चा बहुत बीमार है, हमें तुरंत कानपुर जाना है, वरना मेरा बच्चा।
6: अरे बहन जी, आप परेशान मत होइए, आप जाइए।
3: अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भगत सिंह और राजगुरु तो सुरक्षित लाहौर से दूर निकल गए, पर आजादी की जंग अभी बाकी थी। आगे चलकर भगत सिंह ने जानबूझकर खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, ताकि ब्रिटिश सरकार की करतूतें पूरी दुनिया के सामने आ जाएं। और ऐसा हुआ भी। देश उबल रहा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और क्रांतिकारियों को रिहा करवाने के लिए। दुर्गावती देवी ने अपने गहने भी बेच दिए।
4: इन गहनों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, मुझे इनके बदले जो मिलेगा मैं उससे अंग्रेजी हुकूमत पर वार करूंगी।
3: जब अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को रिहा नहीं किया, तब दुर्गावती देवी ने ऐसे धमाके की योजना बनाई जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। उन्होंने पंजाब गवर्नर लॉर्ड हेली की हत्या करने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से दुर्गावती देवी असफल रही और

0: पकड़ी गई।
1: तुम जैसे गोरे गिद्ध मुझे पिंजड़े में कैद नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी कैद से निकलूंगी और भारत को भी निकालूंगी।
0: दुर्गावती देवी के लिए आगे का समय और भी मुश्किल रहा। भगत सिंह को छुड़ाने की जिद्दोजहद में उनके पति भगवती चरण वोहरा शहीद हो गए। पर इस वीरांगना ने हार नहीं मानी और आगे चलकर स्वतंत्र भारत में सांस ली। अफसोस कि दुर्गावती देवी के शौर्य और बलिदानों की गाथा ज्यादातर भारतीयों से अब तक दूर ही रही है।
2: सोनू निगम की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
3: हेलो,
4: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे
5: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
3: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
5: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूं यार, तू लाइन में आ रहा है? मैं लाइन में आ रहा हूं। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूं यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहां पे। हाँ तो दो मिनट रुक के तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
3: है?
5: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कु।
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah. Live

0: इमेजिन करो आप एक रूम में बैठे हो और सामने कोई स्ट्रेंजर खड़ा है और वो आपको कुछ बातें करता है आपसे और आपको ऑब्जर्व करता है और फिर अचानक बोलता है कि आपके माइंड में इस समय जो नाम चल रहा है वो है ये। एंड आप सोचोगे कि वेट, इसने मेरा माइंड रीड कैसे कर लिया भाई? बस यही से शुरू होता है मेंटलिज्म की फैसिनेटिंग दुनिया। मेंटलिज्म बेसिकली एक ऐसी परफॉर्मेंस आर्ट है जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे, मेमोरी और सजेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, वो आपके थॉट्स को पढ़ सकते हैं और इसी दुनिया का एक जाना पहचाना नाम जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ ना, वो है सुहानी शाह का। जी हाँ, सुहानी शाह जो आ रही हैं आपकी कतर में लाइव, आप उनको देखेंगे परफॉर्म करते हुए 25th of September को। मार्क योर डेट्स बिकॉज ये मौका ना खोने वाला नहीं है, क्योंकि सुहानी शाह ने बहुत कम उम्र में ना मैजिक की दुनिया में ना कदम रखा और धीरे धीरे मैजिक से आगे बढ़कर मेंटलिज्म की और अपनी पहचान बनाई है। उनके परफॉर्मेंसेस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि हमें सिर्फ सरप्राइज नहीं करती है वो, बल्कि हमें अपने ही माइंड और बिहेवियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है यार। वाकई में अगली बार अगर कोई बोले ना आई कैन रीड योर माइंड, तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दिमाग में कैसे घुस गया, बल्कि सवाल ये होना चाहिए मैंने अपने माइंड के बारे में ऐसा क्या रिवील कर दिया जो मुझे खुद पता ही नहीं चला। देखिए, सोचना समझने की बात है। Stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियां, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: ४९ पेशावर, अविभाजित भारत। पेशावर के किस्सा खाने बाजार या कहानी सुनाने वालों के बाजार की संकरी गलियों में क्रांति की खुशबू फैली हुई थी। पेशावर के मुख्य केंद्र से लगभग 100 मीटर की दूरी पर शाह वाली कत्ल के चौराहे पर एक छोटा सा घर था जिसका दरवाजा खुला हुआ था और सीने में देशभक्ति का जज्बा लिए एक लड़का बाहर निकला। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये कहानी है स्वतंत्रता सेनानी मीर ताज मोहम्मद की, और आसान शब्दों में कहूं तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के पिता। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नारा लगाया,
3: अंग्रेजों भारत छोड़ो, छोड़ो।
2: महात्मा गांधी का ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया प्रसिद्ध भाषण करोड़ों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता का अपना अधिकार छीनने के लिए प्रेरित कर गया। इस आंदोलन की आग ने ब्रिटिश राज को झुलसा दिया। पेशावर में फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने क्रांति का संदेश आवाम में फैलाया। इस क्रांतिकारी कदम के प्रमुखों में से एक थे मीर ताज मोहम्मद खान। वो अभी महज 15 साल के थे, लेकिन उनमें अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ये कहने का साहस था,
4: आपके कानून ब्रिटिश हैं और मैं एक हिंदुस्तानी, आपके कानून मुझ पर लागू नहीं होते। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मैं इन कानूनों का पालन नहीं करूंगा।
2: इस कच्ची उम्र में वो गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। आंदोलन को दबाने का जिम्मा संभालने वाले ब्रिटिश अधिकारी मीर ताज मोहम्मद की स्पष्टता पर अचंभित रह गए। वो सोच रहे थे कि वो इस लड़के को कैसे हरा सकते हैं जिसने अपने डर को ही हरा दिया। इस कच्ची उम्र में वो गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। आंदोलन को दबाने का जिम्मा संभालने वाले ब्रिटिश अधिकारी मीर ताज मोहम्मद की स्पष्टता पर अचंभित रह गए। वो सोच रहे थे कि वो इस लड़के को कैसे हरा सकते हैं जिसने अपने डर को ही हरा दिया।
4: ईमानदार और साधारण होना हमेशा बहुत खास होता है।
2: भारत का प्रतिष्ठित ताम्रपत्र प्राप्त करने के बाद भी वो अपनी ईमानदारी के प्रति अडिग रहे। MA LLB होने के बावजूद उन्होंने वकील के रूप में काम करने से इनकार कर दिया, और यही आदर्श और संस्कार उन्होंने अपने बेटे शाहरुख खान को भी दिए।
5: अपनी आजादी को कभी भी हल्के में नहीं लेना। सैकड़ों हिंदुस्तानियों ने इसे आपके लिए कमाया है, तो आप इसकी अहमियत समझिए और इसे बरकरार रखिए।
2: एक किशोर के रूप में ब्रिटिश शक्ति का सामना करते हुए भी वो अपने मन में पंख के समान हल्के थे। वो अपने उद्देश्यों को लेकर एकदम स्पष्ट थे, जैसे कि सभी सुपरस्टार होते हैं। शाहरुख खान के पिता स्वतंत्रता सेनानी मीर ताज मोहम्मद।
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनकी आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: साल 1938, कडक्कल, ट्रावणकोर।
2: अरे क्या बताएं, इस टैक्स से तो हमारी कमाई घट ही गई है।
3: ये और कुछ नहीं, अत्याचार है।
4: बहुत हुआ, अब हम टैक्स नहीं देंगे।
5: सबके सबर का बांध टूटने के बाद अब वहाँ के सारे लोग अपने पूरे दमखम के साथ अन्याय और जुल्म के खिलाफ खड़े हो चुके थे। नमस्कार, मैं हूँ रफ्तार और ये कहानी है कडक्कल विद्रोह की। आज केरला प्रांत में स्थित कडक्कल, जो कभी किसानों के लिए उपज बेचने का केंद्र हुआ करता था, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बाजार के बड़े बिचौलियों द्वारा गुंडों की मदद से कर के रूप में वसूल लिया जाता था।
2: अब तो हमारे लिए गुजारा कर पाना भी मुश्किल हो गया है।
4: प्रशासन सब जानकर भी बस तमाशा देख रहा है।
6: तो ठीक है, इसका बदला हम खुद लेंगे।
5: अगस्त और सितंबर में तनाव को हवा मिलती रही। बेतुके कारणों का हवाला देकर ट्रावणकोर स्टेट कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया और पुलिस ने इसे रोकने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया। शंखुमुगम तट पर आयोजित एक बैठक के दौरान पुलिस की गोलाबारी ने 3 लोगों की जान ले ली। जबरन टैक्स वसूली और इस घटना के साथ कडक्कल में आक्रोश और भी बढ़ गया।
4: ये गुंडे मन माने ढंग से हमसे पैसे वसूलते हैं।
2: मना करे तो हमें मार पड़ती है, उपज जब्त हो जाती है, और तो और पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है।
4: हमें इससे एक साथ लड़ना होगा।
5: सितंबर 1938 के आते आते विद्यार्थी, नौजवान सब मनमाने टैक्स के खिलाफ खादी और गांधी टोपी पहने पुरजोर विरोध कर रहे थे। इतने में मैजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की टुकड़ी उनके सामने आ खड़ी हुई। ये देखते ही वहां मौजूद लोग और जमकर नारे लगाने लगे। पुलिस को भीड़ हटाने का आदेश मिला। हालांकि हजारों आंदोलनकारियों की भीड़ के आगे उल्टा पुलिस को ही उनके आक्रोश से डरकर वापस जाना पड़ा। उस आवाम ने कडक्कल के पुलिस स्टेशन और सरकारी दफ्तर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारिता का पूरी तरह सफाया हो गया और कुछ क्षेत्रों को शामिल कर एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, जहां राघवन पिल्लई बने कडक्कल के राजा और चंदीरन कलियांबी बने उनके मुख्यमंत्री। और इस लड़ाई को जारी रखने के इरादे से राघवन पिल्लई ने कैंप वाले स्कूल को पूरी तरह किला बंद कर लिया।
4: हम अपने लहू के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे।
5: अंजाम से भली भांति अवगत होते हुए भी वो लड़ने को तैयार थे और ये खबर भी फैल गई।
2: कडक्कल में अव्यवस्था फैली है, जल्दी से जल्दी मदद भेजे।
5: सेना को बुलाया गया और उन्हें रोकने के लिए आंदोलनकारियों ने पेड़ काटे, सड़कें ध्वस्त कर दी। लेकिन 9 दिनों बाद सेना को कामयाबी मिली। कई लोग गिरफ्तार हुए और कुछ की हिरासत में मिली यातना से जान चली गई। अखबारों ने कडक्कल मुद्दे पर खबरें छापी।
7: कुछ नहीं है इनके पास, नमक भी नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं। कोई कानून, कोई अफसर या सेना इसे सही नहीं ठहरा सकती।
5: कडक्कल आम लोगों के अन्याय के खिलाफ खड़े होने का मजबूत उदाहरण है। ये विद्रोह कोई मामूली विद्रोह नहीं था। इसमें लोगों ने मौजूदा सरकार की सत्ता पलट लोक सत्ता स्थापित की, जो बाकियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आज भी है।
0: रफ्तार की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: बचपन में ना मुझे आज भी याद है कि हम डियर डायरी लिखते थे। उस डायरी में हम वो दिन की हर चीज़ जो भी हमारे साथ हुई होती है डियर डायरी को बताते हुए सब लिखते थे। और बस सामान इधर उधर करते हुए मुझे अपनी वही पुरानी डायरी मिल गई और उसे खोलते ही मुझे एक पेज मिला। ऊपर लिखा था 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। खूबसूरत सी लाइन लिखी थी, अच्छे से क्लियर नहीं थी, लेकिन हाँ लिखा था कि टुडे वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे एंड आई गॉट अ फ्लैग एंड वन लड्डू एंड आई एम वेरी हैप्पी। बस इतनी सी बात थी, लेकिन उस एक पेज ने ना पूरा बचपन आंखों के सामने ला दिया। स्कूल का ग्राउंड, दोस्तों की मस्ती, तिरंगा, नेशनल एंथम और वो छोटा सा लड्डू, बस वही जिंदगी थी। आज हम इंडिपेंडेंस डे को फ्रीडम, सैक्रिफाइस और हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से समझते हैं, लेकिन बचपन में इंडिपेंडेंस डे की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी। तिरंगा हाथ में हो, फ्रेंड्स के साथ में हो और दिल खुश हो। कभी कभी जो पुरानी डायरी का एक पेज होता है ना, वो भी पूरा बचपन आपको दिखा देता है। दोबारा से आपको वो सारी यादें ताजा हो जाती है जो आपने बचपन में संजो के रखी थी, वो सारी एक पल में ताजा हो जाती है। इसी के साथ सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट। बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
1: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय, आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट श्योर हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स, इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
0: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हैट ओ ओ हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: Mahendra Singh Dhoni के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah.

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: 1928, कैम्ब्रिज।
2: कोई इंसान उसी काम में एक्सेल कर सकता है जिसमें उसका जुनून हो, जिसमें उसका विश्वास हो। मैं फिजिक्स में काम करने के लिए तड़प रहा हूँ। बीटोविन को कोई कहे साइंटिस्ट बन जाओ क्योंकि ये अच्छा है, ये बेईमानी बात होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे फिजिक्स पढ़ने दें। आपका आज्ञाकारी होमी।
1: उन्होंने अपने पिता को फिजिक्स पढ़ने देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने वाला ये व्यक्ति भारत में वैज्ञानिक सोच की अवधारणा बदलने वाला था। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मैसी और ये कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। जब भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत से निकालने की कोशिश में लगे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत के भविष्य की बुनियाद बनाने को अपना लक्ष्य मान बैठे थे। उनमें से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1939 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी करके वो भारत लौटे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के साथ काम करने लगे। डॉक्टर रमन हमेशा कहते थे,
3: सही सवाल पूछो तो कुदरत खुद अपने राज तुम्हें बताएगी।
1: डॉक्टर भाभा ने सही सवाल पूछे। वो वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में भारत की प्रगति सुनिश्चित करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही समझ गए थे कि भारत के तत्कालीन संस्थानों में न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रे फिजिक्स या किसी अन्य विषय की शोध के लिए दुर्भाग्यवश सही सुविधाएं नहीं थी।
2: यहाँ उचित परिस्थितियों और इंटेलिजेंट बेटे की सहायता की कमी है। इससे देश के वैज्ञानिक विकास की रफ्तार पर असर पड़ता है। तुम्हारा मित्र होमी।
1: डॉक्टर भाभा ने अपने दोस्त जेआरडी टाटा को खत में ये लिखा, तो जेआरडी टाटा ने उनको सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट से नए संस्थान के लिए पैसों की बात करने का सुझाव दिया। डॉक्टर भाभा ने सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट को 1944 में अपना प्रस्ताव भेजा, जिसमें उन्होंने सर सोराब सकलतवाला को लिखा,
2: मैंने फिजिक्स की एडवांस ब्रांच में रिसर्च के लिए बॉम्बे में एक फर्स्ट क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का सपना देखा है। इस समय भारत में कोई बड़ा संस्थान नहीं है जो फिजिक्स की मूलभूत समस्याओं पर रिसर्च करे। जब आज से 2 दशक के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से सक्सेसफुल बिजली बनाई जा सकेगी, तो भारत को एक्सपर्ट्स के लिए दूसरे देशों की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
1: सभी को डॉक्टर भाभा के प्रस्ताव में अपार योग्यता दिखी और 1 जून 1945 को सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शानदार सफर की शुरुआत हुई। इसके पहले निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा,
2: साइंस हमारी पूरी सामाजिक संरचना का आधार है, जिसके बिना जीवन अकल्पनीय होगा।
1: शुरुआत से ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने वैज्ञानिकों के अग्रणी काम द्वारा कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और भारतीय वैज्ञानिक प्रगति का ध्वजवाहक बना। ये भारत का गौरव होने के साथ ही पूरे विश्व में सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है। डॉक्टर भाभा एक स्वतंत्र भारत का उज्जवल सवेरा देख पा रहे थे और अपने वैज्ञानिक कुशाग्रता से उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत की वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र का सूरज हमेशा चमकता रहे।
0: विक्रांत मैसी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
4: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
5: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
4: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
5: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

एक छोटा सा बच्चा था, हर साल 15 अगस्त पर स्कूल जाता और अपने हाथ में तिरंगा लेकर बहुत खुश होता था। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी जी, कि हम हर साल 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? दादी जी मुस्कुराई और बोली, बेटा क्योंकि एक वक्त था जब हम अपने देश के फैसले खुद नहीं ले सकते थे, और फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी, अपने सपने, सब कुछ देश की आजादी के लिए लगा दिया। बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने तिरंगे को देखा और पूछा, तो दादी जी क्या ये तिरंगा उनकी याद है? दादी जी ने कहा, याद भी है और जिम्मेदारी भी है। साल बीत गए, वो बच्चा बड़ा हो गया। आज जब वो 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं तो उसे सिर्फ एक नेशनल फ्लैग नहीं दिखता, उसे उन लोगों के सपने दिखते जिन्होंने एक आजाद इंडिया का ड्रीम देखा था। और शायद इंडिपेंडेंस डे का असली मतलब भी यही है, आजादी सिर्फ सेलिब्रेट करने की चीज नहीं है, उसे रिस्पेक्ट करने और संभाल कर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। So happy Independence Day once again, and stay tuned with us only on 89.6 Mirchi 1 It's Hot.

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: वो निडर भी थी और घातक भी। नमस्कार, मैं हूँ भूमि सतीश पेडनेकर और भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली शेरनी रानी चिन्नम्मा को मेरा सलाम। साल 1824, कित्तूर, कर्नाटका।
2: ये मेरा कित्तूर है। अंग्रेजों का इस मिट्टी पर कोई हक नहीं है जो सिर्फ मेरी और मेरे लोगों की है, और इसके लिए मैं मरते दम तक लड़ूंगी।
3: Then it will be the end of you, Her Majesty.
1: अंग्रेजों ने रानी को डराने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्हें रानी चिन्नम्मा के फौलादी जज्बे का कोई अंदाजा नहीं था। रानी चिन्नम्मा ने 10 साल से भी कम समय में अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया था। इसके बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा नाम के एक लड़के को गोद लिया और उसे अपना वारिस बताया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नए वारिस को मानने से साफ इनकार कर दिया।
3: We refuse to acknowledge your heir. Your land is ours.
2: अगर तुम अंग्रेजों को युद्ध ही चाहिए तो यही सही। अब फैसला सीधे रणभूमि पर होगा।
1: और फिर एक भयानक जंग शुरू हुई। रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों की बड़ी सेना और उनके आधुनिक हथियारों का सामना पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ किया।
2: उन्हें हमला करने दो, जैसे ही वो थक जाएंगे हम उन पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे।
1: रानी चिन्नम्मा के बेहतरीन वॉर टैक्टिक्स और रणनीतियों ने अंग्रेजों को घुटने पे ला दिया। उनका एक बड़ा अफसर मारा गया और दो को बंदी यानी हॉस्टेज बना लिया गया, पर उनको जान से मारने के बजाय दरियादिल रानी ने उन्हें आजाद कर दिया।
2: मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, दोबारा कभी कित्तूर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना।
1: लेकिन धोखेबाज अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ कित्तूर पर फिर से हमला किया। इस बार भी चिन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आखिर में उन पर कब्जा कर लिया गया।
3: We told you Kittur would be ours.
2: तुम फिरंगियों को सिर्फ धोखे से जीतना आता है। कित्तूर हमेशा मेरा था और मेरा ही रहेगा।
1: रानी चिन्नम्मा ने जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उन्होंने उन जुल्मियों के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया। साल 1857 की क्रांति से भी बहुत पहले उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि जब जुल्म एक नियम बन जाए तो बगावत करना आपका फर्ज बनता है। आज चिन्नम्मा को उनके स्टैचूज और पोस्टेड स्टैम्प्स के जरिए याद किया जाता है, पर आज हमारा अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण उन्हीं की देन है।
0: भूमि पेडनेकर की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
4: मिर्ची
5: इसका बना, उसका बना, सका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
6: हेलो
7: मैडम, गुड इवनिंग। बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
6: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
7: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
6: अगर अगली बार फोन आ गए ना
7: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
6: हेलो
7: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
6: वहीं आके ऐसा तेरे पैर तो मारूंगी ना।
8: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ही एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, आपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
7: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया।
8: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
6: नहीं
8: से सॉरी।
6: I'm sorry, no, I'm sorry.
8: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
6: कुकड़ो को।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
10: ये पटाक।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
10: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
11: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
12: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
10: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
13: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
10: The mentalist Suhani Shah. Live

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: इंडियन माइथोलॉजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ दिखाया जा रहा है। ये विदुर नहीं, गांधी है। महाभारत के नाम पर बागी बनाए जा रहे हैं। This film should be banned right now.
2: कहते हैं एक तस्वीर हजार लफ्जों के बराबर होती है, तो क्या लाखों तस्वीरों से बनी एक फिल्म ब्रिटिश राज की नींव हिला सकती थी? सन 1921 में पर्दे पर उतरी भक्त विदुर के बारे में ये बात कही जा सकती है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी तो महाभारत के विदुर की थी, लेकिन फिल्म में बातें जुल्म और आजादी की थी। यहां तक कि विदुर का किरदार निभाने वाले अभिनेता में गांधी जी की झलक भी थी। उन्हें गांधी टोपी पहने चरखा चलाते हुए दिखाया गया था। डायरेक्टर कांजी भाई राठौड़ ने मानो बिन कहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत छेड़ दी। इस फिल्म से अंग्रेज इतने कांप गए कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये वो पहली फिल्म थी जिसे बैन किया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
1: Indians are rockly. हमें इन्हें स्कूल में ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे ये हमेशा हमारे नौकर बने रहे।
2: एक तरफ उस समय के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाकर अंग्रेज देश के स्कूलों में भविष्य के नौकर तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ फिल्ममेकर्स उस दौर की सच्चाई को सिनेमा के जरिए दिखा रहे थे। इन्हीं में से एक थे भालजी पेंढारकर, जिनकी फिल्म वंदे मातरम आश्रम ब्रिटिश एजुकेशन का खुला विरोध कर रही थी।
3: ये अंग्रेजी शिक्षा हमें सिर्फ गुलाम बना रही है, पढ़ा लिखा गुलाम।
2: क्योंकि अंग्रेजों को भारतीय सिनेमा की ताकत का अंदाजा था, इसलिए वंदे मातरम आश्रम फिल्म रिलीज होते ही सेंसर कर दी गई।
3: अंग्रेज हमारी फिल्म बैन कर सकते हैं, हमारी सोच नहीं। हम हर डायलॉग में देशभक्ति लिखेंगे, हर गाने में अंग्रेजों को ललकारेंगे।
2: क्रांति की ये आग हर फिल्म के साथ और भड़कती गई। फिर आई सन 1942 में फिल्म क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके शोज देश भर में हाउसफुल थे। पर अंग्रेजों की दुखती रग पर हाथ फेरने का काम सन 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत के इस गाने ने किया।
4: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्ताना की आवाज में इस गाने को सुनकर सिनेमा हॉल क्रांतिकारियों के केंद्र में बदल गए।
4: दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
2: कवि प्रदीप के लिखे इस गाने को सुनकर अंग्रेजों के माथे पर बल पड़ गए।
5: Who wrote this? Find that man and arrest him now.
2: लफ्ज, आवाज और जज्बात क्या कभी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? सिनेमा भी यही है। इसीलिए फिल्म किस्मत ना सिर्फ सुपरहिट रही, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ देश में उबाल लाने में भी कामयाब रही। शायद इसीलिए कहा जाता है फिल्म समाज का आईना होता है। एक ऐसा आईना जो गुलामी के धब्बे और आजादी का नूर सब दिखाता है।
0: आमिर खान की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

जो एक ऐसी इवनिंग है जहाँ पे मैजिक सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि आपके माइंड के अंदर भी चल रहा है। Yes, you heard that right. Suhani Shah is coming to Qatar live for the very first time on 25th September. So, bhai, save your dates because Suhani Shah is known for her incredible mind reading, magic or psychology based performances. Aur ab aap apne इस एक्सपीरियंस को लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो शायद आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आपने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा उनको मैजिक करते हुए, माइंड रीड करते हुए बेसिकली। तो बस अब आपको करना क्या है, अब आपकी बारी है उनको लाइव देखने की कतर में। तो अगर आप भी इस मैजिकल इवनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो अपने करना क्या, फ़ोन उठाना है फटाफट से और अपनी टिकट्स बुक करवा देनी है और अपने फ्रेंड्स की भी करवा देनी है स्नूनू ऐप के जरिए। जी हाँ, जहाँ पे टिकट्स ऑनलाइन हो चुकी हैं आप बुक करवा सकते हैं। 25th September को मिलते हैं सुहानी शाह के साथ एक मैजिकल एक्सपीरियंस को लेके। स्टेडियम विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: वो निडर भी थी और घातक भी। नमस्कार, मैं हूँ हुमा कुरैशी और भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली उस शेरनी वीरा मंगई कोयली को मेरा सलाम। बात है साल 1780 की। शिवागंगा, जो आज का तमिलनाडु है, युद्ध के मैदान में जंग लड़ चुकी एक यंग सेना कमांडर ने अपनी रानी की तरफ देखा और कहा,
2: मैं जानती हूँ इन गोरों को घुटनों पर कैसे लाना है, मुझे बस थोड़ा शुद्ध देसी घी लाकर दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करती हूँ।
1: ये कहने वाली थी कोयली, रानी वेल्लू नचियार की सेना की सबसे फियरलेस कमांडर। किसी को कानो कान खबर न थी कि कोयली के दिमाग में उस वक्त कितना खतरनाक प्लान चल रहा था।
3: This is our chance to expand. Let's attack and capture the state. It will bolster our incomes.
1: ईस्ट इंडिया कंपनी ने धोखे से हमला करके शिवगंगा के गौरवशाली राज्य पे कब्जा कर लिया था, लेकिन शिवगंगा की रानी रानी वेल्लू नचियार हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो जिंदगी भर ना भूल सकेंगे, और इसका सबसे बड़ा मास्टर प्लान बनाया उनके सेनापति कोयली ने।
2: अंग्रेजों की असली ताकत उनके हथियार है, और मैं उनकी इस ताकत का तिनका तिनका उखाड़ फेंकूंगी।
1: दिन था विजयदशमी का। दूर दूर से लोग किले के मंदिर में पूजा करने और जश्न मनाने आए थे। किले में भीड़ थी और पहरेदारी थोड़ी ढीली। बस इस मौके का फायदा उठाते हुए कोयली ने अपने पूरे शरीर पे घी और तेल उंडेल लिया और खुद को आग लगा दी। उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा,
2: मैं ही हूँ अग्नि, मैं ही हूँ नियति, और मैं ही हूँ तुम्हारा अंत।
1: कोयली के शरीर पे लगे घी ने आग की लपटों को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। वो एक दहकती हुई ज्वाला बनकर किले की आर्मरी की तरफ दौड़ी, जहां अंग्रेजों का सारा बारूद रखा था। और जैसे ही वो अंदर पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी आर्मरी तबाह हो चुकी थी, और इस एक झटके के साथ शिवगंगा से अंग्रेजों का कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया। शिवगंगा का कंट्रोल एक बार फिर हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गया। ऐसा सुसाइड मिशन और ऐसी जांबाजी पूरी दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। रानी वेलु नचियार की आंखों में आंसू थे।
2: कोयली, तुमने शिवगंगा की रक्षा अपने खुद के बच्चे की तरह की है।
1: कोयली ने इस बलिदान के बदले कभी किसी से तारीफ की उम्मीद नहीं की। वो तो बस हमारे लिए एक आजाद देश चाहती थी, जहां हम खुली हवा में सांस ले सके। कोयली शायद उस दिन शहीद हो गई, लेकिन लगभग 250 साल बाद भी आज भी उनका बलिदान हमारी आजादी में अमर है।
0: हुमा कुरैशी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
4: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल। लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल। बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: संथाल विद्रोह 1855, भोगनाली गांव, झारखंड।
2: हमारी जमीन जमींदारों द्वारा छीनी जा रही है।
3: ये सेठ लोग सब कुछ छीन लेते हैं और हमें मजबूर करके हमें बंधुआ मजदूरी में झोंक देते हैं।
2: हम इन गोरों और जमींदारों के नाम परवाना जारी करते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर इन्होंने अपने तेवर नहीं बदले तो ये मामला हम खुद हल करेंगे।
1: भाई सीधो और कानू ने भोगना डी गांव में इकट्ठा हुए 10,000 से ज्यादा संथाल आदिवासियों को संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और ये कहानी है संथाल क्रांति की। अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों के आसपास का इलाका घेराबंद कर लिया। इसका नाम दमन एक कोह रखा गया, जिसका मतलब होता है पहाड़ों का आंचल। संथाल इस इलाके में बसे हुए थे, उन्हें वहां खेती के लिए जंगलों को साफ करने के लिए बुलाया गया था। अंग्रेज पैसों और टैक्स के लोभ में ज्यादा से ज्यादा जंगल की जमीन को खेती के अधीन लाना चाहते थे। संथाल समुदाय को इसका विरोध करने का पूरा हक था, क्योंकि वो वहां के मूल निवासी थे, इसलिए जमीन उनकी थी। लेकिन जमीन वहां के जमींदारों को दी गई, जो किराया बढ़ाते गए, साथ ही बाकी लेनदार, व्यापारी और अंग्रेज भी संथालों का शोषण करने लगे।
4: हमें एक दिव्य शक्ति ने क्रांति का आदेश दिया है।
1: संथाल समुदाय कलकत्ता मार्च करके गवर्नर जनरल से मिलना चाहते थे, लेकिन एक प्रमुख संथाल गांव के मुखिया हरमा देश मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। संथालों की अंतिम चेतावनी भी नजरअंदाज कर दी गई और इसने बगावत की चिंगारी को आंच दी।
5: हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमारी सांस चलेगी।
1: सीधो कान्हो की बहनें फूलो और झानो भी विद्रोह में भाग ले रही थी। इसे इस आंदोलन को महिलाओं की ओर से भी बड़ा योगदान मिला, साथ ही उनके भाई चांद और भैरव भी इससे जुड़ गए।
6: आज से तुम किसी का शोषण नहीं करोगे।
1: जमींदार और लेनदार संथाल विद्रोह का क्रोध महसूस करने लगे। कुख्यात लेनदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकुड़ के जमींदारी महल पर कब्जा कर लिया गया। संथाल हूल या विद्रोह की आग ने अंग्रेजों और जमींदारों के अनाज के गोदाम भी झुलसा दिए।
7: ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम इसे जल्द ही कुचल देंगे।
1: एक स्थानीय पुलिस कर्मचारी ने छोटी फौज के साथ आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसे मार दिया गया। भाई सीधो कान्हो पैरेलल प्रशासन चला रहे थे। संथाल क्रांतिकारी केवल तीरों और भालों के साथ ब्रिटिश बंदूकों से लड़ रहे थे। संथाल योद्धा शिकार के वक्त जहर भरे तीरों का उपयोग करते थे, लेकिन अपने दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। ये देखकर सेना के कुछ सिपाहियों को शर्मिंदगी महसूस हुई।
8: उनके पास बंदूकें भी नहीं है और हम उन पे गोलियां चला रहे हैं, इसके बावजूद भी बहादुर संथाल झुकने को तैयार नहीं थे।
1: संथालों के खिलाफ लड़ाकू हाथी उतारे गए, मार्शल लॉ लागू किया गया, बहुत से पकड़े गए, बहुत को फांसी दे दी गई, गांव के गांव बर्बाद कर दिए गए। संथाल क्रांति के जनरल सिद्धो और कान्हो और उनके सारे भाई बहन फूलो झानो चांद और भैरव भी मारे गए। सबक सिखाने के लिए कहा जाता है कि सिद्धो और कान्हो के शव को एक पेड़ से लटका दिया गया।
9: हम सब बाघ हैं बाघ, जब तक हमारी रगों में खून बहेगा तब तक हमारी रूह में हिम्मत बनी रहेगी।
1: शांति प्रिय और मेहनत कश संथाल समुदाय की आह ने अंग्रेजों को डरा दिया था। नए कानून लागू किए गए, बिचौलिए को हटाया गया। संथाल क्रांति में आदिवासियों के अलावा भी कई लोग शामिल हुए। हर साल 30 जून को हुल क्रांति दिवस मनाया जाता है। संथाल क्रांति आदिवासियों के प्रदर्शन का प्रतीक बन गया और स्वतंत्रता के योद्धाओं के संकल्प को मजबूती दी।

0: पंकज त्रिपाठी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब थर्सडे आता है ना, तो आप थर्सडे शाम को सोचते हो कि यार मेरे पास अपना दो दिन है, मैं उसमें खूब सोऊंगी और ऐश करूंगी। और इसको बोलने के तुरंत दो मिनट बाद ही मुझे पता लगता है कि आज सैटरडे की शाम आ गई है और अगले दिन मुझे ऑफिस जाना है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, मेरे साथ तो बहुत होता है कि मतलब एक झटके में मेरा वीकेंड खत्म हो जाता है और समझ में नहीं आता मैंने उस वीकेंड में कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ इंजॉय नहीं किया शायद, और खत्म भी हो गया वीकेंड। अब आप क्या चाहते हैं, वीकेंड कितना लंबा हो कितना लंबा होना चाहिए ताकि आपको महसूस हो कि हाँ भाई अब मुझे काम पे जाना है। ऐसे ही होना चाहिए ना वीकेंड, तो एटलीस्ट चार दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए वीकेंड की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ना मुझे बताइएगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है मिर्ची ईशा के नाम से, ऑल्सो मिर्ची वन खाते पर भी आप बता सकते हैं, एंड आप 5000196 पर भी बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या सोचना है। फिलहाल मेरा वक्त हो चुका है जाने का, आप लोगों से लेती हूँ अलविदा, अब मिलूंगी आपको अगले हफ्ते एंड ऑल्सो ऑन वीकेंड एज वेल। बाय, टेक केयर, शुभ खैर एंड गुड नाइट, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: 1928, कैम्ब्रिज।
2: कोई इंसान उसी काम में एक्सेल कर सकता है जिसमें उसका जुनून हो, जिसमें उसका विश्वास हो। मैं फिजिक्स में काम करने के लिए तड़प रहा हूँ। बीटोविन को कोई कहे साइंटिस्ट बन जाओ क्योंकि ये अच्छा है, ये बेईमानी बात होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे फिजिक्स पढ़ने दें। आपका आज्ञाकारी होमी।
1: उन्होंने अपने पिता को फिजिक्स पढ़ने देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने वाला ये व्यक्ति भारत में वैज्ञानिक सोच की अवधारणा बदलने वाला था। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मैसी और ये कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। जब भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत से निकालने की कोशिश में लगे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत के भविष्य की बुनियाद बनाने को अपना लक्ष्य मान बैठे थे। उनमें से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1939 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी करके वो भारत लौटे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के साथ काम करने लगे। डॉक्टर रमन हमेशा कहते थे,
3: सही सवाल पूछो तो कुदरत खुद अपने राज तुम्हें बताएगी।
1: डॉक्टर भाभा ने सही सवाल पूछे। वो वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में भारत की प्रगति सुनिश्चित करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही समझ गए थे कि भारत के तत्कालीन संस्थानों में न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रे फिजिक्स या किसी अन्य विषय के शोध के लिए दुर्भाग्यवश सही सुविधाएं नहीं थी।
2: यहाँ उचित परिस्थितियों और इंटेलिजेंट बेटे की सहायता की कमी है। इससे देश के वैज्ञानिक विकास की रफ्तार पर असर पड़ता है। तुम्हारा मित्र होमी।
1: डॉक्टर भाभा ने अपने दोस्त जेआरडी टाटा को खत में ये लिखा, तो जेआरडी टाटा ने उनको सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट से नए संस्थान के लिए पैसों की बात करने का सुझाव दिया। डॉक्टर भाभा ने सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट को 1944 में अपना प्रस्ताव भेजा, जिसमें उन्होंने सर सोराब सकलतवाला को लिखा,
2: मैंने फिजिक्स की एडवांस ब्रांच में रिसर्च के लिए बॉम्बे में एक फर्स्ट क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का सपना देखा है। इस समय भारत में कोई बड़ा संस्थान नहीं है जो फिजिक्स की मूलभूत समस्याओं पर रिसर्च करे। जब आज से 2 दशक के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से सक्सेसफुल बिजली बनाई जा सकेगी, तो भारत को एक्सपर्ट्स के लिए दूसरे देशों की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
1: सभी को डॉक्टर भाभा के प्रस्ताव में अपार योग्यता दिखी और 1 जून 1945 को सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शानदार सफर की शुरुआत हुई। इसके पहले निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा,
2: साइंस हमारी पूरी सामाजिक संरचना का आधार है, जिसके बिना जीवन अकल्पनीय होगा।
1: शुरुआत से ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने वैज्ञानिकों के अग्रणी काम द्वारा कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और भारतीय वैज्ञानिक प्रगति का ध्वजवाहक बना। ये भारत का गौरव होने के साथ ही पूरे विश्व में सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है। डॉक्टर भाभा एक स्वतंत्र भारत का उज्जवल सवेरा देख पा रहे थे और अपने वैज्ञानिक कुशाग्रता से उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत की वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र का सूरज हमेशा चमकता रहे।
0: विक्रांत मैसी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग It's hot.
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा
3: मिर्ची
4: नबीद
3: बोल रहा हूँ.
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू के लिए क्या करना पड़ेगा
3: वो आपको मुझे बताना होगा.
4: तो मैं अभी बता दूँ.
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
4: संजना.
3: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का.
3: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं.
3: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
3: हूं. ओके चलिए. हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का. मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है रेडियो मिर्ची पे.
4: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू. थैंक यू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at SCT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

0: unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner, Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Hozaras. Super sale. 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homezaras.qa and Daiso Japan. Your one-stop back-to-school shop. Printing and advertising partner, Brand Arts. Print, signage and events. Your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
1: Visual media partner, Reha Media.
0: Production partner, Symphony.
2: मिर्ची के सभी लिसनर्स को इंडिया के 18th इंडिपेंडेंस डे की तहे दिल से बधाई। वैसे अगर देखा जाए तो आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है कि जिस भारत का सपना हमारे हीरोज ने देखा था, उसे हर दिन हम अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से, चाहे देश में रहें या विदेश में रहें, जरूर बेहतर बनाएं। अपने देश का नाम हर सरजमी में जरूर ऊंचा रखें। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इस मिशन को जरूर अकम्पलिश करेंगे, एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।
3: यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। East or West, yo! India is the best. Yo! East or West, yo! India is the best.

0: मिट्टी के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: होने डर भी थी और घातक भी। नमस्कार, मैं हूँ भूमि सतीश पेडनेकर और भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली शेरनी रानी चिन्नम्मा को मेरा सलाम। साल 1824, कित्तूर, कर्नाटका।
3: ये मेरा कित्तूर है। अंग्रेजों का इस मिट्टी पर कोई हक नहीं है, जो सिर्फ मेरी और मेरे लोगों की है, और इसके लिए मैं मरते दम तक लड़ूंगी।
4: Then it will be the end of you, Her Majesty.
2: अंग्रेजों ने रानी को डराने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्हें रानी चिन्नम्मा के फौलादी जज्बे का कोई अंदाजा नहीं था। रानी चिन्नम्मा ने 10 साल से भी कम समय में अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया था। इसके बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा नाम के एक लड़के को गोद लिया और उसे अपना वारिस बताया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नए वारिस को मानने से साफ इनकार कर दिया।
4: We refuse to acknowledge your heir. Your land is ours.
3: अगर तुम अंग्रेजों को युद्ध ही चाहिए तो यही सही। अब फैसला सीधे रणभूमि पर होगा।
2: और फिर एक भयानक जंग शुरू हुई। रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों की बड़ी सेना और उनके आधुनिक हथियारों का सामना पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ किया।
3: उन्हें हमला करने दो, जैसे ही वो थक जाएंगे हम उन पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे।
2: रानी चिन्नम्मा के बेहतरीन वॉर टैक्टिक्स और रणनीतियों ने अंग्रेजों को घुटने पे ला दिया। उनका एक बड़ा अफसर मारा गया और दो को बंदी यानी हॉस्टेज बना लिया गया, पर उनको जान से मारने के बजाय दरियादिल रानी ने उन्हें आजाद कर दिया।
3: मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, दोबारा कभी कित्तूर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना।
2: लेकिन धोखेबाज अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ कित्तूर पर फिर से हमला किया। इस बार भी चिन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आखिर में उन पर कब्जा कर लिया गया।
4: We told you Kittur would be ours.
3: तुम फिरंगियों को सिर्फ धोखे से जीतना आता है। कित्तूर हमेशा मेरा था और मेरा ही रहेगा।
2: रानी चिन्नम्मा ने जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उन्होंने उन जुल्मियों के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया। साल 1857 की क्रांति से भी बहुत पहले उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि जब जुल्म एक नियम बन जाए तो बगावत करना आपका फर्ज बनता है। आज चिन्नम्मा को उनके स्टैचूज और पोस्टेड स्टैम्प्स के जरिए याद किया जाता है, पर आज हमारा अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण उन्हीं की देन है।
1: भूमि पेडनेकर की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग It's hot.
1: Check. Hey yo, this one is for all the little rock stars.
2: Vacation over हुआ है अब जाना होगा स्कूल. Late morning उठने का बंद होगा रूल. Bags on your shoulders, energy रखना full.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Energie.
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: इंडियन माइथोलॉजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ दिखाया जा रहा है। ये विदुर नहीं, गांधी है। महाभारत के नाम पर बागी बनाए जा रहे हैं। This film should be banned right now.
3: कहते हैं एक तस्वीर हजार लफ्जों के बराबर होती है, तो क्या लाखों तस्वीरों से बनी एक फिल्म ब्रिटिश राज की नींव हिला सकती थी? सन 1921 में पर्दे पर उतरी भक्त विदुर के बारे में ये बात कही जा सकती है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी तो महाभारत की विदुर की थी, लेकिन फिल्म में बातें जुल्म और आजादी की थी। यहां तक कि विदुर का किरदार निभाने वाले अभिनेता में गांधी जी की झलक भी थी। उन्हें गांधी टोपी पहने चरखा चलाते हुए दिखाया गया था। डायरेक्टर कांजी भाई राठौर ने मानो बिन कहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत छेड़ दी। इस फिल्म से अंग्रेज इतने काम गए कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये वो पहली फिल्म थी जिसे बैन किया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
2: इंडियंस आर रॉकले, हमें इन्हें स्कूल में ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे ये हमेशा हमारे नौकर बने रहे।
3: एक तरफ उस समय के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाकर अंग्रेज देश के स्कूलों में भविष्य के नौकर तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ फिल्ममेकर्स उस दौर की सच्चाई को सिनेमा के जरिए दिखा रहे थे। इन्हीं में से एक थे भालजी पेंढारकर, जिनकी फिल्म वंदे मातरम आश्रम ब्रिटिश एजुकेशन का खुला विरोध कर रही थी।
4: ये अंग्रेजी शिक्षा हमें सिर्फ गुलाम बना रही है, पढ़ा लिखा गुलाम।
3: क्योंकि अंग्रेजों को भारतीय सिनेमा की ताकत का अंदाजा था, इसलिए वंदे मातरम आश्रम फिल्म रिलीज होते ही सेंसर कर दी गई।
4: अंग्रेज हमारी फिल्म बैन कर सकते हैं, हमारी सोच नहीं। हम हर डायलॉग में देशभक्ति लिखेंगे, हर गाने में अंग्रेजों को ललकारेंगे।
3: क्रांति की ये आग हर फिल्म के साथ और भड़कती गई। फिर आई सन 1942 में फिल्म क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके शोज देश भर में हाउसफुल थे। पर अंग्रेजों की दुखती रग पर हाथ फेरने का काम सन 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत के इस गाने ने किया।
5: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
3: अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्ताना की आवाज में इस गाने को सुनकर सिनेमा हॉल क्रांतिकारियों के केंद्र में बदल गए।
5: दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
3: कवि प्रदीप के लिखे इस गाने को सुनकर अंग्रेजों के माथे पर बल पड़ गए।
6: Who wrote this? Find that man and arrest him now.
3: लफ्ज, आवाज और जज्बात क्या कभी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? सिनेमा भी यही है। इसीलिए फिल्म किस्मत ना सिर्फ सुपरहिट रही, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ देश में उबाल लाने में भी कामयाब रही। शायद इसीलिए कहा जाता है फिल्म समाज का आईना होता है, एक ऐसा आईना जो गुलामी के धब्बे और आजादी का नूर सब दिखाता है।
1: आमिर खान की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
7: बॉलीवुड बोल डाल,
8: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
9: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
10: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते हैं?
11: मैं करूं?
12: आप करोगे?
11: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
12: तो वो तो पता है मेरा बस चलता है, एक एक को घुसण मार के आती हूं।
11: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड।
10: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: बॉलीवुड बोल डाल,
8: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
9: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग It's hot.
1: जिस देश ने हमें जिंदगी में इतना बड़ा तोहफा दिया, क्यों ना हम आज उससे एक वादा कर लें। वेल, मिर्ची के सभी लिसनर्स को भारत के 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। जिस देश ने हमें आजाद होकर सांस लेने की शक्ति दी, ये मौका दिया, क्यों ना हम उसे उड़ने की आजादी दें। देखिए, अब हमारी बारी है नई ऊंचाइयों तक अपनी सोच के जरिए अपने देश को लेकर आगे जाने की। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप और हम मिलकर अपने इस मिशन को जरूर अकम्प्लिश करेंगे, सारे के सारे भारतीयों को भारत के 80th इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
6: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची के सभी लिसनर्स को इंडिया के 18th इंडिपेंडेंस डे की तहे दिल से बधाई। वैसे अगर देखा जाए तो आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है कि जिस भारत का सपना हमारे हीरोज ने देखा था, उसे हर दिन हम अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से, चाहे देश में रहें या विदेश में रहें, जरूर बेहतर बनाएं, अपने देश का नाम हर सरजमी में जरूर ऊंचा रखें। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इस मिशन को जरूर अकम्पलिश करेंगे, एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: 1917, ऊटी, तमिलनाडु।
3: ये अंग्रेज भले ही मुझे घर में कैद कर दें, मैं इनके जुल्मों के खिलाफ लगातार बोलूंगी।
4: पहले तो अंग्रेजों को हैरानी हुई कि एक अंग्रेजी महिला हुकूमत के खिलाफ कैसे बोल सकती है, और दूसरा धक्का इस बात से लगा कि वो किसी अपने को भी खिलाफत से रोक नहीं पाए। नमस्कार, मैं हूँ तापसी पन्नू और ये कहानी है एनी बेसेंट की। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी, जिन्होंने शान से कहा,
3: भारत जल्द ही आजाद और मजबूत बनकर ये देश पूरे विश्व की उम्मीद और उन्नति का वाहक बनेगा।
4: आजादी के लिए प्रेरणा और संकल्प कहीं और से नहीं, बल्कि उनकी अंतरात्मा से जागी, जिसने आजाद सोच, महिलाओं के अधिकार और आजादी का समर्थन किया। सत्य की खोज में उनकी रुचि और साधना ने उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी अध्यक्ष भी बनाया।
3: चेतना के बगैर जीवन और जीवन के बगैर चेतना का अस्तित्व असंभव है।
4: आयरलैंड के राष्ट्रवाद के गहरे प्रभाव के कारण 1893 में भारत आगमन के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का पुरजोर समर्थन किया। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक अपने अखबारों को भी उन्होंने आंदोलन का माध्यम बनाया।
3: संकल्प का हाथ थामे कभी हार नहीं मिलती, उल्टा बाधाओं से सीखने का मौका मिलता है।
4: एनी बेसेंट आयरिश राष्ट्रवाद से न केवल प्रभावित थी, बल्कि उन्होंने वहाँ की अच्छी कार्यशैली को भी अपनाया। उन्होंने अड्यार मद्रास में होम रूल लीग स्थापित की। तब तक बाल गंगाधर तिलक इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कर चुके थे। एनी का उद्देश्य सभी होम रूल लीग्स की एकत्रित ताकत से बड़ा बदलाव लाने का था।
5: हमारा साथ लड़ना ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा।
4: स्वतंत्रता की मूल भावना को समाहित कर होम रूल आंदोलन को भारी जन समर्थन मिला। राजनीतिक चेतना के माध्यम से आंदोलन ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की और लोगों को अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का साहस दिया।
6: हम होम रूल के साथ रहेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे।
4: एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की करीब 200 शाखाएं खोली, जो लीग की प्रसिद्धि की गवाही थी और ग्रामीण क्षेत्रों तक संदेश प्रसारित करने में कारगर साबित हुई। इससे अंग्रेजों की घबराहट बढ़ने लगी थी।
7: एनी बेसेंट इज फैनिंग द इंडियन प्रोटेस्ट, वी मस्ट स्टॉप हर।
4: अंग्रेजी पुलिस ने एनी बेसेंट को ऊटी स्थित एक घर में कैद कर दिया। हिंदुस्तानियों की भीड़ उस अंग्रेजी महिला की गिरफ्तारी का जमकर विरोध करने लगी, जिसने उन्हें आजादी का सपना दिखाया था। जन प्रदर्शन बढ़ते रहा।
8: एनी बेसेंट को रिहा करो, अंग्रेजी पुलिस, हाय हाय, हाय हाय।
4: भारी जन आक्रोश से डर कर अंग्रेजों ने उन्हें आखिर रिहा कर दिया। होम रूल आंदोलन की ताकत ने आखिर अंग्रेजों को उनके घुटने पर ला ही दिया। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को नई शक्ति दी। उनके उद्देश्य के प्रति समर्पण ने आजादी की लड़ाई को ऊर्जा प्रदान करी, और इसीलिए उनके लिए समर्थन भी विश्व भर से मिला।
1: तापसी पन्नू की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
9: मिर्ची, इसका बना उसका बना सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
10: हेलो
11: हेलो मिस्टर विपुल, मैं
10: से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स, तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
11: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
10: मैं आपको वही समझा रहा हूँ, एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा, अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे, तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
11: नहीं बात तो सुनो भाई साहब।
10: हाँ बताइए।
11: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना?
10: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए।
11: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
10: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों, एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
11: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
10: बिल्कुल,
11: से मुझे
10: बिल्कुल
11: मालूम
10: से,
11: होना
10: बिल्कुल
11: चाहिए,
10: सही कह रहे हैं।
11: जा कहाँ रहा है?
10: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है, और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से।
11: मेरे प्राइवेट एसएमएस हैं उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको?
10: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आपने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
11: यार क्या बात कर रहा
10: है,
11: मतलब
10: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें, बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
11: चल
10: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
11: बिल्कुल
10: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
11: हेलो
10: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
11: आपको से फोन मत करो, मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
10: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी, मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
1: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर, शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।
13: इट्स ऑल डाउन टू धोनी इज़न्ट इट, फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
14: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
15: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
16: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live in

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: संथाल विद्रोह 1855, भोगनाली गांव, झारखंड।
2: हमारी जमीन जमींदारों द्वारा छीनी जा रही है।
3: ये सेठ लोग सब कुछ छीन लेते हैं और हमें मजबूर करके हमें बंधुआ मजदूरी में झोंक देते हैं।
2: हम इन गोरों और जमींदारों के नाम परवाना जारी करते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर इन्होंने अपने तेवर नहीं बदले तो ये मामला हम खुद हल करेंगे।
1: भाई सीधो और कानों ने भोगना डी गांव में इकट्ठा हुए 10,000 से ज्यादा संथाल आदिवासियों को संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और ये कहानी है संथाल क्रांति की। अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों के आसपास का इलाका घेराबंद कर लिया। इसका नाम दमन एक कोह रखा गया, जिसका मतलब होता है पहाड़ों का आंचल। संथाल इस इलाके में बसे हुए थे, उन्हें वहां खेती के लिए जंगलों को साफ करने के लिए बुलाया गया था। अंग्रेज पैसों और टैक्स के लोभ में ज्यादा से ज्यादा जंगल की जमीन को खेती के अधीन लाना चाहते थे। संथाल समुदाय को इसका विरोध करने का पूरा हक था, क्योंकि वो वहां के मूल निवासी थे, इसलिए जमीन उनकी थी। लेकिन जमीन वहां के जमींदारों को दी गई, जो किराया बढ़ाते गए, साथ ही बाकी लेनदार, व्यापारी और अंग्रेज भी संथालों का शोषण करने लगे।
4: हमें एक दिव्य शक्ति ने क्रांति का आदेश दिया है।
1: संथाल समुदाय कलकत्ता मार्च करके गवर्नर जनरल से मिलना चाहते थे, लेकिन एक प्रमुख संथाल गांव के मुखिया हरमा देश मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। संथालों की अंतिम चेतावनी भी नजरअंदाज कर दी गई और इसने बगावत की चिंगारी को आंच दी।
5: हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमारी सांस चलेगी।
1: सीधो कान्हो की बहन

0: फूलो और जानो भी विद्रोह में भाग ले रही थी। इससे इस आंदोलन को महिलाओं की ओर से भी बड़ा योगदान मिला, साथ ही उनके भाई चांद और भैरव भी इससे जुड़ गए।
1: आज से तुम किसी का शोषण नहीं करोगे,

0: हर संथाल विद्रोह का क्रोध महसूस करने लगे। कुख्यात लेनदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकुड़ के जमींदारी महल पर कब्जा कर लिया गया। संथाल हूल या विद्रोह की आग ने अंग्रेजों और जमींदारों के अनाज के गोदाम भी झुलसा दिए।
1: ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम इसे जल्द ही कुचल देंगे।
0: एक स्थानीय पुलिस कर्मचारी ने छोटी फौज के साथ आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसे मार दिया गया। भाई सीधो कान्हो पैरेलल प्रशासन चला रहे थे। संथाल क्रांतिकारी केवल तीरों और भालों के साथ ब्रिटिश बंदूकों से लड़ रहे थे। संथाल योद्धा शिकार के वक्त जहर भरे तीरों का उपयोग करते थे, लेकिन अपने दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। ये देखकर सेना के कुछ सिपाहियों को शर्मिंदगी महसूस हुई।
2: उनके पास बंदूकें भी नहीं है और हम उन पे गोलियां चला रहे हैं, इसके बावजूद भी बहादुर संथाल झुकने को तैयार नहीं थे।
0: संथालों के खिलाफ लड़ाकू हाथी उतारे गए, मार्शल लॉ लागू किया गया, बहुत से पकड़े गए, बहुत को फांसी दे दी गई, गांव के गांव बर्बाद कर दिए गए। संथाल क्रांति के जनरल सिद्धो और कान्हो और उनके सारे भाई बहन फूलो झानो चांद और भैरव भी मारे गए। सबक सिखाने के लिए कहा जाता है कि सीधो और कानों के शव को एक पेड़ से लटका दिया गया।
3: हम सब बाघ हैं बाघ, जब तक हमारी रगों में खून बहेगा तब तक हमारी रूह में हिम्मत बनी रहेगी।
0: शांति प्रिय और मेहनत कश संथाल समुदाय की आह ने अंग्रेजों को डरा दिया था। नए कानून लागू किए गए, बिचौलिए को हटाया गया। संथाल क्रांति में आदिवासियों के अलावा भी कई लोग शामिल हुए। हर साल 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। संथाल क्रांति आदिवासियों के प्रदर्शन का प्रतीक बन गया और स्वतंत्रता के योद्धाओं के संकल्प को मजबूती दी।

पंकज त्रिपाठी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: घोलो देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग It's hot. Check.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल सेट योर ड्रीम सेट योर गोल्स कॉन्फिडेंस का टूल अब टाइम आ गया है सबको जाना होगा स्कूल सो ज्वाइन करो

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
0: 1929 लाहौर, अविभाजित भारत।
2: स्वराज यानी पूरी आजादी, प्रभु सत्ता नहीं। ये अंग्रेज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। आम आदमी के हक और हित की बातें वहां नहीं होने वाली। अपनी इस मुहिम में हमें हर किसी को शामिल करना होगा।
3: नमस्कार, मैं हूं शेखर सुमन और आप सुन रहे हैं कहानी लाहौर सेशन की। नेताजी के इस जोरदार भाषण ने सबकी आंखें खोल दी। वैसे तो पहले भी कांग्रेस के कई सेशन हुए थे, पर 1929 का लाहौर सेशन आजादी की लड़ाई की दिशा को बदलने वाला था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की।
4: अगर कोई सरकार आवाम के अधिकारों को दरकिनार करे, उन्हें दबाने की कोशिश करे, तो आवाम को उस सरकार को हटाने का, बदलने का, गिराने का पूरा अधिकार है। ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों को उनके अधिकार से वंचित रखा। हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक रचना की धज्जियां उड़ा दी।
3: 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस का आक्रामक स्वभाव बिल्कुल साफ था। इस बार पंडित नेहरू इस कांग्रेस बैठक के प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश शासन ने न सिर्फ हिंदुस्तानियों का शोषण किया, बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए किए गए प्रशासन द्वारा समावेश में भी पारदर्शिता नहीं थी। पूर्ण स्वराज के आगाज ने हिंदुस्तानियों में एक नई उमंग भर दी। आजादी की लड़ाई में ये रणनीति एक बड़ा बदलाव बनकर उभरी। हिंदुस्तानी अब आजादी की भीख नहीं, अपना हक मांग रहे थे। रावी नदी के तट पर खूब हलचल थी। नए साल के साथ नई प्रेरणा भी अपने कदम बढ़ा रही थी। पंडित नेहरू ने 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तिरंगा फहराया। रात भले ही सर्द होने लगी थी, पर लोगों की आवाज जोश और गर्माहट से भरी हुई थी। 26 जनवरी 1930 कांग्रेस ने समूचे आवाम से पूर्ण स्वराज पाने की घोषणा की। इसी ऐतिहासिक दिन का मान रखने के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों ने 26 जनवरी 1950 की तारीख तय की हमारे संविधान को लागू करने की। घोषणा के बाद पूर्ण स्वराज का प्रतिज्ञा पत्र सभी भाषणों में आम जनता के लिए पढ़ा गया और इसी वैभव के साथ हमारा तिरंगा फहराया गया।
5: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
3: अंग्रेजों ने अपने जुल्म तले हमारे मुल्क को रौंद कर सबको शांत कर दिया, पर एक तूफान आना भी बाकी था और वो था पूर्ण स्वराज।
1: शेखर सुमन की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट।
1: जिस देश ने हमें जिंदगी में इतना बड़ा तोहफा दिया, क्यों ना हम आज उससे एक वादा कर लें। वेल मिर्ची के सभी लिसनर्स को भारत के 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। जिस देश ने हमें आजाद होकर सांस लेने की शक्ति दी, ये मौका दिया, क्यों ना हम उसे उड़ने की आजादी दें। देखिए, अब हमारी बारी है नई ऊंचाइयों तक अपनी सोच के जरिए अपने देश को लेकर आगे जाने की। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप और हम मिलकर अपने इस मिशन को जरूर अकम्प्लिश करेंगे, सारे के सारे भारतीयों को भारत के 80th इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Matti Hirang, Mitchy Gesson. It's not.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
6: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियां 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
7: ।1942 गोपुर असम।
8: जो तुम कह रही हो वो करना खुदकुशी होगी।
9: तो फिर मैं मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा।
7: नमस्कार, मैं हूं मोना सिंह और ये कहानी है कनकलता बरुआ की। वो अभी 18 साल की भी नहीं थी, लेकिन उसके इरादे अभी से क्रांतिकारी थे। छोटी उम्र में ही उसकी माँ चल बसी, लेकिन ये दुख भी उसका हौसला तोड़ न सका।
9: ये देश ही मेरी माँ है, मेरे लिए भारत माता की ममता में कभी कमी नहीं आएगी।
7: बलिदान कदम कदम पर उसका साथी बना रहा। अपने पिता की मृत्यु उपरांत कनकलता पर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। वही उन्हें स्कूल छोड़ने जाती। ऐसी विकट परिस्थिति में भी छोटी उम्र की कनकलता ने जीवन का सबसे बड़ा सबक हासिल किया, देशभक्ति। इसी कारण वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसे कहा गया,
10: तुम अभी छोटी हो मगर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तुम्हारा जज्बा अभूतपूर्व है। अपने दिल में देशभक्ति का ये जोश बरकरार रखो, तुम्हारा वक्त आएगा।
8: करो या मरो, हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर मर जाएंगे।
7: भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। पूरे देश में एक ही नारा बुलंद था,
11: करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे।
7: आंदोलन का गला घोटने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने तत्काल कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब छोटे लड़के लड़कियों ने आंदोलन की कमान संभाली, उनमें से एक थी कनकलता बरुआ।
8: तुमने पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फिराना है, वो तुम्हें सीधी गोली मार देंगे, ये खुदकुशी होगी।
9: तो क्या, तिरंगा मेरा अभिमान है और देश के लिए मरने से बेहतर शहादत क्या होगी।
7: खतरनाक मिशन्स को अंजाम देने वाले संगठन मृत्यु वाहिनी में कनकलता शामिल हो गई। वो छोटी थी, लेकिन उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखते हुए उसे एक दल में शामिल कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, गोपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने की।
10: रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम गोली मार देंगे।
9: हम सिर्फ भारत माता का आदेश मानते हैं, चलाओ गोली, हम नहीं रुकेंगे।
7: कनकलता 5,000 लोगों का एक मोर्चा लेकर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी। पुलिस द्वारा उन्हें रुकने की चेतावनी दी गई, मगर वो आगे बढ़ते रहे। अहिंसक जनता पर गोलियां बरसाने का शौक रखने वाली ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोली चला दी।

0: भारी गोलीबारी हुई। गोलियां कनकलता को छलनी कर गई, लेकिन उसने तब तक तिरंगा नीचे ना गिरने दिया जब तक एक दूसरी वॉलंटियर मुकुंदा काकोटी ने आकर तिरंगा ना थाम लिया। बाद में मुकुंदा को भी गोली मार दी गई। अपने अंतिम क्षणों में भी कनकलता मातृभूमि की सेवा करती रही। वो मात्र 17 साल की थी, लेकिन अपनी वीरता के कारण वो वीर बाला कहलाई। उसने साबित किया कि डर के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार होता है विश्वास। विश्वास। हुकूमत ने उसे गोली तो मार दी, लेकिन उसके नाम को नहीं मिटा सके। भारतीय तटरक्षक दल के फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया। ये नाम वीरता का प्रतीक बन गया।
1: मोना सिंह की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है, फॉर्मूला सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है। हैवान ने कहा अब किलर अक्षय, एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन। टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड। और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया। शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं, ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती है बातें। एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, सॉन्ग बाय द किंग अरिजीत सिंह, ये है तुझको।
4: नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्म में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

0: जाइए सजना एंड धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा? मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने एंड इट स्टार्स सनी देओल एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया, एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
1: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
0: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
0: The mentalist Suhani Shah, live in

0: 16।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: इस कमीना को नए जमाने में दोबारा सुनते हुए मुझे एक सवाल याद आ गया। हम पुराने गाने इतने सालों तक अपने पास आखिर क्यों रखते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी उम्र का साउंड ट्रैक होते हैं। और इमरान हाशमी के साथ तो ये बात और भी सच हो जाती है। थिंक ऑफ हिज डिस्कोग्राफी, तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ, फिर मोहब्बत, वो लम्हे वो बातें, जरा सा दिल इबादत, MP3 से iPod, iPod से फोन, फोन से स्ट्रीमिंग। फॉर्मेट बदल गया लेकिन गाने नहीं। और अब आवारापन 19 साल बाद उसी दुनिया का एक नया चैप्टर लेके आ रहा है, तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। लेकिन मैंने इमरान से एक सवाल पूछा, हम तो आज भी उनके गाने लूप पर सुनते हैं, लेकिन क्या वो अपने गाने खुद सुनते हैं?
1: I don't like constantly hear my songs. Like Awarapan, I've heard the songs after almost 18 years. जब मैं फिल्म कर रहा था, तो I revisited the songs, I saw the film. So the thing is with actors, we hear it hundreds of times. So we are, our thing is something else only. We have heard it so much that we've consumed it so much that we kind of detached from it also. Although they are beautiful songs, but जब मैं दोबारा सुनता हूँ, it's just this nostalgic experience that you have. But I think एक जो एक intuitiveness होती है, अगर आपने गाना एक बार सुना and you have this reaction where you want to either hum it or you want to hear it again and again, वो एक तरह से मेरे लिए एक I guess a litmus test होता है whenever we pick up songs for my films. And उसकी melody बहुत simple होनी चाहिए and ज़ुबान पे चढ़नी चाहिए।
0: इमरान का जवाब मुझे बहुत interesting लगा, क्योंकि हम जिन गानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, एक एक्टर के लिए तो वो अक्सर सिर्फ एक मेमोरी बनके रह जाती हैं। लेकिन जैसा इमरान ने कहा, उनका लिटमस टेस्ट काफी सिंपल है। क्या मेलोडी सुनते ही क्या आपका दिल करता है उसे गाने का? 19 साल बाद तेरा मेरा रिश्ता अब भी वही कर रहा है। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग ऑन नंबर 15, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस आइकॉनिक सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD स्नूनू, बुक योर्स नाउ।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 14.

कुछ गाने आपको मदहोश कर देते हैं और कुछ सवाल आपको होश में ले आते हैं। और आजादी के इस हफ्ते मेरे जहन में एक सवाल है, 80 साल बाद इंडिया हमारे लिए आखिर क्या है? क्योंकि 80 साल बहुत होते हैं। हम वो इंडिया नहीं हैं जो 1947 में आजाद हुए थे। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अपना स्पेस प्रोग्राम है, दुनिया भर का पैसा इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में आ रहा है। हम सिर्फ बढ़ नहीं रहे, हम दुनिया के सामने अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन फिर इसी इंडिया में ट्रैफिक आपका आधा दिन खा जाता है, इनइक्वालिटी आंखों के सामने दिखती है, करप्शन से रोज सामना होता है, हर बात पर बहस होती है। कभी कभी इस पूरे सर्कस को देखकर दिल से एक आवाज निकलती है, यार हम आखिर कब बदलेंगे? शायद इसी बेचैनी से हमें अपना जवाब मिल जाता है। इंडिया बदल तो रहा है, बस हम उसे और तेज बदलते देखना चाहते हैं। और वो इम्पेशंस, वो एम्बिशन, वही तो है नए इंडिया की आवाज। नंबर 13 पर कहर मचा रहे हैं गुरु रंधावा इन धमाल, लेकिन नंबर 12 पर वो फिल्म जो एक नया इंडिया सामने लेके आई, धुरंधर का ये गाना आरी आरी। नंबर 12।

0: Suren ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 11.

रीमिक्स बनाने का एक फॉर्मूला सा बन गया है। पुराना गाना उठाओ, नई बीट डालो और गाना पक्का हिट है। लेकिन अगर इतना ही सिंपल होता तो हर रीमिक्स चार्ट बस्टर होता। सच ये है, कुछ रीमिक्स कल्ट बन जाते हैं और कुछ बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इस हफ्ते नंबर 11 पर द हाईएस्ट गेनर, वो गाना है जिसकी मैंने काफी क्रिटिसिज्म की है एंड उसके बावजूद इट इज द हाईएस्ट गेनर। चार पोजीशंस अप फ्रॉम नंबर 15 टू नंबर 11 दिस वीक इज आंखों से तूने ये क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है। देखो चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि लोगों को ये वर्जन काफी पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे अब भी नहीं आता। मेरी प्रॉब्लम रिक्रिएशन से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सॉन्ग की यार आइडेंटिटी बदल चुकी है। गुलाम में जब गाना आया था तो वो एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉम्पोजिशन थी, उसकी खूबसूरती उसके ठहरे हुए इमोशंस थे। आप उसे रिक्रिएट कीजिए, अरेंजमेंट बदलिए, साउंड कंटेम्प्रेरी कीजिए, लेकिन उसे 2026 का एक डांस फ्लोर बैंगर मत बनाइए। आप उसकी रूह को ही बदल रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल एक फिल्म आई थी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की कॉल्ड तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, उसमें एक गाना था सात समंदर पार, इसके साथ भी यही एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक आइकॉनिक 90s डांस नंबर जिसे नए जमाने के हिसाब से रीशेप करने की कोशिश की गई। रिजल्ट, वेल इट स्पेक्टेक्युलरली फेल्ड टू द पॉइंट कि वो गाना मिर्ची टॉप 20 पर फीचर तक नहीं हुआ।

0: गया।
1: Now you understand, जब एक डांस नंबर को आप रोमांटिक गाना बना देते हो, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस गाने पे नाचूं या किसी से प्यार करूं। So what I'm saying is, गाना रिक्रिएट करो, उसकी आइडेंटिटी को नहीं। और इसका प्रूफ देने को तैयार हूं मैं। एक गाना था बार बार देखो मैं, विच वॉज अ रिक्रिएशन ऑफ अ वेरी पॉपुलर 90s सॉन्ग संग बाय अमर अर्शी। उस गाने में प्रोडक्शन बदली, साउंड बदला, लेकिन उसकी असली जान, वो डांस फ्लोर वाली जान, वो नहीं बदली। एंड दैट्स व्हाई द सॉन्ग स्टिल बिकेम अ चार्ट बस्टर। काला चश्मा द न्यू वर्जन इज माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
2: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय देयर व्हाट्स अप टेल मी।
1: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
2: वेल ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा, अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
1: सन 1931, लोंगकाओ गांव, आज का मणिपुर, भारत।
2: आपको जेल में पामाई से सिर्फ मिलने की परमिशन दी जा रही है, ना कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नई साजिश रचने की। जाइए मिलिए, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के लिए।
3: 16 साल की उम्र की एक कैदी से आखिर अंग्रेजी हुकूमत इतना खौफ क्यों खाती थी कि अंग्रेजों की गिरफ्तार में होने के बावजूद भी वो उस किशोरी की आवाज को दबा नहीं पा रहे थे।
4: हम उन अंग्रेज हुक्मरानों को कोई कर नहीं देंगे। ये मिट्टी हमारी है, इस पर उगा अनाज हमारा है, ये खेत हमारी मेहनत से लहरा रहे हैं, फिर उन्हें किस बात का कर दे।
3: चौराहे पर एकजुट भीड़ ध्यान से इस आवाज को सुन रही थी। इस आवाज ने लोगों में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह भर दिया था। महज 16 साल की एक लड़की की थी, गाइदिन्यू पामे की।
4: हम सब पर अंग्रेज एक साथ जुल्म करते हैं, उनकी गोली हमें कोई फर्क नहीं करती, तो हम आपस में क्यों फर्क करें? महात्मा गांधी भारत को एक कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम एक हैं, एक भारत।
3: इस किशोर क्रांतिकारी के मन में मूल में गांधी जी का सत्याग्रह तो था ही, साथ ही युवा खून स्वराज के लिए उबल रहा था। इसीलिए गाइदिन्यू ने अपने सामर्थ्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश थानों पर गुरीला हमले शुरू कर दिए।
4: ये मिट्टी हमारी है और इस मिट्टी की प्यास हम फिरंगियों के खून से बुझाएंगे।
3: अंग्रेजों को ये यकीन करने में वक्त लगा कि सिर्फ 16 साल की एक हिंदुस्तानी लड़की उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। उनकी तिजोरी खाली थी और बेइज्जती का ताज उनके सर पर था।
5: Shut up you coward! Don't tell me कि तुम उस 16 साल की बच्ची को पकड़ नहीं पाए। अब खड़े क्या हो? Go and arrest her now!
3: अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद हर तरह के जोर आजमाए, रिश्वत दी, धमकी दी और धोखा दिया, और आखिरकार गाइदिन्यू को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस अंग्रेजी हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबता था, वो आज 16 साल की इस विरंगना से डरी हुई थी। इसी वजह से उन्होंने गाइदिन्यू को उम्र कैद दी।
2: पामई, तुमसे मिलने एक मेहमान आए हैं।
4: मुझसे?
6: हाँ गाइदिन्यू, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। तुम्हारे विरोध की कहानी पूरे देश में सुनाई जा रही है। बेटी, सिर्फ 16 साल की उम्र में तुमने जो शौर्य दिखाया है, तुम कोई साधारण किशोरी नहीं, तुम रानी हो, हमारी रानी, रानी गाइदिन्यू।
3: गाइदिन्यू से जेल में मिलने एक मेहमान आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कोई नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने गाइदिन्यू को रानी की उपाधि दी। शक्तिशाली और क्रूर अंग्रेजी हुकूमत के हौसले पस्त कर देने वाली कोई आम स्त्री नहीं हो सकती, वो तो शौर्य की राजकुमारी, एक रानी ही हो सकती है। अपनी हार से बौखलाए अंग्रेजों ने गाइदिन्यू को अलग अलग जेलों में रखा और यातनाएं बढ़ती रही, लेकिन रानी गाइदिन्यू का हौसला जेल की सलाखों से भी मजबूत था, इसीलिए जेल के अंदर से ही वो अपने संदेश लोगों तक पहुंचाती रही।
4: मेरे विचार ना पत्थर की जेल में बंद हो सकते हैं, ना ही सलाखों में कैद हो सकते हैं।
3: 14 साल तक जेल में काटने के बाद रानी गाइदिन्यू को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निरंतर प्रयासों की वजह से एक दिन रिहा कर दिया। आगे चलकर रानी गाइदिन्यू को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
0: मृणाल ठाकुर की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
7: 89.6, 89.6, it's hot. मिर्ची पर आजादी के रंग गानों के संग।

देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग It's hot. 89.6 89.6 It's hot.

0: Mitchy Kissen, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: सन 1929, बाग बाजार, कोलकाता।
3: दुर्गा पूजा हमारी विरासत है, पर मैं इसे सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रखना चाहता। ये भारत के स्वाभिमान का अनुष्ठान है। बुराई के नाश के लिए माँ दुर्गा ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया था। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमें प्रेरित कर सकता है? बोलो दुर्गा मैया की वंदे वंदे।
4: कोलकाता, जिसे अंग्रेजों ने अपनी गंदी राजनीति का गढ़ बना लिया था, उस गढ़ में सेंध लगाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दुर्गा पूजा का अवसर चुना था। दुर्गा माँ की पूजा के साथ साथ माँ भारती की आजादी की भी बात हो, इसके लिए क्रांतिकारियों का जमावड़ा लगाना जरूरी था। इसीलिए नेताजी ने बाग बाजार को चुना।
5: नमस्ते सुभाष बाबू।
3: नमस्ते हिम जी, बैठिए। बताइए, अब आप किस तरह गोरो की नाक में दम करना चाहते हैं?
5: मैं तो भारत का किसी भी मसले में उनका नाक नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल इस बार दुर्गा पूजा के जरिए देश को एकजुट करना चाहता हूँ, साथ ही ब्रिटिश हुकूमत को सीधा संदेश देना चाहता हूँ।
3: यही ना कि आपको उनकी नाक पसंद नहीं है?
5: सिर्फ नाक नहीं दादा, पूरा का पूरा अंग्रेज ही नहीं पसंद है।
3: हिम जी फिकर मत कीजिए, इस बार बाग बाजार में दुर्गा पूजा का ऐसा उत्सव होगा जो अंग्रेजों के दिल में क्रांतिकारियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए भय भर देगा।
4: उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ थे, इसीलिए उन्होंने बाग बाजार में एक बड़ा मैदान हेम मुखर्जी, दुर्गा चरण बनर्जी और कई युवा क्रांतिकारियों को पूजा पंडाल के लिए दिया था। क्रांतिकारियों ने पंडाल को स्वदेशी सजावटों से तैयार किया। मैदान में मेला भी लगाया गया, जिसमें स्वदेशी कपड़े, दवाइयां और हर वो सामान था जिससे ब्रिटिश हुकूमत को सीधा संदेश मिले।
6: हमें तुम्हारी फैक्ट्रियां नहीं चाहिए, अपना हक, अपना राज, अपना देश चाहिए।
4: दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली अखबारों में स्वदेशी उत्पादनों के विज्ञापन छपे। खबर ब्रिटिश दफ्तरों तक पहुंची, पर मोटी बुद्धि के अंग्रेजों ने विज्ञापनों का मजाक उड़ाते हुए कहा,
7: अगर ये हिंदुस्तानी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे तो इनकी इकॉनमी गिर जाएगी।
4: सत्ता के नशे में चूर अंग्रेजों को जवाब देने के लिए क्रांतिकारियों ने दुर्गा पूजा में नेताजी को बुलाया, जहां उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, शेर की तरह दहाड़ते हुए ब्रिटिशर्स को उनकी हद याद दिलाई।
3: उन्हें लगता है कि भारत पर राज करके वो हम पर उपकार कर रहे हैं। उन्हें गलतफहमी है कि उनके बिना हमारा देश बिखर जाएगा। उन्हें लगता है हम में वो बात नहीं कि हम एक देश चला सकें। क्या हम अपने देश को खुद संभाल सकते हैं?
4: क्रांतिकारियों ने मेले में तलवारबाजी का प्रदर्शन भी किया, ताकि गोरों को पता चले कि हिंदुस्तानी हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। साथ ही पंडाल के हर खंभे पर तिरंगे लगाए गए, झांकियों, नाटकों और गीतों के जरिए आजादी का संदेश दिया गया। बाग बाजार की दुर्गा पूजा भारतीयों की प्रार्थना में बस एक ही मांग थी, देश की आजादी।
3: बोलो दुर्गा मैया की वंदे वंदे।
4: समय बदला, लोग बदले, लेकिन बाग बाजार में क्रांति की वो आग आज भी दुर्गा पूजा में दिखती है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग,
8: कर गुजरने की आग, गुजरने की आग।
1: अनुपम खेर की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

कभी सोचा है कि इंडिपेंडेंस डे आते ही हमारे पास कुछ गाने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जय हो संदेशे आते हैं, ए वतन ये जो देश है तेरा, और आने भी चाहिए। लेकिन अगर पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ देश की तारीफ करना नहीं है, तो शायद कुछ और गाने भी हैं जो इस मुल्क की रूह को, उसकी आत्मा को समझते हैं। ये देश से प्यार का गाना नहीं है, ये उस बेचैनी का गाना है जो कहता है जो गलत है उसे बदलना है, और फिर आता है साड़ा हक।

एक आवाज जो कहती है कि मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन इस इंडिया को सिर्फ हक नहीं चाहिए, उसे आजादियां चाहिए।

कभी घर से, कभी डर से, कभी उन एक्सपेक्टेशन से जो हमारे लिए किसी और ने लिख दी, और फिर जब सब कुछ मुश्किल लगे तो आशाएं हैं।

क्योंकि शायद इस देश की सबसे बड़ी आदत ही यही है, उम्मीद छोड़ने से इनकार, और फिर वो आवाज जो उम्मीद से एक कदम आगे जाती है। ये गाने देश का नाम नहीं लेते, लेकिन शायद देश हम में जो जगाता है उसका नाम जरूर लेते हैं। बेचैनी, हक, आजादी और उम्मीद, ये भी तो इंडिया है। इस काउंटडाउन पर नंबर 9 पर है धमाल का गाना साड़ी, लेकिन अभी के लिए चलाऊंगा गाना नंबर 8 आवारापन 2 से, सुबोध शर्मा की आवाज में। यह है वे जुनून। नंबर 8।

0: Surin Kisa. Only on Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 7.

0: तुम्हें वो बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है, अ लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वाज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उबर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo, बुक योर्स नाउ।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट नंबर 5।
0: हो सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo, बुक योर्स नाउ।
2: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

तबाही टॉप 5 में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, विच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: One of my favorite things to do is राजकुमार राव के साथ में फिल्मी क्विज खेलना.
4: आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. गैंग्स ऑफ
5: वासेपुर.
4: वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
6: पावभाजी.
4: शाबाश. डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11.
4: गोली मार भेजे में भेजा
6: चोर करता है.
4: शाबाश. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलोसफी से?
6: गांधीयन.
4: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
6: पीके मेनन.
4: खत्म.
3: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता. आदमी का नाम राजकुमार राव. रेडियो स्टेशन का मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
7: इट्स ऑल डाउन एंड डन इजंट इट. 4 बॉल्स लेफ्ट. दे नीड 12 रन्स टू विन.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही, 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह। नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। शायद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में। 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: '42 पेशावर, अविभाजित भारत। पेशावर के किस्सा खाने बाजार या कहानी सुनाने वालों के बाजार की संकरी गलियों में क्रांति की खुशबू फैली हुई थी। पेशावर के मुख्य केंद्र से लगभग 100 मीटर की दूरी पर शाह वाली कत्ल के चौराहे पर एक छोटा सा घर था जिसका दरवाजा खुला हुआ था, और सीने में देशभक्ति का जज्बा लिए एक लड़का बाहर निकला। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये कहानी है स्वतंत्रता सेनानी मीर ताज मोहम्मद की, और आसान शब्दों में कहूँ तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के पिता। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नारा लगाया,
3: अंग्रेजों भारत छोड़ो।
2: महात्मा गांधी का ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया प्रसिद्ध भाषण करोड़ों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता का अपना अधिकार छीनने के लिए प्रेरित कर गया। इस आंदोलन की आग ने ब्रिटिश राज को झुलसा दिया। पेशावर में फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने क्रांति का संदेश आवाम में फैलाया। इस क्रांतिकारी कदम के प्रमुखों में से एक थे मीर ताज मोहम्मद खान। वो अभी महज 15 साल के थे, लेकिन उनमें अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ये कहने का साहस था,
4: आपके कानून ब्रिटिश हैं और मैं एक हिंदुस्तानी, आपके कानून मुझ पर लागू नहीं होते। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मैं इन कानूनों का पालन नहीं करूंगा।
2: इस कच्ची उम्र में वो गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। आंदोलन को दबाने का जिम्मा संभालने वाले ब्रिटिश अधिकारी मीर ताज मोहम्मद की स्पष्टता पर अचंभित रह गए। वो सोच रहे थे कि वो इस लड़के को कैसे हरा सकते हैं जिसने अपने डर को ही हरा दिया। इस कच्ची उम्र में वो गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। आंदोलन को दबाने का जिम्मा संभालने वाले ब्रिटिश अधिकारी मीर ताज मोहम्मद की स्पष्टता पर अचंभित रह गए। वो सोच रहे थे कि वो इस लड़के को कैसे हरा सकते हैं जिसने अपने डर को ही हरा दिया।
4: ईमानदार और साधारण होना हमेशा बहुत खास होता है।
2: भारत का प्रतिष्ठित ताम्रपत्र प्राप्त करने के बाद भी वो अपनी ईमानदारी के प्रति अडिग रहे। MA LLB होने के बावजूद उन्होंने वकील के रूप में काम करने से इनकार कर दिया, और यही आदर्श और संस्कार उन्होंने अपने बेटे शाहरुख खान को भी दिए।
5: अपनी आजादी को कभी भी हल्के में नहीं लेना। सैकड़ों हिंदुस्तानियों ने इसे आपके लिए कमाया है, तो आप इसकी अहमियत समझिए और इसे बरकरार रखिए।
2: एक किशोर के रूप में ब्रिटिश शक्ति का सामना करते हुए भी वो अपने मन में पंख के समान हल्के थे। वो अपने उद्देश्यों को लेकर एकदम स्पष्ट थे, जैसे कि सभी सुपरस्टार होते हैं। शाहरुख खान के पिता स्वतंत्रता सेनानी मीर ताज मोहम्मद।
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनकी आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: देश भक्ति के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
1: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
2: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को।
3: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

सबसे पहले आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे। और मैं हमेशा कहता हूं 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह हमारे इतिहास का वो दिन है जिसने हमें हमारी पहचान दी। हजारों लाखों शहीदों के बलिदान और कई पीढ़ियों के संघर्षों के बाद हमें ये आजादी मिली, और आजादी की इन्हीं कहानियों को आज आप मिर्ची पर पूरे दिन सुन भी रहे। वेल, 15 अगस्त जिसने हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया, एक राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारा नाम रोशन हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है हम सभी हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन एक साथ मिलकर हम अपने मुल्क को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और आने वाले समय में भी हमारा तिरंगा पूरी दुनिया में यूं ही लहराता रहे, इसके लिए हमें और आपको और मेहनत करनी है। सभी को एक बार फिर से 15th of August, बोले तो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर स्कूल डे में होता तो आज मेरी स्पीच पर गड़गड़ाहट के साथ तालियां बज रही होती। और एक आखिरी बार कहना चाहता हूं, 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, एक दिन नहीं, हमारी विरासत है। चाहे हम देश से कितने भी दूर हों, लेकिन हमारे दिल में हिंदुस्तान का एक कोना हमेशा रहता है। लॉन्ग लिव इंडिया एंड लॉन्ग लिव इंडियंस। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

Energie.

0: देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: 1928 कैम्ब्रिज।
3: कोई इंसान उसी काम में एक्सेल कर सकता है जिसमें उसका जुनून हो, जिसमें उसका विश्वास हो। मैं फिजिक्स में काम करने के लिए तड़प रहा हूँ। बीटोविन को कोई कहे साइंटिस्ट बन जाओ क्योंकि ये अच्छा है, ये बेईमानी बात होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे फिजिक्स पढ़ने दें। आपका आज्ञाकारी होमी।
2: उन्होंने अपने पिता को फिजिक्स पढ़ने देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि फादर ऑफ इंडिया न्यू
3: फिल कर सकता है जिसमें उसका जुनून हो, जिसमें उसका विश्वास हो। मैं फिजिक्स में काम करने के लिए तड़प रहा हूँ। बीटोविन को कोई कहे साइंटिस्ट बन जाओ क्योंकि ये अच्छा है, ये बेईमानी बात होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे फिजिक्स पढ़ने दें। आपका आज्ञाकारी होमी।
2: उन्होंने अपने पिता को फिजिक्स पढ़ने देने के लिए

0: अंग्रेजों को भारत से निकालने की कोशिश में लगे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत के भविष्य की बुनियाद बनाने को अपना लक्ष्य मान बैठे थे। उनमें से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1939 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी करके वो भारत लौटे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के साथ काम करने लगे। डॉक्टर रमन हमेशा कहते थे,
1: सही सवाल पूछो तो कुदरत खुद अपने राज तुम्हें बताएगी।
0: डॉक्टर भाभा ने सही सवाल पूछे। वो वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में भारत की प्रगति सुनिश्चित करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही समझ गए थे कि भारत के तत्कालीन संस्थानों में न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रे फिजिक्स या किसी अन्य विषय के शोध के लिए दुर्भाग्यवश सही सुविधाएं नहीं थी।
2: यहाँ उचित परिस्थितियों और इंटेलिजेंट बेटे की सहायता की कमी है। इससे देश के वैज्ञानिक विकास की रफ्तार पर असर पड़ता है। तुम्हारा मित्र होमी।
0: डॉक्टर भाभा ने अपने दोस्त जेआरडी टाटा को खत में ये लिखा, तो जेआरडी टाटा ने उनको सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट से नए संस्थान के लिए पैसों की बात करने का सुझाव दिया। डॉक्टर भाभा ने सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट को 1944 में अपना प्रस्ताव भेजा, जिसमें उन्होंने सर सोराब सकलतवाला को लिखा,
2: मैंने फिजिक्स की एडवांस ब्रांच में रिसर्च के लिए बॉम्बे में एक फर्स्ट क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का सपना देखा है। इस समय भारत में कोई बड़ा संस्थान नहीं है जो फिजिक्स की मूलभूत समस्याओं पर रिसर्च करे। जब आज से दो दशक के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से सक्सेसफुल बिजली बनाई जा सकेगी, तो भारत को एक्सपर्ट्स के लिए दूसरे देशों की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
0: सभी को डॉक्टर भाभा के प्रस्ताव में अपार योग्यता दिखी और 1 जून 1945 को सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शानदार सफर की शुरुआत हुई। इसके पहले निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा,
2: साइंस हमारी पूरी सामाजिक संरचना का आधार है, जिसके बिना जीवन अकल्पनीय होगा।
0: शुरुआत से ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने वैज्ञानिकों के अग्रणी काम द्वारा कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और भारतीय वैज्ञानिक प्रगति का ध्वजवाहक बना। ये भारत का गौरव होने के साथ ही पूरे विश्व में सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है। डॉक्टर भाभा एक स्वतंत्र भारत का उज्जवल सवेरा देख पा रहे थे और अपने वैज्ञानिक कुशाग्रता से उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत की वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र का सूरज हमेशा चमकता रहे।
3: विक्रांत मैसी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद। मिर्ची
4: इसका बना, उसका बना, सका बना। मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
5: हेलो
6: मैडम, गुड इवनिंग। बैंक से बोलने वाला हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
5: तो सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
6: पहले सब्जी बेचता था।
5: अगर अगली बार फोन आ गए ना
6: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा, सारे दांत बात कर।
5: हेलो
6: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
5: वही आके ऐसा तेरे बैट मारूंगी ना।
7: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
6: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया।
7: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
5: नहीं।
7: से सॉरी।
5: आई एम सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
7: प्यार से बोल दीजिए, कोकड़ो को है।
5: कुकड़ू गो।
8: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
9: इट्स पटाक।
10: इट्स ऑल डाउन एंड डन, इजंट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
11: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस

0: में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
3: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Kesan, Gara Kesan.
1: यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज

0: भक्ति के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट।
1: समोसे मठरी और लड्डू के उस डिब्बे में ना फाइव स्टार के होटल के खाने से भी ज्यादा ताकत होती थी। 89.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आरजे मस्तमोल और गौरव। 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, बात कर रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंस डे के उस 80th सेलिब्रेशन की जो आज पूरी दुनिया में रह रहे हिंदुस्तानी अपनी अपनी जगहों पर कर रहे हैं। आज सुबह से आप मिर्ची पर आजादी की कहानी, आजादी के गानों के रंग सब सुन रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं याद दिलाना चाहूंगा वो है हमारे स्कूल डेज में मिलने वाले लड्डू मठरी और समोसे के उस डिब्बे की। हम सुबह सवेरे स्कूल पहुंच जाते थे, हमारे प्रिंसिपल जब झंडा फहरा देते थे उसके बाद कल्चरल इवेंट के दौरान हमें हाथों में मिलता था वो मिठाई का छोटा सा डिब्बा जिसके अंदर होता थे समोसे मठरी और लड्डू। अब फिर क्या है, फाइव स्टार का होटल बुफे फेल है भाई, उसके आगे सारे दोस्त एक साथ मिलकर खा रहे होते थे, सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस कैसी गई इसकी बातें कर रहे होते थे और थोड़ी देर बाद स्कूल ओवर हो जाता था, घंटी बज जाती थी और हम सब घर चले जाते थे और हाथों पर लगा वो बैंड या गले में पहना वो तिरंगे का झंडे का रंग ये सब हम धीरे धीरे उतार कर रख देते थे कि अगले साल फिर काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ तब हम बच्चे थे, हमें ये समझना होगा कि देश के लिए जो देशभक्ति, जो जुनून, जो जज्बा हम एक दिन दिखाते हैं, अगर हम उसे साल भर दिखाएं मेहनत से अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें तो हम अपने मुल्क को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसी उम्मीद से कि हम और आप उस तरफ कार्य कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान का जो तिरंगा है यूं ही पूरी दुनिया में लहराता दिखाई पड़े। आप मेहनत करते रहिए। मस्त मौला गौरव की तरफ से आपको दिल से सलाम। कतर में रह रहे हिंदुस्तानियों को ढेर सारी शुभकामनाएं आजादी के 80वें महोत्सव की। मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
3: वो निडर भी थी और घातक भी। नमस्कार, मैं हूँ भूमि सतीश पेडनेकर और भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली शेरनी रानी चिन्नम्मा को मेरा सलाम। साल 1824, कित्तूर, कर्नाटका।
4: ये मेरा कित्तूर है, अंग्रेजों का इस मिट्टी पर कोई हक नहीं है जो सिर्फ मेरी और मेरे लोगों की है, और इसके लिए मैं मरते दम तक लड़ूंगी।
5: Then it will be the end of you, Her Majesty.
3: अंग्रेजों ने रानी को डराने की कोशिश तो बहुत की लेकिन उन्हें रानी चिन्नम्मा के फौलादी जज्बे का कोई अंदाजा नहीं था। रानी चिन्नम्मा ने 10 साल से भी कम समय में अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया था। इसके बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा नाम के एक लड़के को गोद लिया और उसे अपना वारिस बताया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नए वारिस को मानने से साफ इनकार कर दिया।
5: We refuse to acknowledge your heir. Your land is ours.
4: अगर तुम अंग्रेजों को युद्ध ही चाहिए तो यही सही, अब फैसला सीधे रणभूमि पर होगा।
3: और फिर एक भयानक जंग शुरू हुई। रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों की बड़ी सेना और उनके आधुनिक हथियारों का सामना पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ किया।
4: उन्हें हमला करने दो, जैसे ही वो थक जाएंगे हम उन पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे।
3: रानी चिन्नम्मा के बेहतरीन वॉर टैक्टिक्स और रणनीतियों ने अंग्रेजों को घुटने पे ला दिया। उनका एक बड़ा अफसर मारा गया और दो को बंदी यानी हॉस्टेज बना लिया गया, पर उनको जान से मारने के बजाय दरियादिल रानी ने उन्हें आजाद कर दिया।
4: मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, दोबारा कभी कित्तूर की तरफ आंख उठा कर भी मत देखना।
3: लेकिन धोखेबाज अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ कित्तूर पर फिर से हमला किया। इस बार भी चिन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आखिर में उन पर कब्जा कर लिया गया।
5: We told you Kittur would be ours.
4: तुम फिरंगियों को सिर्फ धोखे से जीतना आता है। कित्तूर हमेशा मेरा था और मेरा ही रहेगा।
3: रानी चिन्नम्मा ने जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उन्होंने उन जुल्मियों के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया। साल 1857 की क्रांति से भी बहुत पहले उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि जब जुल्म एक नियम बन जाए तो बगावत करना आपका फर्ज बनता है। आज चिन्नम्मा को उनके स्टैचूज और पोस्टेड स्टैम्प्स के जरिए याद किया जाता है, पर आज हमारा अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण उन्हीं की देन है।
2: भूमि पेड़नेकर की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियां 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: इंडियन माइथोलॉजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ दिखाया जा रहा है। ये विदुर नहीं गांधी है, महाभारत के नाम पर बागी बनाए जा रहे हैं। This film should be banned right now.
3: कहते हैं एक तस्वीर हजार लफ्जों के बराबर होती है, तो क्या लाखों तस्वीरों से बनी एक फिल्म ब्रिटिश राज की नींव हिला सकती थी? सन 1921 में पर्दे पर उतरी भक्त विदुर के बारे में ये बात कही जा सकती है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी तो महाभारत की विदुर की थी, लेकिन फिल्म में बातें जुल्म और आजादी की थी। यहां तक कि विदुर का किरदार निभाने वाले अभिनेता में गांधी जी की झलक भी थी। उन्हें गांधी टोपी पहने चरखा चलाते हुए दिखाया गया था। डायरेक्टर कांजी भाई राठौड़ ने मानो बिन कहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत छेड़ दी। इस फिल्म से अंग्रेज इतने कांप गए कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये वो पहली फिल्म थी जिसे बैन किया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
2: इंडियंस आर रॉकले, हमें इन्हें स्कूल में ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे ये हमेशा हमारे नौकर बने रहे।
3: एक तरफ उस समय के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाकर अंग्रेज देश के स्कूलों में भविष्य के नौकर तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ फिल्ममेकर्स उस दौर की सच्चाई को सिनेमा के जरिए दिखा रहे थे। इन्हीं में से एक थे भालजी पेंढारकर, जिनकी फिल्म वंदे मातरम आश्रम ब्रिटिश एजुकेशन का खुला विरोध कर रही थी।
4: ये अंग्रेजी शिक्षा हमें सिर्फ गुलाम बना रही है, पढ़ा लिखा गुलाम।
3: क्योंकि अंग्रेजों को भारतीय सिनेमा की ताकत का अंदाजा था, इसलिए वंदे मातरम आश्रम फिल्म रिलीज होते ही सेंसर कर दी गई।
4: अंग्रेज हमारी फिल्म बैन कर सकते हैं, हमारी सोच नहीं। हम हर डायलॉग में देशभक्ति लिखेंगे, हर गाने में अंग्रेजों को ललकारेंगे।
3: क्रांति की ये आग हर फिल्म के साथ और भड़कती गई। फिर आई सन 1942 में फिल्म क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके शोज देश भर में हाउसफुल थे। पर अंग्रेजों की दुखती रग पर हाथ फेरने का काम सन 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत के इस गाने ने किया।
5: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
3: अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्ताना की आवाज में इस गाने को सुनकर सिनेमा हॉल क्रांतिकारियों के केंद्र में बदल गए।
5: दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
3: कवि प्रदीप के लिखे इस गाने को सुनकर अंग्रेजों के माथे पर बल पड़ गए।
6: Who wrote this? Find that man and arrest him now.
3: लफ्ज, आवाज और जज्बात क्या कभी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? सिनेमा भी यही है। इसीलिए फिल्म किस्मत ना सिर्फ सुपरहिट रही, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ देश में उबाल लाने में भी कामयाब रही। शायद इसीलिए कहा जाता है फिल्म समाज का आईना होता है, एक ऐसा आईना जो गुलामी के धब्बे और आजादी का नूर सब दिखाता है।
1: आमिर खान की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
7: बॉलीवुड बोल डाल,
8: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
9: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
10: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
11: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people. It's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क। हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी।
10: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
7: Bollywood,
9: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
12: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
13: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
14: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
15: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
13: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
16: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट।

0: देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट।
1: सबसे पहले आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे। और मैं हमेशा कहता हूं 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह हमारे इतिहास का वो दिन है जिसने हमें हमारी पहचान दी। हजारों लाखों शहीदों के बलिदान और कई पीढ़ियों के संघर्षों के बाद हमें ये आजादी मिली, और आजादी की इन्हीं कहानियों को आज आप मिर्ची पर पूरे दिन सुन भी रहे। वेल, 15 अगस्त जिसने हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया, एक राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारा नाम रोशन हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है हम सभी हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन एक साथ मिलकर हम अपने मुल्क को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और आने वाले समय में भी हमारा तिरंगा पूरी दुनिया में यूं ही लहराता रहे, इसके लिए हमें और आपको और मेहनत करनी है। सभी को एक बार फिर से 15th of August, बोले तो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर स्कूल डे में होता तो आज मेरी स्पीच पर गड़गड़ाहट के साथ तालियां बज रही होती। और एक आखिरी बार कहना चाहता हूं, 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, एक दिन नहीं, हमारी विरासत है। चाहे हम देश से कितने भी दूर हों, लेकिन हमारे दिल में हिंदुस्तान का एक कोना हमेशा रहता है। लॉन्ग लिव इंडिया एंड लॉन्ग लिव इंडियंस। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: घोलो देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
3: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
3: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
4: हाँ बताइए।
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
4: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
4: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
3: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम से कम मुझे
4: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जा रहा है?
4: नहीं, वो जा कहाँ रहा है? जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है? हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
4: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
3: यार क्या बात कर रहा
4: हूँ, नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं आप, कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
3: चल
4: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे, मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
3: बिल्कुल
4: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
3: क्या
4: यार बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah, live.

0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
1: Happy, taste good. Papa John's, enjoy double delight offer.
0: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza.
2: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Alwakra, Almeshaf and Barwa City. Kim's Health, because aap deserve karte hain best care.
0: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner Baladna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Homezaras. Super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homezaras.qa and Daiso Japan, your one-stop back to school shop. Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
3: Visual media partner Rehab Media.
0: Production partner Symphony.
4: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में. 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर. जय हिंद.
5: ১৯১২ चांदनी चौक, दिल्ली.
6: भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज.
7: हजारों दर्शकों के सामने नई राजधानी के बीचों बीच.
8: देखने लायक नजारा होगा.
5: 1911 में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया. इस अवसर पर एक भव्य जुलूस निकाला जाना था. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल नौरंग यादव और ये कहानी है लॉर्ड हार्डिंज की. भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज अपनी पत्नी के साथ हाथी की पीठ पर सवारी करते जुलूस देखने वाले थे. रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अन्य क्रांतिकारियों के एक गुट के पास इस जुलूस को झटका देने के लिए अपनी अलग योजना थी. जहां कई क्रांतिकारियों को लॉर्ड हार्डिंज की हत्या का विचार असंभव लग रहा था, रास बिहारी बोस को यही सही तरीका दिख रहा था.
6: हाँ, ये खतरनाक तो है, लेकिन हमारे सामने कुछ भी नहीं.
5: रास बिहारी बोस एक मजे हुए क्रांतिकारी थे और बसंत कुमार विश्वास उनके भरोसेमंद साथी थे. रास बिहारी बोस अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते कलकत्ता पुलिस के रडार पर थे. वो देहरादून चले गए, जहां उन्हें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी मिली. जल्द ही बसंत कुमार विश्वास भी उनके पास आ गए.
9: वंदे मातरम रास बिहारी दादा, मैं आ गया.
6: ओ, आओ आओ बसंत आओ, तुम्हारा ही इंतजार था.
5: और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने योजना की तैयारियां शुरू कर दी.
6: बसंत, मैंने सिगरेट के 3 को पत्थरों से भर दिया है, तुम इसे फेंक कर बम फेंकने में माहिर बन जाना.
9: ठीक है अच्छे दादा. दोस्तों, समय आ गया है,
10: हम उन्हें क्लॉक टावर के पास धर लेंगे.
11: सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं.
12: लॉर्ड हार्डिंज जिंदाबाद जिंदाबाद.
5: 23 दिसंबर 1912, भारत के वाइस रॉय और उनकी पत्नी भारी जयकारों के बीच गर्व से हाथी पर सवार थे. सड़कें लोगों से खचा खच भरी हुई थी. उसी भीड़ में छिपे हुए थे रास बिहारी बोस, भाई बाल मुकुंद और वसंत कुमार विश्वास. पहले वसंत कुमार विश्वास एक महिला के वेश में छत पर इंतजार करने वाले थे, लेकिन वो योजना रद्द कर एक नया तरीका अपनाया गया. भारत के वाइस रॉय और उनकी पत्नी भारी जयकारों के बीच गर्व से हाथी पर सवार थे. सड़कें लोगों से खचा खच भरी हुई थी. उसी भीड़ में छिपे हुए थे रास बिहारी बोस, भाई बाल मुकुंद और वसंत कुमार विश्वास. पहले वसंत कुमार विश्वास एक महिला के वेश में छत पर इंतजार करने

0: रास बिहारी बोस ने फेंका। कुछ लोगों का मानना था कि अवध बिहारी ने ही बम फेंका था। जिसने भी बम फेंका हो उसका असर जोरदार हुआ। लेडी हार्डिंच और महाबत तो बिना नुकसान के बच निकले, लेकिन हार्डिंच घायल हो गए। उसके पीछे खड़ा सेवक मारा गया। बम के छर्रों ने हार्डिंच की पीठ, पैर और सिर को भारी क्षति पहुंचाई।
1: हमारे मालिक पर हमला हुआ है, लानत है हम पर, पकड़ो उन हमलावरों को।
0: गहरी खोजबीन के बाद भाई बालमुकुंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी और आमिर चंद पकड़े गए और इन्हें फांसी दी गई। हालांकि रास बिहारी बोस बचकर निकल गए, शक से बचने और गुप्त रूप से अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बम हमले के खिलाफ मोर्चा भी आयोजित किया। लगभग 3 साल बाद उनका पर्दाफाश हो गया और उन्हें जापान भागना पड़ा। भारतीयों ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत में वायसराय भी सुरक्षित नहीं है। इस हमले ने कई और क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया और भारतीयों से एक गहरा सवाल किया कि हम भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं?
2: राजपाल यादव की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।

0: शक्ति के रंग मिर्ची के संग इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में, 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ, 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: संथाल विद्रोह 1855, भोगनाली गांव, झारखंड।
3: हमारी जमीन जमींदारों द्वारा छीनी जा रही है।
4: ये सेठ लोग सब कुछ छीन लेते हैं और हमें मजबूर करके हमें बंधुआ मजदूरी में झोंक देते हैं।
3: हम इन गोरों और जमींदारों के नाम परवाना जारी करते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर इन्होंने अपने तेवर नहीं बदले तो ये मामला हम खुद हल करेंगे।
2: भाई सीधो और कानों ने भोगनाडी गांव में इकट्ठा हुए 10,000 से ज्यादा संथाल आदिवासियों को संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और ये कहानी है संथाल क्रांति की। अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों के आसपास का इलाका घेराबंद कर लिया। इसका नाम दमन एक कोह रखा गया, जिसका मतलब होता है पहाड़ों का आंचल। संथाल इस इलाके में बसे हुए थे, उन्हें वहां खेती के लिए जंगलों को साफ करने के लिए बुलाया गया था। अंग्रेज पैसों और टैक्स के लोभ में ज्यादा से ज्यादा जंगल की जमीन को खेती के अधीन लाना चाहते थे। संथाल समुदाय को इसका विरोध करने का पूरा हक था, क्योंकि वो वहां के मूल निवासी थे, इसलिए जमीन उनकी थी। लेकिन जमीन वहां के जमींदारों को दी गई, जो किराया बढ़ाते गए, साथ ही बाकी लेनदार, व्यापारी और अंग्रेज भी संथालों का शोषण करने लगे।
5: हमें एक दिव्य शक्ति ने क्रांति का आदेश दिया है।
2: संथाल समुदाय कलकत्ता मार्च करके गवर्नर जनरल से मिलना चाहते थे, लेकिन एक प्रमुख संथाल गांव के मुखिया हरमा देश मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। संथालों की अंतिम चेतावनी भी नजरअंदाज कर दी गई और इसने बगावत की चिंगारी को आंच दी।
6: हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमारी सांस चलेगी।
2: सीधो कान्हो की बहनें फूलो और जानो भी विद्रोह में भाग ले रही थी। इससे इस आंदोलन को महिलाओं की ओर से भी बड़ा योगदान मिला, साथ ही उनके भाई चांद और भैरव भी इससे जुड़ गए।
7: आज से तुम किसी का शोषण नहीं करोगे,

0: संथाल विद्रोह का क्रोध महसूस करने लगे। कुख्यात लेनदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकुड़ के जमींदारी महल पर कब्जा कर लिया गया। संथाल हूल या विद्रोह की आग ने अंग्रेजों और जमींदारों के अनाज के गोदाम भी झुलसा दिए।
1: ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम इसे जल्द ही कुचल देंगे।
0: एक स्थानीय पुलिस कर्मचारी ने छोटी फौज के साथ आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसे मार दिया गया। भाई सीधो कान्हो पैरेलल प्रशासन चला रहे थे। संथाल क्रांतिकारी केवल तीरों और भालों के साथ ब्रिटिश बंदूकों से लड़ रहे थे। संथाल योद्धा शिकार के वक्त जहर भरे तीरों का उपयोग करते थे, लेकिन अपने दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। ये देखकर सेना के कुछ सिपाहियों को शर्मिंदगी महसूस हुई।
2: उनके पास बंदूकें भी नहीं है और हम उन पे गोलियां चला रहे हैं, इसके बावजूद भी बहादुर संथाल झुकने को तैयार नहीं थे।
0: संथालों के खिलाफ लड़ाकू हाथी उतारे गए, मार्शल लॉ लागू किया गया, बहुत से पकड़े गए, बहुत को फांसी दे दी गई, गांव के गांव बर्बाद कर दिए गए। संथाल क्रांति के जनरल सिद्धो और कान्हू और उनके सारे भाई बहन फूलो झानो चांद और भैरव भी मारे गए। सबक सिखाने के लिए कहा जाता है कि सीधो और कान्हू के शव को एक पेड़ से लटका दिया गया।
3: हम सब बाघ हैं बाघ, जब तक हमारी रगों में खून बहेगा तब तक हमारी रूह में हिम्मत बनी रहेगी।
0: शांति प्रिय और मेहनत कश संथाल समुदाय की आह ने अंग्रेजों को डरा दिया था। नए कानून लागू किए गए, बिचौलिए को हटाया गया। संथाल क्रांति में आदिवासियों के अलावा भी कई लोग शामिल हुए। हर साल 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। संथाल क्रांति आदिवासियों के प्रदर्शन का प्रतीक बन गया और स्वतंत्रता के योद्धाओं के संकल्प को मजबूती दी।

पंकज त्रिपाठी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद। Check.

0: जस्ट ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस्ट को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: Six. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी में 15 फ्रीडम फाइटर्स की अनसुनी कहानियाँ 15 सेलिब्रिटीज की आवाज में सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
2: वो निडर भी थी और घातक भी। नमस्कार, मैं हूँ हुमा कुरैशी और भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली उस शेरनी वीरा मंगई कोयली को मेरा सलाम। बात है साल 1780 की। शिवागंगा, जो आज का तमिलनाडु है, युद्ध के मैदान में जंग लड़ चुकी एक यंग सेना कमांडर ने अपनी रानी की तरफ देखा और कहा,
3: मैं जानती हूँ इन गोरों को घुटनों पर कैसे लाना है। मुझे बस थोड़ा शुद्ध देसी घी लाकर दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करती हूँ।
2: ये कहने वाली थी कोयली, रानी वेल्लु नचियार की सेना की सबसे फियरलेस कमांडर। किसी को कानों कान खबर न थी कि कोयली के दिमाग में उस वक्त कितना खतरनाक प्लान चल रहा था।
4: This is our chance to expand. Let's attack and capture the state. It will bolster our incomes.
2: ईस्ट इंडिया कंपनी ने धोखे से हमला करके शिवगंगा के गौरवशाली राज्य पे कब्जा कर लिया था, लेकिन शिवगंगा की रानी रानी वेल्लु नचियार हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो जिंदगी भर ना भूल सकेंगे, और इसका सबसे बड़ा मास्टर प्लान बनाया उनके सेनापति कोयली ने।
3: अंग्रेजों की असली ताकत उनके हथियार है, और मैं उनकी इस ताकत का तिनका तिनका उखाड़ फेंकूंगी।
2: दिन था विजयादशमी का। दूर दूर से लोग किले के मंदिर में पूजा करने और जश्न मनाने आए थे। किले में भीड़ थी और पहरेदारी थोड़ी ढीली। बस इस मौके का फायदा उठाते हुए कोयली ने अपने पूरे शरीर पे घी और तेल उंडेल लिया और खुद को आग लगा दी। उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा,
3: मैं ही हूँ अग्नि, मैं ही हूँ नियति, और मैं ही हूँ तुम्हारा अंत।
2: कोयली के शरीर पे लगे घी ने आग की लपटों को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। वो एक दहकती हुई ज्वाला बनकर किले की आर्मरी की तरफ दौड़ी, जहां अंग्रेजों का सारा बारूद रखा था। और जैसे ही वो अंदर पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी आर्मरी तबाह हो चुकी थी, और इस एक झटके के साथ शिवगंगा से अंग्रेजों का कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया। शिवगंगा का कंट्रोल एक बार फिर हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गया। ऐसा सुसाइड मिशन और ऐसी जांबाजी पूरी दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। रानी वेल्लु नचियार की आंखों में आंसू थे।
3: कोयली, तुमने शिवगंगा की रक्षा अपने खुद के बच्चे की तरह की है।
2: कोयली ने इस बलिदान के बदले कभी किसी से तारीफ की उम्मीद नहीं की। वो तो बस हमारे लिए एक आजाद देश चाहती थी, जहां हम खुली हवा में सांस ले सकें। कोयली शायद उस दिन शहीद हो गई, लेकिन लगभग 250 साल बाद भी आज भी उनका बलिदान हमारी आजादी में अमर है।
1: हुमा कुरैशी की आवाज में आपने सुनी आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद।
5: बॉलीवुड बोल डाल,
6: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: गुलशन देवैया, कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
8: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
7: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बॉलीवुड बोल डाल,
6: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
9: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
10: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
11: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
12: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
10: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
13: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
10: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: घोलो देशभक्ति के रंग मिर्ची के संग। It's hot.
1: समोसे मठरी और लड्डू के उस डिब्बे में ना फाइव स्टार के होटल के खाने से भी ज्यादा ताकत होती थी। 89.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आरजे मस्तमौला गौरव। 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, बात कर रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंस डे के उस 80th सेलिब्रेशन की जो आज पूरी दुनिया में रह रहे हिंदुस्तानी अपनी अपनी जगहों पर कर रहे हैं। आज सुबह से आप मिर्ची पर आज़ादी की कहानी, आज़ादी के गानों के रंग सब सुन रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं याद दिलाना चाहूँगा वो है हमारे स्कूल डेज में मिलने वाले लड्डू मठरी और समोसे के उस डिब्बे की। हम सुबह सवेरे स्कूल पहुंच जाते थे, हमारे प्रिंसिपल जब झंडा फहरा देते थे उसके बाद कल्चरल इवेंट के दौरान हमें हाथों में मिलता था वो मिठाई का छोटा सा डिब्बा जिसके अंदर होता थे समोसे मठरी और लड्डू। अब फिर क्या है, फाइव स्टार का होटल बुफे फेल है भाई, उसके आगे सारे दोस्त एक साथ मिलकर खा रहे होते थे, सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस कैसी गई इसकी बातें कर रहे होते थे और थोड़ी देर बाद स्कूल ओवर हो जाता था, घंटी बज जाती थी और हम सब घर चले जाते थे और हाथों पर लगा वो बैंड या गले में पहना वो तिरंगे का झंडे का रंग ये सब हम धीरे धीरे उतार कर रख देते थे कि अगले साल फिर काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ तब हम बच्चे थे, हमें ये समझना होगा कि देश के लिए जो देशभक्ति, जो जुनून, जो जज्बा हम एक दिन दिखाते हैं, अगर हम उसे साल भर दिखाएं, मेहनत से अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें तो हम अपने मुल्क को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसी उम्मीद से कि हम और आप उस तरफ कार्य कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान का जो तिरंगा है यूं ही पूरी दुनिया में लहराता दिखाई पड़े। आप मेहनत करते रहिए। मस्तमौला गौरव की तरफ से आपको दिल से सलाम। कतर में रह रहे हिंदुस्तानियों को ढेर सारी शुभकामनाएं आजादी के इस 80वें महोत्सव की। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सलूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सलूशन है। तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking, mama।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 5। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
3: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। This is the Gana Indie Top 10, बंदी का नाम है RJ कनिका। ये वो शो है जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में दो नई एंट्रीज हैं। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल शाउट आउट आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंट डाउन की गाना नंबर 10 के साथ। गाने का नाम है मूव बॉडी, ज़ारा खान स्केल्स का गाना। चार हफ्तों से है ये बरकरार। पिछले हफ्ते से तीन पोजिशन नीचे ड्रॉप होके मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुस्सी की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। आठ हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द होल काउंटडाउन एंड आवर कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है RJ कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनेगी कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से 8 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ अभी के अभी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। I truly believe that गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज है जिसके साथ एक पूरी जनरेशन ने प्यार करना सीखा है। सोच के देखो, कॉलेज का पहला क्रश या वो एक तरफा प्यार, गाड़ी में बैठे रात की ड्राइव्स, एक पूरी जनरेशन को इन्होंने प्यार करना सिखाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान। मैं शान का नाम भी ऐसे मुस्कुराए बिना नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज उनकी गानों में, उनकी आवाज में हमें उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है। पूरे 3 दशक हो चुके हैं एंड शान इज स्टिल गिविंग अस द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम। चाहे वो फिल्मों के गाने हो या नॉन फिल्म गाने हो, चांद सिफारिश हो या हे शोना, अलग अलग प्यार के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं शान की आवाज रही है। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ नया नवेला गाना, उसमें उनके साथ हैं दीदार कौर, यानी दोनों का पहला कोलैबोरेशन है। उदीपन शर्मा का म्यूजिक है, श्लोक लाख के लिरिक्स, एंड इस गाने में वो शान के प्यार वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, दीदार कौर एंड शान की आवाज में। गाने का नाम है दिलदारा, अ नई नवेली एंट्री। इस गाने ने डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है. अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए. कृपया लाइन होल्ड करें. हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं.
5: हेलो.
3: हेलो.
5: कौन बोल रही हैं
3: आप? कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी. फोन आया था मेरे पास.
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था.
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ.
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया.
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है. लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार, मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं. मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे.
5: हो सकता है, हो सकता है.
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है. कृपया लाइन होल्ड रखें. आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा.
5: हेलो.
3: हेलो.
5: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार. तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे. हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे तेरा कुछ जा रहा
3: है.
5: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर. तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में.
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें. अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं. लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू.
3: हेलो
5: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है. कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार. आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं. जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े. एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स. है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट. 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं. या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live in

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

0: संजू राठौड़ की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन, फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम तारे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kaneka. This show is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKaneka. Koi gana suggest karna ho, baatein batani ho, bindas aake hit me up. Sanju Rathod ki awaaz aisi hai, sunte hi pata chal jata hai, it's his song. इस काउंटडाउन पे एक नई नवेली एंट्री हुई शान का दीदार कौर की आवाज में, हमने सुना दिलदारा ऑन गाना नंबर 8। इनफैक्ट शान की आवाज भी वही है, पहले नोट से यू नो इट्स हिम, चाहे वो सिंगर की आवाज हो या कुछ गानों का इंट्रो म्यूजिक, वो गाने जो एकदम याद आ जाते हैं ना, दे गॉट दैट स्टिकीनेस फैक्टर। आज के शो में जो मैं कैसेट क्लासिक में आपके लिए गाना बजाने वाली हूँ, दैट इज आवर 90s एंड 2000s का आइकॉनिक पिक, उस गाने का मैं इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। @RJKaneka पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है।

एट आरजे करेंगे और इंस्टाग्राम पर बताओ मुझे गाना कौन सा है। ये पूरा गाना शो पर आगे हम आपके लिए प्ले करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट टेक अवे फैक्टर्स, ऐसी आवाज, ऐसा म्यूजिक जिसे सुनते ही हम आर्टिस्ट को एकदम रिकग्नाइज कर जाते हैं, उसमें से एक आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है।

0: आवाज की आवाज में प्यार गहरा लगता है, सदियों पुराना लगता है। उनकी आवाज में वो तजुर्बा है, एक याद है जिसको सुन के लगता है कि ब्रो ये दर्द तो पहले भी झेला है। एंड मुसाफिर कैफे जो शो है वो एक बुक पे बेस्ड है, सो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। द सीरीज इज ऑल अबाउट लव। ये जो गाना है ये भी एक नई नवेली एंट्री है। इस गाने का जो दिल है ना वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दुखी भी है। द सॉन्ग इज अबाउट राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, बट रेखा भारद्वाज की आवाज में इट विल ऑल साउंड मैजिकल। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, नई नवेली एंट्री ऑन द काउंट डाउन। राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है दरमिया। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 5। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: Podcast. Driven by Shackman Trucks, zabardast power aur cleaner energy ka naya chapter. Shackman Heavy Duty Trucks and Boom Trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group. Google आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, Instagram आपकी लाइक्स, Netflix आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.
0: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव.

0: अनीश सरकार हृदय की आवाज में गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Follow karna bilkul free hai. Handle is at RJ Kanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Independent music basically ek artist ko wo mauka deta hai ki tum jo feel karte ho, jo mehsoos karte ho, jo kahani batana chahte ho, apne music ke zariye wo batao. एंड स्पेस में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रूली म्यूजिक में मीनिंग ढूंढा है, एंड वन ऑफ दोज आर्टिस्ट इज इंडियन ओशन, लेजेंडरी आइकॉनिक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। व्हाट अ बैंड, आई स्वेयर हर किसी को इंडियन ओशन का लाइव शो देखना चाहिए, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। दे ट्रूली डिफाइन द इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज वो कल्चरल पे कॉमेंट्री करते हैं, अपने ओपिनियंस देने से कतराते नहीं है। उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं हमें इंटरनली रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। आज हम इंडियन ओशन के ही एक गाने को स्पॉटलाइट देने वाले हैं। ये ऐसा गाना है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, वी आर वेरी क्विक टू जज। नाम से कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं कि ये इस तरफ का है, वो उस तरफ का है, ये अपना है, वो पराया है। एक बार हमने ये करना शुरू कर दिया ना बॉस, हमको सिर्फ वही दिखता है। और ये गाना जो है वहीं पे हमारी नब्स पकड़ लेता है कि ये क्या लगा रखा है उस नाम के पीछे, उस लेवल के नीचे। सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरे और तुम्हारे जैसा ही है। That's the beauty of Indian Ocean. उनके गाने आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, उनके गाने सवाल भी उठाते हैं और आईना भी दिखाते हैं। That's why their voice matters and they are truly one of those artists जो म्यूजिक एंड मीनिंग को साथ में लेके चलते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रुक जा रे बंदे। तो थोड़ा रुक कर इस गाने को सुनो, इंडियन ओशन का रुक जा रे बंदे ऑन आर स्पॉटलाइट दिस वीक। बंदी का नाम है RJ Kanika। Enjoy.

इस गाने में ना वो बात है कि आसपास का सारा शोर एकदम के लिए रुक जाता है और आप इस गाने को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंडियन ओशन द बैंड का दैट वॉज बंदे ऑन आर स्पेशल स्पॉटलाइट दिस वीक। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी ऐसा गाना जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है मुझे उस गाने के बारे में बताओ, एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। नूर खान मधुर एक्सो का आरजू इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उसके बाद मिट्टा रॉयर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा इज ऑन गाना नंबर 2। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 2।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
5: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
4: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
2: बॉलीवुड बोल्डाल।
3: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यूपो से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah. Live

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi par show ka naam hai Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaano ka countdown jisme do nayi entries hain. Gana number 10 se gana number 2 ka safar hum pura kar chuke hain. Now before we move on to the numero uno song of the week, it's time for what we call
0: Kanika's Kasar Classic.
1: हमारी कसर क्लासिक जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

एंड जो गाना हम आज फीचर करने वाले हैं इज गाने का नाम है तन्हा दिल इन द वॉइस ऑफ वन एंड ओनली शान. इट्स ट्रू दैट ये गाना एक पूरी जेनरेशन का एंथम था. साल 2000 मिलेनियम नया नया शुरू हुआ था, नई जॉब्स क्रिएट हो रही थी, नए कॉलेजेस आ रहे थे एंड पहली बार बहुत सारे नौजवान अपने घर छोड़ के निकल रहे थे, कोई नए कॉलेज के लिए, नए शहर के लिए, पहली नौकरी, नया फोन जिस पे STD के पैसे बचाने के लिए मिस कॉल दिए जाते थे. उस पूरे दौर का जो दिल था ना वो कहीं ना कहीं इस गाने में है, तन्हा दिल. क्योंकि ये तन्हाई किसी ब्रेकअप वाली तन्हाई के बारे में नहीं है, ये घर से दूर एक नए शहर में कमरे में कोई अकेला बैठा है, घर की याद, माँ के हाथ के खाने का स्वाद, वो बचपन का दोस्त जो सब पीछे छूट गया. But this song captures a universal feeling, right? तन्हा दिल तन्हा सफर. ना YouTube था ना Instagram था, लेकिन ये गाना और बहुत सारी languages में adapt हुआ था. And आज 2026 में भी ये feeling इतनी relevant है, cause कोई ना कोई आज भी अपना घर छोड़ के एक नए शहर में है, थोड़ा lost feel कर रहा है, maybe अपनी family को miss कर रहा है, बस कसर की जगह हाथ में फोन है, बट फीलिंग तो वही वाली है. और शान की आवाज में दिस सॉन्ग कैप्चर्स इट ऑल, तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कसर क्लासिक में दिस वीक राम संपत की कॉम्पोजिशन, शान की आवाज, तन्हा दिल इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कसर क्लासिक. बंदी का नाम है RJ कनेका. एंजॉय.

शान की आवाज, राम संपत की कॉम्पोजिशन, दैट वॉज तन्हा दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। गाना भले पुराना हो, फीलिंग वही है, चाहे आप घर से दूर हो या ना हो, ये गाना सबके लिए है। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी 90s एंड 2000s का वो पॉप सॉन्ग जो आज भी आपको बहुत पसंद है हमारे साथ शेयर करो। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अशकाय, हम दोनों आपके कैसेट क्लासिक के रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, which is the numero uno song of the week, यानी इस हफ्ते का गाना नंबर एक, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। दिस हरियाणवी पॉप सॉन्ग इज येट अगेन ऑन गाना नंबर एक। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 1।

0: Ana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
2: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
1: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
2: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे फिर फोन ही नहीं आएगा।
3: रुक, रुक,

0: छोटी छोटी मुलाकातें जो सडनली हो जाती हैं कभी कभी, वो कितनी लॉन्ग टर्म प्रूव होती हैं, पता है आपको? कभी आपने ऐसा फील किया है?
1: मिर्ची कैफे,
0: मिर्ची कैफे शुरू हो गया है। आप है मेरे यानी पारुल के साथ, और आपने अभी अभी जो ये गाना सुना है कॉलोनियल कजिन्स का सानी धापा, व्हाट अ सॉन्ग। इसके बारे में मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं सुनाने के लिए, लेकिन टू बिगिन विद लेट मी टेल यू, ये जो कॉलोनियल कजिन्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं दो लोगों से, ठीक है? पहले हैं लेस्ली लुइस और दूसरे हैं हमारे प्यारे हरिहरन साहब। तो क्या है कि 1992 में एक्सीडेंटल एक जैम सेशन हुआ इन दोनों के बीच, जब ये लोग किसी एक कमर्शियल जिंगल बनाने के लिए मिले। तो हरिहरन साहब हमारे हैं ही कमाल के लेजेंडरी गजल सिंगर, प्लेबैक सिंगर, और लेस्ली लुइस सुपर्ब गिटारिस्ट। तो ये दोनों जब कमर्शियल जिंगल के लिए मिले, तो यू नो एक इम्प्रॉम्प्टू सेशन हुआ दोनों के बीच, गिटार उठा लिया उन्होंने, उन्होंने कुछ गुनगुनाना शुरू किया, और 15-20 मिनट तक जो इन्होंने एक रिफ प्ले किया और उन्होंने साथ में उसके गाना गुनगुनाया, इन दोनों को लगा मैन दिस इज अ वाइब, ये तो हम लोगों को मिलके कुछ कर देना चाहिए। और फिर स्थापना हुई कॉलोनियल कजिन्स की। ऐसी आपने कितनी दोस्तियों की और कितनी रिलेशनशिप्स की और कितनी पार्टनरशिप्स की कहानियां सुनी होंगी ना, एंड दिस इज ट्रिमेंडस, यू नो। और जैसे लोग बहुत बहुत अलग अलग चीजों पर वाइब करते हैं, जैसे क्रिकेट पे वाइब कर लिया या कुछ, म्यूजिकल जितने भी लोग होते हैं ना, वो म्यूजिक पे ऐसे वाइब कर लेते हैं। और इसीलिए जो कैफे है मेरा, मिर्ची कैफे, यहाँ पर हम बहुत प्यारे म्यूजिक और बहुत सारी बातों के साथ वाइब करेंगे। और अगला गाना फिलहाल जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, वो भी है एक बहुत ही सुंदर सुरीली म्यूजिकल फिल्म से। लिसन टू दिस सॉन्ग इन केके की आवाज। द सॉन्ग इज ओ मेरी जान फ्रॉम द फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो। फॉर बहुत मजेदार म्यूजिक और बहुत सारी बातें, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ पारुल, ओनली ऑन मिर्ची कैफे। इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah, live in Qatar, presented by iPay.

0: हम सबके अंदर कैसे ये मोनोलॉग चलता रहता है ना, चलते फिरते कोई ना कोई थॉट्स आते रहते हैं, कभी किसी के बारे में हम क्रिबिंग करते रहते हैं अपने आप से, कभी खुश होते रहते हैं अपने अंदर ही. सो दिस मोनोलॉग दैट हैपेंस इनसाइड ऑफ एवरीवन, एक्चुअली ये गाना उसी मोनोलॉग पर बेस्ड है.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. आपने सुना गाना क्या करूं फ्रॉम द फिल्म वेक अप सिड, क्लिंटन सेरेजो की आवाज में. सो बेसिकली जावेद अख्तर ने इस फिल्म के लिए सिड, जो कि होता है वेक अप सिड का रणबीर कपूर, उसके लिए ये इंटरनल मोनोलॉग लिखा था कि कैसे वो परेशान है कि क्या करूं टाइप. ओके तो जब डायरेक्टर अयान मुखर्जी एंड शंकर एहसान लॉय को ये पता चला कि ये मोनोलॉग है, उन्होंने इसी स्क्रिप्ट को दे टर्न इट इनटू अ सॉन्ग, जो अभी अभी हमने यहाँ पे सुना. तो ये ऐसे रिफ्लेक्टिव कंफ्यूज ड्रिफ्टिंग थॉट्स दिखा रहे हैं इस गाने में सिड के. सोचो, मैं ये सोच रही थी कि अगर हमारे इंटरनल थॉट्स पे कोई मोनोलॉग बना के उस पे गाना बनाया जाए तो क्या होगा. नहीं, लेट्स नॉट गेट देयर. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग. जो अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो बयां कर रहा है मेरी उस ख्वाहिश को कि आपकी और मेरी बातें इसी तरह चलती रहें बस. लेकिन इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस सॉन्ग ये है कि ये गाया है डोमिनिक सेरेजो ने, और जो मैंने आपको पिछला गाना सुनाया था वो था क्लिंटन सेरेजो की आवाज में. सो क्लिंटन एंड डोमिनिक आर पति पत्नी, यस. तो अभी यहाँ पर ऐसे एकदम फैमिली मोमेंट बनाती हुई मैं पारुल मिर्ची कैफे पर, आप इंजॉय करो रॉक ऑन से ये ब्यूटिफुल गाना. Only on Mirchi. Stay tuned. It's hot.

0: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। ड्रिवन बाय Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: क्या आपने भी ये सोचा था कि ये पूरा जो गाना है गजनी का गुजारिश, ये सोनू निगम ने गाया है?
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो गाना है ना गुजारिश गजनी फिल्म का, आमिर खान की फिल्म का, ये गाना पूरा गाया था सोनू निगम ने भी वाइल्ड रिकॉर्डिंग, और ये पूरा गाना गाया था जावेद अली ने भी। और फाइनल जो वर्जन आउट हुआ उसमें सिर्फ जो हमिंग वाला पोर्शन है जो आप बिल्कुल शुरू शुरू में और आखिर आखिर में सुनते हैं वो है सोनू निगम साहब की आवाज़ में, और बाकी पूरा गाना है जावेद अली की आवाज़ में। और इस पूरे गाने से ना मुझे पता क्या सीख मिलती है कि लाइफ में अगर इतना सा भी मौका मिले ना, 5 सेकंड का भी मौका मिले, तो आपको एज एन आर्टिस्ट अपने आप को प्रूव करने के लिए वो टाइम काफी होना चाहिए। आज तक सोनू निगम जी की ये हमिंग हम याद रखते हैं, एंड वी थिंक कि पूरा गाना ही सोनू निगम ने गाया, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपकी तैयारी में वो दम होना चाहिए कि जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो अगर आपको 5 सेकंड भी मिले ना, तो आप प्रूफ करके दिखा सको कि हाँ भाई कर दिया मैंने और हो गया ये। और याद रखिए लोग आपको, अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, आज के इस गाने की खासियत है वो उंगलियां जो करोड़ों के इंश्योरेंस के साथ पियानो पे पड़ती हैं, और वो आवाज जो डायरेक्ट दिल से निकलती है। अदनान सामी इज द मैन, आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे। नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू, दिल क्या करे, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

0: इरशाद किया है, लिखते हो तुम ऐसा कि दिल कहता है वाह, शब्द तुम्हारे दिल तक जाते हैं, दिल कहता है आ।
1: मिर्ची कैफे
0: शो चल रहा है, मिर्ची कैफे, मेरे यानी पारुल के साथ हूं यान मिर्ची। और जो भी आपने दोनों गाने सुने वो थे जुबिन नौटियाल और प्रकृति कक्कड़ की आवाज में फ्रॉम टी सीरीज मिक्स टेप। और ये जो मिक्स करके गाने बनाए गए, आपको पता है ये दोनों गाने जो लिखे हैं वो लिखे हैं इरशाद कामिल ने। और इरशाद कामिल ना अपने भाई बहनों के सबसे छोटे मतलब सातवें भाई हैं। अपेरेंटली आई हर्ड दैट उन्होंने बड़ा ही अपने बड़े सिबलिंग्स का टॉर्चर सहा है, और बड़े सिबलिंग्स होते भी इसलिए है ना, वो एक हक मानते हैं, छोटे भाई बहन सब हमारा ही तो काम करने के लिए आए या दुनिया में। इनफैक्ट मैंने तो मेरे चारों तरफ ऐसा देखा है यार, मेरे कजिन्स जितने भी हैं या मेरे आसपास है मेरी फैमिली में, मैंने हमेशा देखा है जो बड़ा सिबलिंग है ना वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन कि एक छोटा उसकी जिंदगी में शामिल है जिसका भी उसको ख्याल रखना है। लेकिन जो ये बॉन्ड है ना, कनेक्शन बिटवीन द सिबलिंग्स, इससे खूबसूरत चीज मैंने कहीं नहीं देखी। जितने भी चारों तरफ हमारे लोग हैं, एक वो इंसान है जो आपको बखूबी जानता है, वो है आपका सिबलिंग। And this connection makes me remember my brother. कैसे ना दूर दूर शहरों में रहने लग जाते हैं हम लोग और फिर उतनी बातचीत भी रोज की नहीं हो पाती है, but we always miss that bond. तो माई डियर फ्रेंड्स टेक दिस नोट, अगर आपने बड़े दिन से अपने सिबलिंग से बात नहीं करी है, प्लीज जाके उसका दिमाग खाओ, याद दिलाओ उसको कि तुम हो, किसी और जहर की जरूरत नहीं है उसको अपनी जिंदगी में तुम हो उसकी जिंदगी में। और अगला गाना जो मैं आपके लिए चला रही हूँ वो अरिजीत सिंह की बेहद खूबसूरत आवाज में एक प्यारी सी मजबूरी हम सबके दिल की बयां करता हुआ। लिसन टू दिस ओनली ऑन मिर्ची कैफे, मेरा नाम है पारुल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी.
3: शाबाश. डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11.
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: शोर करता है.
3: शाबाश. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन.
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया? खत्म.
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता. आदमी का नाम राजकुमार राव. रेडियो स्टेशन का मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: मुझे लगता है जो काम ऑर्गेनिकली हो जाता है ना, वो चाहे कितना भी आप पैसे दे के करवाओ या फोर्सफुली करवाओ, नहीं हो पाएगा।
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। अभी अभी आपने गाना सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर आवाजों में तुम मिले दिल खिले। यार कैसे, मतलब यार मैं सोचती हूँ इन दोनों ने एक साथ कितने गाने गाए होंगे ना, हजारों तो गाए होंगे, बट अगर वो वाइब नहीं मिल रही होती ना दोनों की एक दूसरे के साथ, तो फिर शायद ये नहीं हो पाता पॉसिबल, ऑर्गेनिक वाइब। ऐसे ही बहुत सारे काम आई ऑफ लेट बीन ऑब्जर्विंग कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ रील्स के लिए या सिर्फ स्टोरीज के लिए या सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, ऑर्गेनिकली नहीं करते हैं, तो फिर वो ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, वो बस हो गया ठीक है। पर मैं एक बात की गारंटी जरूर दे सकती हूँ, चाहे कितनी भी जनरेशंस बदलती चली जाएं, लेकिन वो जो ऐसे दिल वाली चीजें होती है ना, रूह वाली, मोहब्बत वाली, जिसमें एक्चुअली मुंह से निकलता है कि और जीने को क्या चाहिए, वो वही होती है जो ऑर्गेनिकली होती है, प्रेजेंट होके की जाती है, सच में दिल से की जाती है। आई डोंट वांट टू गिव यू ज्ञान एंड ऑल दैट, लेकिन हाँ ये यार थोड़ा सा ना मिसिंग लगता है कहीं कहीं पे मुझे, कि सिर्फ टिक मार्क करने के लिए मत करो काम यार, दिल से करो या मत करो। हाँ वो अलग बात है कि बॉस के आगे तो बटर चाशनी सब लगा के काम करना ही पड़ता है। सुनो ये अगला गाना अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, बहुत प्यारा गाना, येट अगेन ऑन मिर्ची कैफे, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ, आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
1: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ, एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
1: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
2: हाँ बताइए।
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
2: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
2: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
1: बहस वाली बात नहीं, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से मुझे
2: बिल्कुल
1: से,
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: जा रहा है?
2: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
2: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
1: यार क्या बात कर रहा
2: है,
1: मतलब
2: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
1: चल
2: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
1: आपको फोन मत करिए, मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर
2: दिया। क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं,
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

0: क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक दिन जिस इंसान से मिले हो फॉर बेली 2-3 आवर्स, आप ये डिसाइड करो कि आपको सारी जिंदगी उसके साथ बितानी है?
1: मिर्ची कैफे।
0: तो बेसिकली मैं आपको अपने एग्जांपल से बताती हूँ। एक होती है अरेंज्ड मैरिज, ओके, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। एक दिन हम मिले और अगले दिन हमारा रोका हो गया, ओके, टोटल ट्रेडिशनल वाइब्स। और दूसरी होती है लव मैरिज, और उसके बाद यू गेट इनटू दैट मोड कि अननोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन वन, और फिर उसके बाद आप लव मैरिज करते हो। तो जो आपने अभी पहला वाला गाना सुना ना, इट वॉज जस्ट लाइक एन अरेंज मैरिज। और ये जो अगला गाना मैं आपके लिए अभी चलाने जा रही हूँ, फ्रॉम द फिल्म RHDDM, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द पीपल हु आर इन लव, बी इट एन अरेंज मैरिज और ए लव मैरिज। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब आप कुछ साल एक साथ रहकर एक दूसरे के साथ बिता लेते हो ना, वेदर इट इज एन अरेंज और ए लव मैरिज, तो आप फिर ना सेम लेवल पे आ जाते हो, और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको कितने साल से जानते हैं और कौन सी वाली शादी हुई है आपकी। मैच तो होना ही है भाई। बट हाँ, टॉकिंग अबाउट RHDDM, यार देखा जाए तो कितना टॉक्सिक नहीं था वो बंदा, मैडी का कैरेक्टर, जिसने झूठ बोल के दिया मिर्जा को फंसाया। बट फिर टॉक्सिसिटी है भी तो एडिक्टिव ना, कैसे नहीं पसंद आएगी लड़कियों को। लिसन टू दिस सॉन्ग ओनली ऑन मिर्ची कैफे, मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट। मुझे कहना

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: वो सोनी सी महिमा चौधरी और शाहरुख खान का मैजिक और कुमार सानू की आवाज, व्हाट अ सॉन्ग ना दिस इज. आपको पता है ये फतेहपुर सीकरी में उत्तर प्रदेश में शूट हुआ था.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. और मैं आपको हमेशा ही बताती रहूंगी आके कि कौन कौन से ऐसे गाने होते हैं जो कि किसी ना किसी राग पे बेस्ड होते हैं. सो दिस सॉन्ग जो अभी आपने सुना, दो दिन मिल रहे हैं, ये है राग खमाज पे बेस्ड. ऑल्सो शाहरुख का ही एक और गाना है कभी अलविदा ना कहना से, मितवा. मितवा गाना है उसकी, जो एक बहुत ही पॉपुलर सरगम हुई है जो कि रील्स पे भी काफी वायरल हुई थी. उसका वो पोर्शन भी, और जो आपको एक मैं नेक्स्ट गाना सुनाने वाली हूँ कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में, ये गाना भी, ये भी राग खमाज पे बेस्ड है. और इस राग की ना सबसे प्यारी बात ये है कि ये बहुत ही सोलफुल राग होती है, राग खमाज. तो जो भी गाने ऐसे मोस्टली रोमांटिक गाने बनते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ राग खमाज का वर्जन काफी गानों में लिया गया है. ये गाना सुनो आप, फ्रॉम द फिल्म 1942 लव स्टोरी. मिलते हैं ब्रेक के बाद, सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
2: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे, तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी।
1: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bol Dal, Bollywood Bollywood Bollywood Bol Dal, only on Mirchi, it's hot.
3: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: आपने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने फोन को चार्जिंग से हटाते वक्त पहले स्विच ऑफ करते हैं, फिर तमीज से अपने चार्जर से अपना फोन हटाते हैं? रेयर पीपल आई टेल यू।
1: मिर्ची कैफे,
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और मैंने देखा मेरे ऑफिस में एक बंदी है भाई, वो ऐसे प्रॉपरली स्विच ऑफ करके अपना फोन निकाल रही थी। आई वाज डैम इम्प्रेस्ड, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी ये आदत खत्म हो चुकी थी। बट यस, टुडे आई लर्नड इट फ्रॉम हर, अब मैं भी ऐसे ही करूंगी। होता है ना, रोज चलते फिरते हम क्रिटिसाइज तो बड़ा आसानी से लोगों को कर लेते हैं, बट अगर कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करने का मौका आए तो इग्नोर कर देते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। नहीं, जापानीज इस मामले में बहुत आगे हैं हमसे। देखी होंगी आपने भी रील्स जहाँ पे बताया जाता है कि जापानीज बड़े अच्छे से तारीफ करते हैं लोगों की, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं और वैल्यू करते हैं लोगों को। हम शायद वो चीजें भूल गए करना। तो बॉस, आज के मिर्ची कैफे की विदाई का वक्त हो गया है और मैं आपसे बस ये कह के जाना चाहती हूँ कि जितने भी प्यारे लोग हैं आपकी लाइफ में, उनका रास्ता मत छोड़ो कभी भी, और अच्छे म्यूजिक का रास्ता तो कतई नहीं छोड़ना कभी भी। अगर आपको कोई गाना सुनने का मन है इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मिर्ची कैफे, आप मुझे ढूंढिए इंस्टाग्राम पे paruls.world और प्लीज डीएम करके मुझे बताइए आपका नाम और ये भी बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो इन द नेक्स्ट एपिसोड, और मैं आपके लिए लेकर आऊंगी वो गाना। तब तक खुश रहो, मस्ती करो, एंजॉय करो और सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और अपनी अब तक की जिंदगी में ज्यादातर जब भी किसी को ऊपर वाले को याद करते हुए देखा है ना मैंने, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं। हमेशा हर किसी को कुछ ना कुछ मांगते हुए ही देखा है। तजम्मुल कलीम साहब का बड़ा खूबसूरत शेर सुना मैंने हाल में और सोचा कि आपको भी सुनाऊंगा। लिखते हैं, सूली टंगना नहीं आंदा, ओनू संगना नहीं आंदा। सूली टंगना नहीं आंदा, ओनू संगना नहीं आंदा। रब्बा तू ही रहम करे, मैनू मंगना नहीं आंदा। आए हाय क्या बात है भाई। ऊपर वाले से मांगने वाला तो हर कोई है शायद, मगर बस उसकी बनाई खूबसूरत दुनिया का शुक्रिया अदा करने वाले शायद कम। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट। खुश।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murka, murka. Na vid bala murka. Mirchi, murka.
3: Hello.
4: Oh, madam, good evening.
3: Hi.
4: Bank se bol le ho na, hamari nahi iski bhai ye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
4: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: है।
4: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी,
3: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
5: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
3: कुकड़ो को।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live in

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर फहमी बदायूनी साहब से। वक्त के साथ गजल के भी मौसम बदलते रहते हैं, कुछ शोरा उस मौसम के मुताबिक फसलें पैदा करते हैं और कुछ उन फसलों के लिए नई जमीनें तैयार करते हैं। 21वीं सदी में फहमी बदायूनी साहब वही जमीन तैयार कर रहे हैं जिन पर गजल की कई नई फसलें लहलाएंगी। फहमी साहब की वन ऑफ माय फेवरेट गजल्स हैं, देखें कि जाहिलों को सलाम करना है, जाहिलों को सलाम करना है और फिर झूठ मूठ डरना है। काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर कर गुजरना है। आए हाय हाय। ऐसे ही और शायरों को जानने के लिए, गजलों नज्मों और नगमों के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah. Live

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और एक हल्का सा डर, एक हल्की सी झिझक कुछ भी बड़ा काम करने से पहले हम सबके जीवन में होती है। ये हम सबके जीवन का एक सत्य है। राजेश कमल साहब इसी फीलिंग से डरने से बेहतर इसे एक्सेप्ट करने को बड़े खूबसूरती से रखते हैं हमारे सामने अपनी कविता में। कहते हैं, पहली बार पिता की जेब से रुपये निकालते हुए हाथ कांपे थे, पहली बार साइकिल की फुल पैडल लगाते पांव कांपे थे, पहली बार किसी स्त्री को चूमते हुए होंठ कांपे थे, पहली बार कॉन्डम खरीदते पूरा जहन ही कांप गया था। धीरे धीरे डर जाता रहा। बेहतर है कि डर को रोमांच पढ़ा जाए, पहली बार होने वाली चीजों का इंतजार किया जाए। है ना खूबसूरत, कितनी सरलता के साथ एडवेंचर के असली नेचर को दर्शा दिया राजेश साहब ने। क्या बात है, मिर्ची महफिल पे आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
4: मैं करूँ?
5: आप करोगे?
4: नहीं, मैं करवाता हूँ. मतलब मेरा होता है.
5: वो तो पता है. मेरा बस चलता है, एक एक को घुसड़ मार के आती हूँ.
4: माय फ्रेंड. हाउ आर यू माय फ्रेंड?
3: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Energy, it's hot.
1: और ये नगमा हमारे आजकल के मौसम पे एकदम फिट बैठता है.
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड.
1: मिर्ची महफिल पे आपका ताशी है आपके साथ. और हाँ जी, मौका आ गया है कि आपको आज का पहला ताशी अनप्लग्ड जो है वो सुनाया जाए. और राशिद खान साहब मेरे बड़े पसंदीदा सिंगर, बड़े पसंदीदा क्लासिकल म्यूजिशियन रहे. और ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर पाया, उनसे कभी यू नो फेस टू फेस मिल नहीं पाया, बातचीत नहीं कर पाया. लेकिन ये जो नगमा है, ये जो बंदिश कह लें इसे, ये बड़ी खूबसूरत है और मेरी बड़ी पसंदीदा है. और जिस तरीके का मानसून का मौसम हमारे भारत के ऊपर छाया हुआ है उसमें बिल्कुल उपयुक्त है. इट्स कॉल्ड सजना बरस.

ऐसे ही दिल को सुकून पहुंचाने वाले, वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देने वाले नगमे, गजलें, किस्से सुनने के लिए बने रहे मिर्ची महफिल के साथ। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ।
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: कहते हैं कि तूफान के बाद की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है। मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और हम सब बुरे वक्त से तो गुजरते ही हैं, लेकिन वो अंग्रेजी कहावत है ना कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जावेद अख्तर साहब की गजल के दो शेर देखें, लिखते हैं कि छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूं वापस तो आकर देखिए। अक्ल ये कहती दुनिया मिलती है बाजार में, अक्ल ये कहती दुनिया मिलती है बाजार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। आए हाय, अब देखो दिल की बात मानने के भी अपने फायदे और नुकसान है। आरजू लखनवी साहब का शेर है कि दिल की जिद इसलिए रख ली थी कि आ जाए करार, कल ये कुछ और कहेगा मुझे मालूम न था। तो दोस्त, जैसे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है ना, वैसे ही दिल की सुनने पे जिम्मेदार आप ही होंगे। तो थोड़ा सोच विचार के। हाँ, मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Energy.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Burga, burga. Nafiyat wala burga.
3: Mirchi burga.
4: Hello.
5: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
6: हेलो।
4: हेलो,
6: कौन बोल रही हैं?
4: आप कौन बोल रही हैं?
6: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
4: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
6: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
4: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
6: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
4: ये तो वहाँ से मेरे पास,
6: अरे यार
4: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
6: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
5: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
6: हेलो।
4: हेलो,
6: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन,
4: भाई ये नंबर क्या है, तू बता तू क्यों लाइन में आ रहा है?
6: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
4: है?
6: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
5: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
4: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और अब मिर्ची महफिल में मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे। किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर
1: कि आपके ताशी आपको सुनाए आज का किस्सा जो आ रहा है शौकत थानवी साहब की जानिब से। लिखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एसपी सिंघा के 11 बच्चों के नाम का आखिरी हिस्सा सिंघा था। जब उनके 12वां लड़का पैदा हुआ तो शौकत थानवी साहब से मशवरा किया गया कि इसका नाम क्या रखूं। इस पर शौकत साहब ने बेसाख्ता कहा, आप इसका नाम बारा सिंगा रख दीजिए। हमें यार कसम से, जिनको लगता है उर्दू अदब में केवल संजीदा बातें होती हैं उन्होंने शायद ऊपरी परत को खुरच के अंदर नहीं देखा है आज तक। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

कि सुर्ख रू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। सुर्ख रू का मतलब सक्सेसफुल। सुर्ख रू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। आए हाय हाय हाय, अंग्रेजी के स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि मेहंदी हिना के रंग लाने का जो कंपैरिजन इंसानों की मुश्किलों से किया गया है, इट्स अ टूल इंग्लिश लिटरेचर का, जिसे सिमिली बोलते हैं। बहरहाल सिर्फ मिर्ची महफिल पे आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। एंड गेटिंग थ्रू हार्डशिप्स, मुश्किलों से गुजरना इंसान के किरदार को बेहतर के लिए बदल देता है। ये ख्याल है तो काफी पुराना, मगर सैयद गुलाम मोहम्मद मस्त कलकत्तवी साहब के शेर में इसका एक बड़ा खूबसूरत रूप, बड़ा खूबसूरत फैसेट देखने को मिलता है।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
4: सत्या देख के तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देख के लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
3: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

तो ना कहो हम खुद ही से खेलें, तुम तो ना कहो

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आपको मुखातिब कराया जाए आज के लफ्ज से जो है जर्द। जर्द का लिटरल मानी हुआ येलो, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है ड्राइनेस को डिनोट करने के लिए, है ना, पेलनेस को डिनोट करने के लिए। मोहसिन नकवी साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है, लिखते हैं कि मौसम जर्द में एक दिल को बचाऊं कैसे, मौसम जर्द में, है ना, एक दिल को बचाऊं कैसे, ऐसी रुत में तो घने पेड़ भी झड़ जाते हैं। हाय हाय हाय, समझ रहे हैं। तौकीर तकी साहब का भी एक और शेर देख ले, मेरा बड़ा पसंदीदा है, जिसमें जर्द का इस्तेमाल है। लिखते हैं कि सब्ज पेड़ों को पता तक नहीं चलता शायद, सब्ज पेड़ों को पता तक नहीं चलता शायद, जर्द पत्ते भरे मंजर से निकल जाते हैं। तो अब आप जानते हैं कि उर्दू लफ्ज जर्द का मानी होता है येलो या फिर पेल। इस्तेमाल करके इस लफ्ज का एक प्यारे से सेंटेंस में लिख भेजिए मुझे मेरे FB एंड इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। और तब तक सुनते रहिए मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और सच ही है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां अगर शख्स थोड़ी ह्यूमिलिटी से काम ले ले, है ना, तो बात बन जाएगी। मगर जब सच में मुसीबत आ रही होती है ना, तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मलिक ज़ादा मंसूर अहमद साहब का ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाने वाला एक बड़ा सटीक शेर है। लिखते हैं कि उन्हें ठहरे समुंदर ने डुबोया, उन्हें ठहरे समुंदर ने डुबोया, जिन्हें तूफान का अंदाजा बहुत था। क्या बात है, मतलब स्विमिंग जानने वालों को पानी जब वो पी रहे थे तो गले में अटक गया, है ना, ऐसा वाला हाल हो गया। उन्हें ठहरे समुंदर ने डुबोया, जिन्हें तूफान का अंदाजा बहुत था। तभी कहते हैं कि हर सिचुएशन में 30 मार खा नहीं बनना चाहिए। फिलहाल आपका ताशी है आपके साथ, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La virbala murga. Mirchi, murga.
3: Mirchi.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ.
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा.
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
4: संजना.
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का.
3: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं.
3: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताऊं.
3: ओके चलिए.
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
5: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का.
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है. मैं रेडियो मिर्च पे.
4: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था.
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकु. थैंक यू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इजंट इट? 4 balls left, दे नीड 12 runs टू विन.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: मौका है दस्तूर है कि आपका ताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और करे आपके नजर इस हफ्ते की एंट्री। बारिश का मौसम अपने चरम पे रहा इस हफ्ते और एक माहौल बन जाता है जब भी आसमान गरज के बरसना शुरू कर देता है। ऑफिस में बैठे हुए मेरी नजर जब बाहर नीचे रोड पे खेलते हुए दो बच्चों पर गई तो अचानक से अपनी उम्र महसूस होने लगी। अजहर फराक साहब का वो शेर याद आ गया कि दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी वगरना मैं, वगरना मतलब वरना कहने का एक तरीका है, दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी वगरना मैं बारिश की एक बूंद ना बेकार जाने दूं। आय हाय, बचपन में यही ताशी बनना चाहता था मैं, जो पैसा कमाता हो, जिसके पास अपने खर्च की आजादी हो। ये आजादी इतनी महंगी पड़ेगी कहां अंदाजा था। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, बहरहाल आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और आज के वक्त में अगर कहूं कि किसी आइकॉनिक शायर का नाम लो तो मेरी जबान पे जावेद अख्तर साहब का नाम जरूर आएगा। अभी हाल में ही उनकी एक बड़ी प्यारी गजल से राबता हुआ, सोचा कि आपको भी सुनाऊं। लिखते हैं कि दर्द के फूल भी खिलते हैं बिखर जाते हैं, दर्द के फूल भी खिलते हैं बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हो कुछ रोज में भर जाते हैं। रास्ता रोके खड़ी है यही उलझन कब से, कोई पूछे तो कहें क्या कि किधर जाते हैं। नर्म अल्फाज भली बातें मुहज्जब लहजे, पहली बारिश ही में ये रंग उतर जाते हैं। आए हाय, अब आपकी बारी है, आप मुझे बताएं कि जावेद साहब की आपकी सबसे पसंदीदा क्रिएशन कौन सी है। गाना भी हो सकता है, गजल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेरे FB एंड इंस्टा मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: Laga gori gujariya se.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और अब जाते जाते मिर्ची महफिल में वक्त है।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे। आज का आखिरी ताशी अनप्लग्ड आपके लिए राशिद खान साहब, मेरे बड़े पसंदीदा सिंगर, बड़े पसंदीदा क्लासिकल म्यूजिशियन रहे, और ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर पाया, उनसे कभी यू नो फेस टू फेस मिल नहीं पाया, बातचीत नहीं कर पाया। लेकिन ये जो नगमा है, ये जो बंदिश कह लें इसे, ये बड़ी खूबसूरत है और मेरी बड़ी पसंदीदा है। और जिस तरीके का मानसून का मौसम हमारे भारत के ऊपर छाया हुआ है, उसमें बिल्कुल उपयुक्त है। इट्स कॉल्ड सजना बरसे है क्यों।

अगर ऐसी गजलें, नज़में, शेर व शायरी आपको पसंद है तो मेरा इंस्टाग्राम भी चेकआउट कर सकते हैं आप, मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। और सुनते रहे मिर्ची, आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: शोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना वन रिपीट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्राई।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।